एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। चिंतन।

सत्संग के प्रभाव से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य आदि सब मिलता है। सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता। प्रभु की कृपा के बिना सत्संग सहज ही नहीं मिलता। सत्संगति आनंद एवं कल्याण का मूल है। सत्संग की प्राप्ति ही फल है, शेष सब फूल पत्ते के समान है। जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी सत्संग के प्रभाव से साधु बन जाते हैं। चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अनादिकाल से मनुष्य परमेश्वर की भक्ति करता आया है। भगवान निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं है। फिर भी हम जिस रूप में, जिस आकार में परमात्मा को याद करते हैं, प्रभु उसी रूप में आकर हमें कृतार्थ करते हैं।

प्रभु नाम का सुमिरन करने से सभी पाप संताप दूर होते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है और ईश्वरीय सुख की प्राप्ति होती है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 119।

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुल देवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिली किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:10 पर सुबह सुहानी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 7:40 पर आप सुनेंगे लोक संगीत, कार्यक्रम होगा शुभ प्याग। गाने सुहाने, कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 पर। सुबह 9:00 सुनिएगा स्वास्थ्य समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। विषय रहेगा थायराइड और आपकी सेहत। विशेषज्ञ डॉक्टर सुजीत रैना से विषय संबंधी प्रश्न पूछने हेतु स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर रहेगा 01892224391। गीतों का कारवा, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10:00। 10:30 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम रोग से निरोग जीवन, योगाचार्य शिखा मनकोटिया के साथ। 11:05 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए तराने मन के। कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 11:30। 12:00 सैनिक भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे सैनिकों के लिए। 12:30 पर नन्हे श्रोताओं के लिए होगा कार्यक्रम बाल सभा। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिली किए जाएंगे। शाम 5:10 पर सुनिएगा फिल्मों से भजन। 5:30 पर पेश किया जाएगा कार्यक्रम युवा मंच। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। मिंजरा कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 6:35। शाम 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिली किया जाएगा विशेष कार्यक्रम सशक्त भारत। सबरस कार्यक्रम पेश किया जाएगा 8:00। रात 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्मों से चुनिंदा गीत। 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम गीतों की महफिल। आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:20, 11:00, 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिली किए जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से ही हम रिली करेंगे हिम बीट्स 8:15 पर। रात 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से रविवासरीय संगीत सभा रिली की जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली से रिली किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8:00 समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 1:00 शाम 5:00, 7:00 और रात 11:00 हिंदी में समाचार। 1:05 शाम 5:05, 7:05 और रात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9:00 न्यूज एट 9:00।

तो ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 6:55 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

0: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं संप्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं संप्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमंत्री स्वीय यात्रा काले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत्। सामाजिक अंतर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते संदेशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयं। सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्व चन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चंद्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यंत शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थं उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयानत्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीं उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिम तापन प्रणाल्या युक्तम् एतत् ज्ञानं चंद्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चंद्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहर धारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं 7 क्रीडक पुरस्सरं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरर धर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरर धर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल

बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: दोस्तों नमस्कार, सुबह सुहानी कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे और आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रम सुन रहे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आज के विचार के साथ।
2: आज का विचार।
1: महात्मा बुद्ध ने कहा है, संदेह की आदत से बढ़कर कोई भयानक चीज नहीं है। संदेह लोगों को अलग कर देता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता को नष्ट कर देता है और सुखद संबंधों को तोड़ देता है। यह एक ऐसा कांटा है जो चुभता और दर्द देता है। संदेह एक ऐसी तलवार है जो जान ले लेती है।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिनके कारण आज का ये दिन खास बन गया। 1901 की बात करते हैं, पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन आज के दिन किया गया था। 2004 में आज के दिन पंचशील सिद्धांत की 50वीं वर्षगांठ पर बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज ही के दिन वर्ष 2007 में चीन के गोवी रेगिस्तान में पक्षीनुमा विशाल डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। 2008 में आज के दिन राजस्थान के बांसवाड़ा जिला में 96 मीट्रिक टन की सोने की खान का पता लगा। किन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए आपको बता देते हैं। 1880 की बात करते हैं, आज के दिन भारतीय राष्ट्रवादी वैज्ञानिक और आविष्कारक सतीश चंद्र दास गुप्ता का जन्म हुआ। 1905 में आज के दिन प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हीराबाई बरोदकर का जन्म हुआ। 1922 की अगर हम बात करें तो विख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक के आसिफ का जन्म आज ही के दिन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, करीम आसिफ को मुख्य रूप से 1960 में आई मुगले आजम फिल्म के लिए जाना जाता है, जो फिल्म उद्योग में एक मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। आइए सुनें मुगले आजम फिल्म का ये कालजयी गीत।

0: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे कि इन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 1955 में आज ही के दिन हिंदी और बांग्ला फिल्म अभिनेत्री किरण खेर का जन्म हुआ। 1960 में हिंदी फिल्म अभिनेता और दूरदर्शन कलाकार शेखर सुमन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और आज ही के दिन 1996 में भारतीय महिला मुक्केबाज निखत जरीन का जन्म हुआ। किन महान हस्तियों की निधन आज के दिन हुई ये भी आपको बता देते हैं। 1920 में आज के दिन प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक एवं इतिहासकार मैक्स वेबर का निधन हुआ। 2011 में असद अली खान का निधन हुआ। सुप्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक थे उस्ताद असद अली खान। 2020 की बात करते हैं, फिल्म अभिनेता थिएटर और छोटे पर्दे के कलाकार सुशांत सिंह राजपूत का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों सुबह सुहानी कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे आज के बारे में। आज है विश्व रक्तदान दिवस, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।
1: तुम

0: होगी।
1: जी दोस्तों, आज की बात करते हैं, आज है विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष आज ही के दिन यानी 14 जून को मनाया जाने वाला एक दिवस है। वास्तव में ये दिन महज एक दिन नहीं, वर्ष भर मनाया जाना चाहिए। रक्तदान के संबंध में चिकित्सा विज्ञान कहता है कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 16 से 60 वर्ष के मध्य हो, वजन 45 किलोग्राम से अधिक हो और जिसे HIV, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी जैसा रोग ना हो, वह रक्तदान कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हमारे देश में प्रतिवर्ष 1 करोड़ यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन उपलब्ध केवल 75 लाख यूनिट ही हो पाता है। रक्त के अभाव में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में मरीजों को अपने जीवन से हार माननी पड़ती है। शायद तभी रक्तदान को महादान की संज्ञा दी गई है। आप भी रक्तदान कर किसी का जीवन बचा सकते हैं। रक्तदान करने से कोई भी किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी नहीं आती और 24 घंटे के भीतर आपका शरीर आपके भीतर दान किए गए रक्त की पूर्ति कर देता है, जिसकी गुणवत्ता की पूर्ति 21 दिन के भीतर हो जाती है। साथ ही आपको बता दें कि नियमित रूप से रक्तदान करने वाले व्यक्ति को हृदय संबंधी रोग होने की संभावना कम हो जाती है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति की 3 माह में एक बार रक्तदान, जी हाँ, 3 माह में एक बार रक्तदान अवश्य कर देना चाहिए।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के शाहपुर से संबंध रखने वाले अंजेश जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का मान बढ़ाया है। उन्होंने विश्व की प्रतिष्ठित आयरन मैन 70.3 प्रतियोगिता सफलतापूर्वक पूर्ण की है। फिलीपींस के सुबिक बे में आयोजित विश्व प्रसिद्ध एंड्योरेंस प्रतियोगिता आयरन मैन 70.3 में अंजेश जोशी ने सफलता हासिल कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। कल यानी 15 जून को हिमाचल प्रदेश में होगा मेगा मॉक ड्रिल। कांगड़ा के उपमंडलों में सुबह 9:30 से शुरू होकर रात 9:30 तक ये अभ्यास चलेगा। भारतीय सेना को नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 30 जून से सेना प्रमुख का पद संभालेंगे। उनके नाम 2 ऑपरेशनल कमानों का नेतृत्व करने जैसा दुर्लभ कीर्तिमान भी दर्ज है। पिछले रोज की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में खेले गए 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचेस की श्रृंखला में भारत ने अफगानिस्तान को 7 से हरा दिया। इस श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। और दोस्तों, मौसम की बात करें तो धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में पिछले रोज हुई वर्षा के कारण यहां का मौसम सुहावना बना हुआ है। सुबह सुहानी कार्यक्रम में चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत।
1: सुबह सुहानी।

0: this June. Make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
4: दोस्तों, इस दौड़ती भागती जिंदगी में संवाद बहुत जरूरी है और यही कोशिश करता है आपका अपना आकाशवाणी धर्मशाला का परिवार।
5: जी श्रोताओं, चैटिंग और मैसेजिंग की इस दुनिया में आकाशवाणी धर्मशाला आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा मंच जहां जुड़ती है आम जनता की आवाज, उनके विचार, उनके सुझाव और उनकी उम्मीदें।
4: आपकी इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम जनवाणी, जहां हर राय मायने रखती है, हर आवाज गूंजती है।
5: साथियों, जनवाणी सशक्त माध्यम है आपके और हमारे बीच संवाद का, जिसमें आप फोन कॉल्स के माध्यम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं।
4: क्योंकि आपकी हर बात हमारे लिए मायने रखती है, तो आइए मिलकर अपनी बातें साझा करते हैं कार्यक्रम जनवाणी में, हर शुक्रवार सुबह 9 बजे FM धर्मशाला।

0: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हार्ड ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू। SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: शुभ प्रयाग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए नरोत्तम और साथियों का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्याग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे, इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
4: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर

कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था

0: बेहतर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख V. नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

0: अरिजीत सिंह की आवाज में राब्ता फिल्म का गीत अभी आपने सुना, संगीत प्रीतम का था।
1: एसयूवी का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन।
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
4: वो कहाँ है
5: मिठाई?
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
7: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.
9: रिश्तों की खुशबू से महकेगा हर पल,
10: जहां सवरेगा सखियों का आज और कल,
11: जानकारी मनोरंजन और भावनाओं से भरपूर,
10: जहां आप नहीं रह पाएंगे हमसे दूर।
9: आ रहा है आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी,
11: जहां मिलेंगे जीवन को बेहतर बनाने वाले विचार
10: और खान पान में बनाएंगे कई व्यंजन और अचार।
11: तो सोमवार से शनिवार सुनना ना भूलिए
10: आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी,
9: दोपहर 12:30 पर
11: सिर्फ आकाशवाणी धर्मशाला से।
8: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
7: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.
0: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज में जहर फिल्म का ये गीत, संगीत अनु मलिक का है।

0: श्रेय घोषाल की आवाज में जहर फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। टीएनसी अप्लाई।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। टीएनसी अप्लाई।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती। 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
6: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
7: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
8: Nexa.
0: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

जतिन ललित की बनाई तर्ज पर चलते चलते फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए MS धोनी फिल्म का गीत, आवाज अरिजीत सिंह की है।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।

0: श्रोताओं नमस्कार। मानव शरीर ईश्वर की बनाई अद्भुत संरचना है। शरीर में जब सभी कुछ ठीक से चलता है तो हमें सभी कुछ अच्छा लगता है। वहीं जब शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो जिंदगी बोझ लगने लगती है। कई बार बिना किसी कारण के हमें थकान का अनुभव होता है, शरीर का वजन अचानक बढ़ने लगता है या घटने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं या घबराहट होने लगती है, तो यह थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। थायराइड और आपकी सेहत, ये विषय है आज के आरोग्य कार्यक्रम का। और इस विषय पर जानकारी देने हेतु आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर सुजीत रैना, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टांडा जिला कांगड़ा में प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रोताओं 0-1-8-9-2-2-2-4-3-9-1 यह है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। थायराइड और आपकी सेहत, इस विषय पर यदि आप कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं या आप भी इस रोग से पीड़ित हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सुजीत रैना का।
1: नमस्कार और धन्यवाद आकाशवाणी धर्मशाला का, और मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को भी आज नमस्कार।
0: जी डॉक्टर रैना, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि थायराइड है क्या?
1: थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जिससे कुछ रसायन निकलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है। ये एक ग्लैंड जो नेक में, गर्दन में है और आगे की तरफ से गर्दन में है, और रफली इसका जो वेट है 10 से 20 ग्राम तक होता है। और जितने भी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड है, नेचर की तरफ से अब इस ग्लैंड में एक जो हमें बीमारियों को देखने का एक आसानी मिली है, वो इस तरीके से कि ये एक ग्लैंड दिखता भी है बाहर से और इसको हम हाथ लगा के छू भी सकते हैं। बाकी मेजॉरिटी जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनसे ये हार्मोन्स निकलते हैं, वो ना हम हाथ से देख पाते, हाथ से फील कर पाते या छू पाते या आँखों से देख पाते, वो ऐसी जगहों पे हैं सारे जिनको इन्वेस्टिगेशंस पे ही हम देख पाएंगे या उनकी जांच वगैरह कुछ कर पाएंगे। बट इसमें ये एडवांटेज है कि ये बाहर से भी दिखता है आँखों से, और अगर मैं हाथ भी लगा के देख लूँगा तो मुझे मैक्सिमम चांसेस ये मुझे हाथों पे भी फील हो जाएगा जी। तो इस ग्लैंड का जो नेचर ने कुछ काम दिए हुए हैं, कुछ हार्मोन्स बनाने

0: के काम दिए हुए हैं। अब उन हार्मोन्स का पूरी शरीर पे, पूरी बॉडी पे जो डिफरेंट सिस्टम्स है उन पर एक अपना इम्पैक्ट पड़ता है एक डेवलपमेंट के हिसाब से। ये हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड या इसके हार्मोन बनने लगते हैं ये गर्भाशय से ही शुरू होता है। गर्भाशय में पहले 2-3 महीने तक तो नहीं बनना लगता, लगभग ये समवेयर अराउंड 14-15 वीक्स के बाद ग्लैंड भी डेवलप होने लगता है और इसमें से कुछ हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। अब इन हार्मोन्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो ब्रेन की डेवलपमेंट पे है। तो गर्भाशय से ही इस हार्मोन के निकलने से एक छोटे जो फीटस जिसको हम बोलते हैं उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होना, ब्रेन में फिर अल्टीमेटली कितनी इंटेलिजेंस रहेगी, कितना सोचने की शक्ति रहेगी, उनके बाकी शरीरों का विकास कैसे रहेगा, इन चीज़ों पे डिपेंड कर लेता है। इसी हार्मोन का असर ब्रेन के बगैर दूसरे बॉडी के सिस्टम्स पे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमारा जिसको एक बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, जब हम खाना वगैरह खा लेते हैं अब उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना, हमने जैसे गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, अब पेट्रोल के बाद वो गाड़ी कैसे चलेगी वो एक इंजन का काम है। उसी तरीके से इन हार्मोन्स का हमारी बॉडी पे इस तरीके का असर है, जो हम खाना वगैरह खा लेते हैं उस खाने को भी अब एनर्जी में कन्वर्ट करना है, इसके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है जी इन हार्मोन्स का। इन्हीं हार्मोन्स का रोल पड़ जाता है फिर उसके बाद जो हमारा एडिपोज टिश्यू है, फैट जिसको बोलते हैं, उस पर बड़ा रोल है, मसल्स की डेवलपमेंट पर, बोन की डेवलपमेंट पर रोल है, हमारे लिवर में इसने इंसुलिन को लेके भी बड़ा इम्पैक्ट कर लेता है, लिवर से जो ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करना है वहाँ पे।
1: सब इस विषय में हम आगे बात करेंगे, अभी आपने बताया कि जैसे ये फीटस से ही शुरू हो जाता है और हार्मोनल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो क्या पैदा होने के बाद बच्चे को ये शुरू से ही रोग रहता है या बाद में आकर के ये पनपता है?
0: नहीं, जो अगर हम थायराइड ग्लैंड की बीमारियों के बारे में बात कर लेंगे तो इसके 3-4 टाइप की बीमारियां हैं। एक वो है जिसमें ये हार्मोन कम निकलना शुरू हो जाता है
1: जी,
0: उसका विपरीत उसका उल्टा जब हम देख लेते हैं उसमें हार्मोन ज़्यादा निकलता है, वो एक और कंडीशन, एक और बीमारी इन ग्लैंड्स की होती है। तीसरा एक और टाइप का है कि ना हार्मोन तो नॉर्मल निकल रहा है, ना वो कम निकल रहा है ना ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन मरीजों को तब भी गिलड़ बन जाता है, गोइटर जिसको हम बोल देते हैं, और वो यू थायराइड मीन्स वो हार्मोन तो निकाल रहा है, नॉर्मल हार्मोन निकल रहा है लेकिन गिलड़ तब भी बना हुआ
1: जी।
0: ये भी एक टाइप का बीमारी है। और लास्टली एक थायराइड की जो बीमारी इस तरीके की है, वो जैसे दूसरे अंगों में कैंसर होता है वैसे इसमें भी होता है। तो मेजॉरिटी तो यही 4 टाइप की बीमारियां
1: जी।
0: अब जो बच्चे से शुरू अगर हमने करना है, जो बर्थ पे अगर चांस है किसी बीमारी का, तो हाइपोथायरायडिज्म होने के चांसेस बर्थ पे हो सकते हैं, उसको हम कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म बोलते हैं
1: जी।
0: अब ये कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म बहुत कॉमन नहीं है बट अनकॉमन भी नहीं है, ये बच्चों में जो ही बर्थ पे हुआ है और कुछ म्यूटेशंस इस तरीके से कुछ जेनेटिक्स के हिसाब से कुछ चल पड़ता है उनमें कि ग्लैंड ही नहीं बन पाता, सो थायराइड ग्लैंड ही नहीं बन पाएगा, या कुछ में ग्लैंड बन पाया होगा लेकिन उनमें हार्मोन निकालने की प्रॉब्लम आ जाती, तो इस
1: सही तरीके से कार्य नहीं करेगा।
0: तो कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म जिसको बोलते हैं ये जन्म से हो सकता
1: जी। डॉक्टर साहब लक्षणों की बात करते हैं, कुछ लक्षण जिनके बारे में हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं कार्यक्रम में, इसके अलावा और क्या लक्षण इस रोग के होते हैं?
0: देखो लक्षण तो अगर हमें इंडिविजुअली लेना पड़ेगा, अगर हम लोग जहाँ हार्मोन कम निकल रहा है उसकी बात कर लेंगे जिसको हम हाइपोथायरायडिज्म बोल देते हैं। अब ये हाइपोथायरायडिज्म डिफरेंट एजेस में प्रेजेंट कर सकता है, डिफरेंट कॉमनली जो यूजुअली हम देख लेते हैं आमतौर पे 30-50 साल की उम्र में ये ज़्यादातर आने लगता है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है मर्दों के मुकाबले में। ये ऐसा नहीं है कि 50 के बाद नहीं हो सकता या 30 से पहले भी नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है, ये 5-6 साल के बच्चे में भी प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग जुवेनाइल हाइपोथायरायडिज्म बोल देते हैं
1: जी। लेकिन हम पूछना ये चाह रहे हैं कि किस तरह से किसी को ये मालूम हो कि उसे ये समस्या हो रही है, क्या इसके लक्षण हो रहते हैं?
0: हाँ, इसी पे ये है, तो हर एज के हिसाब से हो सकता है ये लक्षण अलग अलग आ जाएंगे, सेक्स के हिसाब से भी लक्षण थोड़े बहुत अलग अलग आते हैं, बट ब्रॉडली स्पीकिंग जो हम मोटा मोटा कर लेंगे, सबसे पहले तो लक्षण ऑल ऑफ ए सडन नहीं आएंगे इसके, ये ऐसा नहीं है कोई वायरल इन्फेक्शन है, आज आदमी बिल्कुल ठीक था शाम को बुखार हो गया और उसको लगता है यार मैं तो

0: बालों के, जब हम फेस की बात कर लेंगे तो आंखों के आसपास जैसे हमारी आईब्रोज है, आईब्रोज भी थोड़े थोड़े कम होने लग सकते हैं, आंखों के सामने भी आसपास भी सूजन आना शुरू हो सकता है, चेहरे का रंग भी थोड़ा सैलो होता है, पीलापन जैसा आने आ सकता है, इसमें ड्राई हो जाएगी स्किन, स्किन में भी ड्राइनेस हो जाती है, खारिश आने लग सकती है, पाँव में सूजिश आ सकती है, इनको
1: जी
0: ज़्यादा ठंड लग रही है। अब जैसे हम घरों में आम लोग रात को सो लेंगे और हम देख लेते हैं एक आदमी ज़्यादा रज़ाइयाँ ले रहा है या ज़्यादा कंबल ले रहा है दूसरे कंपेरिजन में, तो हमें लगना चाहिए यार शायद इसको रिलेटिवली कुछ टाइम से शायद इस तरीके से बोल रहा है कि मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन इन तरीकों की हो सकती है, बट इसके बगैर जैसे ब्रेन की प्रॉब्लम आ जाती है इनमें आमतौर पर, तो ये थोड़ा बहुत मेमोरी डिफेक्ट्स आने लगते हैं, सोचने में मतलब मेमोरी में प्रॉब्लम आ जाएगी,
1: जी,
0: याददाश्त कम
1: भूलने
0: होने लग
1: की
0: देंगे। हाँ जी,
1: समस्या। जी
0: फिर जिसको हम एक कॉग्निटिव डिक्लाइन बोलते हैं उनको थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस में भी फर्क आने लग सकता है इस चीज़ के साथ साथ,
1: जी
0: शरीर में दर्दें आने लगती है, क्रैम्प्स आ सकते हैं उनको, पेरेस्थीसियाज हम बोल देते हैं, पेरेस्थीसियाज का मतलब उनको ऐसे लोगते हैं, लोग बोलेंगे कि यार मुझे सुइयाँ चुभ रही है, चुन चुन हो रहा है या नमनेस हो रही है, इस तरीके से कुछ चीज़ें साथ में आने शुरू हो सकती है।
1: जी
0: कुछ एक चीज़ें कभी हाथों के आसपास जिसको हम उनको दर्द होने लगता है, उंगलियों में, छोटी उंगलियों में कार्पल टनल सिंड्रोम बोल देते हैं, ऐसी भी प्रेजेंटेशंस इसके साथ हो सकती है, ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है इन मरीजों का, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है। फीमेल्स में थोड़ा माहवारी को लेके प्रॉब्लम्स आने लगी, इनिशियली तो थोड़ा ब्लीडिंग ज़्यादा दिन रह सकता है इनको, इनफर्टिलिटी आ सकती है, जैसे बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम आ जाएगी या बच्चा ठहरते तो गिर जाने की प्रॉब्लम आ सकती है उनको,
1: जी
0: तो ये इस तरीके से। और अगर छोटा जैसे मैंने जुवेनाइल की बात कर ली, उनमें उन बच्चों में क्या हो सकता है, थोड़ा पेट बड़ा होने लगता है, एक अम्बिलिकल हर्निया आ सकता है उनको, कभी कभी प्रिकॉशियस प्रोबेबिलिटी है कि टाइम से पहले ही उनके वो जिसको एक मैच्योरिटी बोलते हैं वो आने लग जाती है उनमें, न्यूरोकॉग्निटिव डिक्लाइन इन बच्चों में हो सकता है। सो जुवेनाइल में थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है, मेल में तो ये जो फीमेल वाली प्रॉब्लम्स है ये नहीं आ जाएंगी, तो मेल के हिसाब से तो कुछ अपने जैसे ब्रॉड सिम्टम्स थे वो आ जाएंगे।
1: जी थायराइड के विषय में बहुत से लक्षण डॉक्टर सुजीत रैना ने हमें बताए। और दोस्तों, यदि आप भी इस तरह के कोई लक्षण अपने शरीर में पा रहे हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। 01-892-224-391 है स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो
2: हेलो संजीव जी, नमस्कार
1: जी। नमस्कार
2: डॉक्टर। नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार।
2: देखिए डॉक्टर, थायराइड की वजह से आप बता रहे थे कि ये हार्मोन कम बनाता है या ज्यादा बनाता है, तो मेरा छोटा सा
0: जी
2: प्रश्न है
0: जी जी
2: कि जो हार्मोन ज्यादा बनते हैं या कम बनते हैं इसका क्या कारण हो सकता है?
0: जी इसका तो ब्रॉडली हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर लेनी है तो ब्रॉडली इसको हम शरीर में एक ऑटो इम्यून डिजीज़ बोल देते हैं। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ समझाने के लिए इस तरीके से कि हमारे शरीर को कुछ बीमारियां फाइट करने के लिए जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, ये सबके शरीर में, और ये प्रतिरोधक क्षमता किसी रोग के अगेंस्ट या किसी कीटाणु के अगेंस्ट होती है। बदकिस्मती से हमारी जो ये प्रतिरोधक क्षमता है ये कभी कभी हमारे शरीर के ऑर्गन्स को ही फॉरेन मानने लगती है, इसको भ्रम हो जाता है, भ्रमिक हो जाती है हमारी बॉडी में ही, और वो अपनी बॉडी में अपने ऑर्गन्स को अटैक करने लगते हैं, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज बन जाता है। ये कॉमनेस्ट कारण है आजकल हाइपोथायरॉयडिज्म होने का, जिसको हम लोग एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। अब
2: और
0: इसमें
2: दूसरा प्रश्न ये है कि यह क्या अनुवांशिक बीमारी होती है,
0: जी,
2: और अगर बीमारी हो जाए तो हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: जी इसमें डायरेक्टली तो अनुवांशिक नहीं है, बट ये इस तरीके से हम मान के चलेंगे कि कुछ फैमिलीज़ में कुछ जीन्स ट्रांसमिट हो जाते हैं पेरेंट्स से या बच्चों में। अब उन जीन्स को कुछ ट्रिगर मिलता है बाहर से, ट्रिगर का मतलब हो गया कुछ उसको स्टिमुलेट कर रहा है, और ये एनवायरनमेंटल ट्रिगर्स बोलते हैं हम इनको। किसी में कुछ जीन्स तो है ससेप्टेबल है, उसको चांस है हाइपोथायरॉयडिज्म होने का या हाइपरथायरॉयडिज्म होने का, बट सब में नहीं होगा। जब तक ये कॉम्बिनेशन जेनेटिक प्लस कुछ एनवायरनमेंटल ट्रिगर्स ना हो, ये दोनों मिलके एक जिसको मैंने बोला ये ऑटो इम्यून प्रोसेस शुरू होगी, तो यूजुअली इसी तरीके से हो जाएगी। सो जिसमें फैमिली हिस्ट्री है उनमें चांसेस तो ज़्यादा है, बट ये ज़रूरी नहीं है सब में होगा, अनलेस एंड अंटिल वो एक जिसको हम कॉकटेल बोलते हैं जिसमें एक मिक्सचर रसायन

0: होगा, एक ट्रगर्स का, एनवायरमेंटल ट्रगर्स या जिसको हम बोल सकते हैं नेचर की तरफ से, कुदरत के जितने भी कुछ अवेलेबल है हमारे चीज़ें, जैसे एयर पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, इन्फेक्शंस है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इनका कुछ मिश्रण में गड़बड़ हो जाए तो ये एक ट्रिगर बन जाते हैं। तो ये ट्रिगर बन गया और जेनेटिक फैक्टर्स थे तो उनमें चांसेस हो जाते हैं, ये दोनों तरफ से, कम निकलना भी और ज़्यादा निकलने वाला भी।
1: जी लगता है जिज्ञासा शांत हो गई है आपकी,
2: और आगे भी बताएंगे
1: जी। अपना परिचय देना चाहें तो दे सकते हैं।
2: संजीव जी, मैं बोल रहा हूँ पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गांव महतापुर से, महेंद्र सिंह राणा।
1: जी राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
0: संजीव जी, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा
1: जी।
0: कुछ ये जो कारण है जिसको मैंने अभी ऑटोइम्यून एक्सप्लेन करना चाह रहा था हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं, हिस्ट्री में हाइपोथायरॉयडिज्म होने का सबसे बड़ा कारण आयोडीन डेफिशिएंसी था,
1: आयोडीन की
0: डेफिशिएंसी।
1: इसके लिए भारत सरकार ने मुहिम भी चलाई थी, इस विषय में हम आगे बात करेंगे कार्यक्रम में। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का।
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
4: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
5: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
6: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
7: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
6: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
8: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आरोग्यम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं थायराइड और आपकी सेहत विषय से संबंधित। डॉक्टर सुजीत रैना आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में उपस्थित हैं। कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

0: सहकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधायुक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। विश्व रक्तदान दिवस आज, देश सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। भगवान शिव के पवित्र धाम की किन्नौर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 से 30 जुलाई तक। धर्मशाला में एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे। और प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटों में हुई वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरदर शाखा के बीच शुरू की गई है। ये पहल केंद्रीय मंत्री की ग्रामीण डाक सेवकों और डाक सहायकों के साथ बातचीत में मिली प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिसमें दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में तेज संपर्क पर जोर दिया गया था। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मंत्रालय ने बताया कि मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित रेहरदर शाखा तक पहुंचने में वर्तमान में 2 घंटे से अधिक समय लगता है। ड्रोन सेवा से यह समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में कल संपन्न हो गया। सम्मेलन में घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि व्यापार और डिजिटल कृषि पर निर्णयों को शामिल किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक कृषि उत्पादन में तकरीबन 42% का योगदान ब्रिक्स देशों का है। सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
1: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। आज विश्व रक्तदान दिवस है। ये दिन अमूल्य मानव जीवन बचाने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में रक्तदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। इस वर्ष की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने विश्व रक्तदान दिवस पर देशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्त की एक बूंद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है और किसी परिवार में फिर से खुशी ला सकती है। उन्होंने लोगों से मानव जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया। भगवान शिव के पवित्र धाम किन्नौर कैलाश की वार्षिक यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से लगभग 6050 मीटर यानी 19850 फुट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक व साहसिक तीर्थ स्थलों में से एक है। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग पार कर पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: समुद्र तल से लगभग 6050 मीटर यानी 19850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक एवं साहसिक तीर्थों में से एक है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 376 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए। इस यात्रा से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और जिले में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी के लिए नो रिमेश ने
0: ताजा समाचार।

0: के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। धर्मशाला में भारत ने कल रात 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 24 ओवर 5 गेंद में 194 रन बनाए थे। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज ने शानदार शतक बनाया। उन्होंने 51 गेंद पर 102 रन बनाए। भारत के लिए नए खिलाड़ी हर्ष दुबे और गुरनूर बराड़ ने 3-3 विकेट लिए। लगातार बारिश के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इधर ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एस्बेस्टोन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। टूर्नामेंट के मैच इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे हैं। फाइनल मैच अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स में होगा। आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश में कल मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कांगड़ा जिले के विभिन्न उपमंडलों में भी ये अभ्यास सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक चलाया जाएगा। उपायुक्त हिमराज बैरवा ने बताया कि अभ्यास के माध्यम से आपदा से निपटने की तैयारियों में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कल आयोजित होने वाले मॉकड्रिल के सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त किरण भड़ाना ने लोगों से मॉकड्रिल के दौरान सायरन, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन गतिविधियों को देखकर न घबराने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 15 जून को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बहु आपदा मॉक ड्रिल आयोजित करेगा। उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक विभिन्न काल्पनिक आपदा परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत सिसु में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, चाकस नाला में भूस्खलन, जहलमा नाला में फ्लैश फ्लड, उदयपुर और काजा में भूकंप तथा व्हीलिंग वन क्षेत्र में रात्रिकालीन वनाग्नि से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, NDRF, SDRF और स्थानीय समुदाय की भागीदारी रहेगी। उपायुक्त किरण बढ़ाना ने लोगों से अपील की है कि मॉकड्रिल के दौरान सायरन, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन गतिविधियों को देखकर घबराए नहीं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: मॉनसून से पहले सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में लोगों को भीषण गर्मी और तपिश से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य में प्री मानसून की ये सक्रियता 15 से 19 जून तक बनी रहेगी, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 से 25 जून के बीच हिमाचल में दस्तक देने की अनुकूल संभावनाएं हैं। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हवाले से सुर्खी दी है, दिल्ली से चल रही हिमाचल सरकार। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, UPS लागू करेगी भाजपा सरकार। शिमला में बोले नड्डा, पेंशन के मामले में भाजपा की नीति पहले से ही स्पष्ट। जबकि अमर उजाला के मुताबिक, मैं दिल्ली में ही करूंगा काम, पेंशन स्कीम पर जयराम व प्रदेश के नेता लेंगे फैसला। पंजाब केसरी का शीर्षक है, मंडी मनाली NH पर 20 किलोमीटर लंबा जाम। हिमाचल दस्तक लिखता है, धर्मशाला वनडे में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। मौसम पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं, मॉनसून से पहले चोटियों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में झमाझम बारिश। अमर उजाला का शीर्षक है, रोहतांग धौलाधार में बर्फबारी, शिमला मंडी व कांगड़ा में बारिश, जबकि दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, हिमाचल में बारिश से तापमान में गिरावट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। विश्व रक्तदान दिवस आज, देश सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। भगवान शिव के पवित्र धाम किन्नौर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 से 30 जुलाई तक होगी आयोजित। धर्मशाला में एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराया, 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे। और प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटों में हुई वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचारों के बाद आरोग्यम कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं थायराइड और आपकी सेहत से संबंधित। डॉक्टर सुजीत रैना आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे थायराइड के लक्षणों के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म के बारे में हमने बात की, जिसमें कम सक्रिय थायराइड जिसे हम कह सकते हैं, हाइपर थायराइडिज्म, इस विषय में डॉक्टर साहब कुछ बताइए।
1: जैसे मैंने हाइपोथायराइडिज्म बोला, इसके जो कुछ सिम्टम्स है, लक्षण है क्या आते हैं, वैसे हाइपर थायराइडिज्म के भी अपने कुछ लक्षण हैं और आमतौर पर वो विपरीत दिशा के चले जाएंगे। यहाँ पे मरीज थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होने लगता है, जिसको हम हाइपर एक्टिविटी बोल सकते हैं। वो बेचैनी जैसा महसूस कर लेता है, एक जगह पर बैठना नहीं है, इधर उधर चलते रहेगा। उसके शरीर में वहाँ हाइपो में ठंड ज़्यादा लगती थी, यहाँ तो गर्मी ज़्यादा लगने लगी। वहाँ हाइपोथायराइडिज्म में भूख कम होने के बावजूद वज़न बढ़ रहा था, यहाँ अच्छी खासी भूख होने के बावजूद वज़न घटता है, दुबले पतले होने लग लेते हैं ये लोग। धड़कन बढ़ जाती है इनमें, धड़कन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रह लेते हैं, वो इरेगुलर भी हो सकती है धड़कन। इस तरीके से हार्ट की कुछ दिक्कतें आ जाती है इनमें, बार बार लैट्रिन जाने के लिए इनको हो सकता है, रात को उठ जाएंगे और दिन में भी बार बार लैट्रिन जाने के लिए दिक्कतें आ सकती हैं। महिलाओं में भी कुछ अगेन जो माहवारी को लेके, उसको लेके कुछ दिक्कतें आने लगती है। एक बुज़ुर्गों में अपने आप में इसकी एक प्रेजेंटेशन अलग सी है हाइपरथायरॉयडिज्म की, जिसको हम एपैथेटिक थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुस्त हो जाएंगे, एक ही जगह बैठेंगे, उनका मसल मास कम होने लगता है। बाकी लक्षण ज़रूरी नहीं में आएंगे। सो बुज़ुर्गों में कभी कभी ये चीज़ें हमें इस हिसाब से पकड़नी पड़ती है, अगर ऐसी कुछ प्रेजेंटेशन हो।
0: जी डॉक्टर साहब, ये जो लक्षण अभी आपने बताए, अन्य बीमारियों से मिलते जुलते भी हो सकते हैं ये लक्षण, तो कैसे फ़र्क करें कि ये थायराइड के लक्षण हैं?
1: हाँ, ये जो थोड़े बहुत हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं, ये कभी कभी एंग्जाइटी के जैसे मिलते जुलते लगते हैं हमें, क्योंकि एंग्जाइटी में भी ये कुछ चीज़ें आ सकती हैं। तो आमतौर पे ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम से अगर चल रही है, 3 महीने से ज़्यादा से ये सिम्टम्स है, तो हमारा दिमाग अगर एग्जामिनेशन के बाद भी हम देख लेंगे, कुछ कंपन इनमें महसूस होती है, जिसको हम ट्रमर बोलते हैं। और अगर मैंने फिर थायराइड ग्लैंड को हाथ लगा के पैल्पेट कर लिया, मुझे लगता है ये बड़ा हो रहा है उनका, इनके जैसे हाथ मिला लेंगे इन लोगों के साथ, इन मरीज़ों के साथ, तो पसीना बहुत आया था। ये सारे एंग्जाइटी में भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत इन चीज़ों का, इसीलिए एंग्जाइटी के साथ साथ मुझे इन चीज़ों को मतलब एक्सक्लूड करने के लिए एक थायराइड का टेस्ट कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, और ये चीज़ें तभी मुझे डिफरेंशिएट इजीली हो सकती है।
0: जी, टेस्ट की आपने बात की है, किस तरह का टेस्ट होता है? ये खून की जांच होती है या कुछ और होता है?
1: हाँ, थायराइड की बीमारियों को पता करने के लिए सिंपल बेसिक से खून के ही टेस्ट है, और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है थायराइड के असेसमेंट करनी लैब्स में, तो एक ब्लड का सैंपल ड्रॉ कर लिया आप, एक दो ml का सीरम का सैंपल चाहिए, और एक TSH जिसको हम बोलते हैं, एक बेसिक सा टेस्ट है, और TSH के बेसिस पे ही हमें आधी से ज़्यादा काम हमारा हो जाता है।
0: जी,
1: TSH बढ़ गया है तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, नॉर्मल से ज़्यादा है, और TSH नॉर्मल से कम हो गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म है। सब्सिक्वेंट टेस्ट की ज़रूरत हमें बाद में पड़ जाती है, बट पहले एक बेसिक काम हमारा
0: T3 और T4 भी आते हैं।
1: जी जी जी, सो आमतौर पे हम लोग कॉम्बिनेशन में ही ये करा लेते हैं, T3 T4 TSH, क्योंकि मरीज़ को हम चाहते नहीं दो बार बुला लें। एक बार TSH कर लूँ मैं, बाद में मुझे अब नॉर्मल आ गया तो सब्सिक्वेंटली कुछ और करना पड़े।
0: जी,
1: तो T3 T4 लो मिल गया, TSH बढ़ा है, तो ये हाइपोथायराइड हो जाता है, और T3 T4 बढ़ गया है और TSH सप्रेस हुआ, कम हो गया हुआ, तो ये हाइपरथायराइडिज्म मोटे मोटे तौर से ऐसे बन जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये बोला जाता है कि ये थायराइड का जो टेस्ट है ये खाली पेट कराना चाहिए, इसमें कितनी सत्यता है?
1: ज़्यादातर तो सत्यता नहीं है, बट TSH पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। अगर हम लोग बेटर है, अगर कर सकते हैं तो एम्प्टी स्टॉमक ही कर ले।
0: जी, एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, लगता है फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे लाइफस्टाइल की, खान पान की। खान पान का कितना असर रहता है डॉक्टर साहब थायराइड में?
1: देखो, खान पान में तो एक बैलेंस डाइट सब चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ भी वही बैलेंस डाइट ही हमें चाहिए। बैलेंस डाइट में जिसमें मिक्स्ड वेजिटेबल्स हो गई, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हो गए हैं एडिक्वेट क्वांटिटी में, और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह, दूध दूध से बनी हुई चीज़ें खा लेंगे, तो ये एक, और दालें हो गई या ग्रेन्स हो गए, ग्रेन्स में जैसे सीरियल्स है जिनको हम लोग दाल चावल सॉरी चावल और चपाती वगैरह, ये एक बेसिक सा बैलेंस सा डाइट है
0: जी।
1: अब इनमें आयोडीन की मात्रा बहुत मिलती नहीं थी, तो इसीलिए चूँकि जो बेल्ट जिनको हम एंडेमिक गोइटर बेल्ट बोल देते हैं, जो हिमालयन रीजन है और सब हिमालयन रीजन है, जो जे एंड के से नॉर्थ ईस्ट तक लगभग 2500 किलोमीटर का एरिया है, ये एरिया आयोडीन डेफिशिएंट है। तो एक जब लैंडमार्क एक स्टडी हमारे कांगड़ा एरिया में ही हुई थी, ये 56 से 62 के बीच में
0: जी,
1: जिसने आयोडीन डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए सॉल्ट में आयोडाइज सॉल्ट बनाने का एक जिसको एक कंक्लूजन मिल गया। तो उसके बाद से जब से आयोडाइज साल्ट, यूजुअली 1983 के बाद ऑलमोस्ट अब मेजॉरिटी जो लोग हैं वो आयोडाइज साल्ट ही ले रहे हैं, सो आयोडीन की पूर्ति वहाँ से हो जाती है
0: जी।
1: अदरवाइज फूड्स में सप्लीमेंट्स हमें या तो आयोडीन यूजुअली जो रिच है वो सी फूड्स है, सो जितना नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का जहाँ सी फूड्स ईजिली अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनमें चांसेस रहते थे। सो हमारा इसीलिए जो नमक है वो टेंडेंसी यही रहनी चाहिए, वही हमारी एक मैसेज होनी चाहिए कि हमेशा आयोडाइज साल्ट ही ले ले जिससे आयोडीन की कमी ना हो। आयोडीन के बगैर कुछ और खनिज जो थायराइड पे इफेक्ट करते हैं जिसमें सेलेनियम एक और है, अब सेलेनियम की कमी भी प्रॉब्लम कर सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म या इस तरीके के रोग करने के लिए
0: जी।
1: सो सेलेनियम इज अगेन, इसको भी ये जो रिच है यूजुअली हमारे पोल्ट्री हो गया वो एग्स वगैरह है या मिल्क या दूध से बनी हुई चीज़ें, इनमें रिच हो सकता है सेलेनियम भी आ जाए, कुछ लेंटिल्स या दालें वगैरह जहाँ से ये आ सकता है। तो ये एक आदमी को एक बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है जिसमें आयोडीन मिल जाए अच्छे से, उसको सेलेनियम मिल जाए, जिंक आयरन भी कभी कभी माना जाता है इन बीमारियों को बचाने के लिए, सो एक एडिक्वेट जिंक आयरन की भी इनटेक हो
0: जी। डॉक्टर साहब, कुछ इस तरह की भी खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें खाने से थायराइड बढ़ जाता हो?
1: हाँ, पुराने टाइम में एक जिनको हम गाइट्रोजेंस बोलते थे, जैसे ब्रैसिका फैमिली है, ब्रैसिका फैमिली में आमतौर पर बंद गोभी आ गया, फूल गोभी आ गया, ब्रोकोली वगैरह है, मूली गाजर है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको माना जाता था ये गाइट्रोजेंस है, बट ये तभी गाइट्रोजेंस बन जाएंगे ये जब एक्सक्लूसिव डाइट इनके बेस पे हो, जो हम लोग करते नहीं है। एक्सक्लूसिव डाइट मतलब हो गया कि हमारा खाना ही टोटली यही चीज़ें हैं, ये चूँकि हमारा खाना इज़ बेस्ड ऑन सीरियल जिसमें चावल चपाती है, साथ में कुछ सब्जियां हैं, साथ में कुछ दालें वगैरह, सो या दूध व दूध से प्रोडक्ट्स है, सो एक बैलेंस डाइट वही है। सो उस मिकदार में अगर हम लोग ये सब्जियां ले भी रहे हैं वो गाइट्रोजेनिक नहीं हो जाती है
0: जी। एक श्रोता कार्यक्रम में हमें फ़ोन कर रहे हैं।
2: हेलो।
0: हेलो
2: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
0: जी राकेश जी, थायराइड के संबंध में आज आप बात कर सकते हैं, डॉक्टर सुजीत रैना हमारे साथ हैं स्टूडियोज में।
2: जी जी जी, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मेरा एक दो सवाल है। सबसे बड़ी बात ये जो जो थायराइड जो है और इसमें क्या बच्चे भी आ सकते हैं, बच्चों को भी हो सकता है, और दूसरा सवाल ये हो सकता है सभी को, तो इसको कम कैसे किया?

0: जा सकता है, मेरा ये दो सवाल है
1: जी। बच्चों में भी हो सकता है, एक तो मैंने पहले बोला कंजनाइटल, जन्म के टाइम जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें भी ये दिक्कत जन्म से ही हो सकती है, बहुत कॉमन नहीं है बट ऐसा कि नहीं होती है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है 5-6 साल के बाद भी, तो जैसे बड़ों में जिसको मैंने बोला एक ऑटोइम्यून है, रोग के प्रतिरोधक वाला जो प्रोसेस है, वो बड़ों में बच्चों में भी हो सकती है ऑटोइम्यून कॉज, तो ये 5-6-7 साल 8 साल 10 साल बच्चों में भी होने का पूरा चांस है। तो ऐसा नहीं है कि ये बड़ों की ही बीमारी है। तो इसका रोकथाम करने का तो बहुत ज़्यादा हमारे पास तरीके हैं नहीं है, बट अगर जो चीज़ें हमारे पास है, चूँकि मैंने बोला कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और उन जेनेटिक फैक्टर्स को कुछ पर्यावरण के ट्रिगर्स मिल गए। अब पर्यावरण के ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, कोई आमतौर पे जैसे मैंने कुछ बोला आयोडीन की कमी होना, कभी कभी कुछ लोग आयोडीन बहुत ज़्यादा भी खा सकते हैं, वो भी दिक्कत कर सकता है। सेलिनियम है कुछ खाने में, ये चीज़ें कम होनी, इन्फेक्शंस हो गए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है ना, ये चीज़ें कभी कभी ट्रिगर कर जाते हैं। कुछ फैमिलीज़ में कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स रन करते हैं, हम अब किसी को गठिया की प्रॉब्लम है फैमिलीज़ में, उनमें ये चीज़ें चांसेस ज़्यादा होने के हो जाते हैं। कुछ फैमिलीज़ में आप किसी को विटिलिगो, विटिलिगो मतलब जैसे सफ़ेद चमड़ी हो जाती है, ऐसे वाली बीमारियां, किसी को कुछ स्किन की और किस्म की बीमारियां जिनमें ऑटोइम्यून कंपोनेंट है, किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है जो इंसुलिन बचपन से ही ले रहे हैं, उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं थायराइड डिसऑर्डर के साथ साथ होने में।
0: जी धन्यवाद जानकारी देने
2: के लिए। जी राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया। डॉक्टर साहब बीमारियों की आपने बात की है, जैसे मधुमेह से पीड़ित जो हमारे मरीज हैं उन्हें थायराइड होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ऐसे ही उच्च रक्तचाप या गुर्दे संबंधित जिन्हें रोग हैं क्या उन्हें भी ये समस्या होने की संभावना रहती है?
1: ये डायरेक्टली तो कारण नहीं बनते हैं, बट आपको इसको उल्टा तरीके से मैं ले लूँ। अगर एक किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म अगर ट्रीट नहीं हो रहा तो इसके क्या चांसेस रहते हैं आगे डायबिटीज़ होने के, वो बहुत ज़्यादा रह सकते हैं
2: जी।
1: इनका थोड़ा बहुत वेट बढ़ जाता है, लेथार्जिक रह लेते हैं, सुस्त रहते हैं, काम कम करना, इनके लिपिड्स पे कुछ इम्पैक्ट पड़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाते हैं। सो इनको डायबिटीज़ होने के, क्योंकि मैंने पहले बोला कि ये जो थायराइड हार्मोन है इसका काम फैट पर भी बहुत अच्छा है, लिवर पर भी बहुत अच्छा रहता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए भी बहुत कारगर है। तो जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है उनको चांसेस है डायबिटीज़ होने के, इसी तरीके से जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है उनको बहुत चांसेस रहते हैं ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होने के
2: जी।
1: कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दो ही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा नहीं है, बट हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, अब जैसे किसी का ओएसए, ओएसए हम बोलते हैं ओबस्ट्रक्टिव स्लीप अपने, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक हिस्सा है, इनके साथ साथ हाइपोथायरॉयडिज्म होना भी एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है। सो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा तो है नहीं है, बट और ये एक दूसरी बीमारी के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बन सकता है कारण होने का
2: जी। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे थायराइड के बारे में, अभी लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
3: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
6: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
5: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। विषय है थायराइड और आपकी सेहत। हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर सुजीत रैना, जो बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं थायराइड के बारे में। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
6: हेलो
2: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
6: नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार, नाम बताइए।
6: जिला कांगड़ा गांव गुरकड़े से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
2: जी गोल्डी, थायराइड के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं।
6: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
6: अगर किसी को थायराइड हो तो पहले थायराइड हो जाए तो फिर बाद में थायराइड बिल्कुल ही कम हो जाए तो फिर उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, अगर मतलब लिमिट से भी ज्यादा कम हो जाए तो?
1: नहीं, थायराइड होने का मतलब मेरे को जो आपसे समझ आ रहा है सवाल में, वो पहले हाइपोथायराइडिज्म हो गया, मतलब हार्मोन कम निकल रहा है।
6: जी जी, मतलब कि पहले बढ़ गया तो फिर बाद में जब दवाई खाने के बाद बिल्कुल अगर कम हो जाए तो फिर उसको कंट्रोल कैसे करें मतलब?
1: हाँ, ये दो तीन चीज़ें इसके मुझे जो समझ आ रही है आपकी बात, या तो किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, उसको दवाई पे डाल दिया तो वो ओवर ट्रीट हो गया, उसको जितनी दवाई ज़रूरत थी उससे ज़्यादा देने लगे जिसके कारण से वो कम हो जाएगा, या तो ये एक सिचुएशन लग रही है मुझे जो आपके सवाल का मैं जवाब दे सकता हूँ। बट इसके बगैर एक और सिचुएशन कभी कभी आती है, वो थोड़ा इससे भिन्न है। उसमें क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं उसको सबएक्यूट थायराइडाइटिस। उसमें क्या क्या कभी कभी शुरू शुरू में ज़्यादा निकलने लगता है, वो कुदरती है, नेचुरल हिस्ट्री रहती है, इसका कोर्स नेचुरली वही रहता है। उस टाइप की बीमारी में ज़्यादा निकलने लगता है कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में वो कम निकलने लगता है। 2-3 महीने के लिए ज़्यादा हार्मोन निकलता है, 2-3 महीने के बाद वो कम निकलना लगता है। और अगर उस सिचुएशन में कभी किसी ने कम की सिचुएशन में मान लो दवाई पर डाल दिया तो उसको भी चांसेस रहते हैं कि वो बाद में और कम हो जाए, सॉरी उसका जो TSH है वो नीचे की तरफ चला जाए और हमें लगता है वो ओवर ट्रीट हो। सो मुझे लगता है अगर
2: जी गोल्डी को पूरी जानकारी मिल गई है थायराइड के बारे में, और आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं 01892224391, यह है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। डॉक्टर सुजीत रैना हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे थायराइड के बारे में, और बात जब उपचार की आती है तो इसकी जो दवा चलती है ज़्यादातर वो दवा ऐसी होती है जो ता उम्र हमें लेनी पड़ती है, क्या ये सही है?
1: जी, हाइपोथायराइडिज्म की पहले बात कर लेते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में चूँकि मैंने बोला एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें नेचुरल स्टोरी में क्या, नेचुरल हिस्ट्री में क्या, इनिशियली इन्फ्लेमेशन होगी, ग्लैंड थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट वक्त वक्त के साथ वो एट्रॉफी हो जाता है, टोटली हार्मोन निकालना बंद कर देता है। तो इसीलिए लाइफ लॉन्ग ही थेरेपी चलेगी, और लाइफ लॉन्ग थेरेपी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक टैबलेट लेनी पड़ती है, फॉर्चुनेटली टैबलेट है, हमें तो इंजेक्टेबल कुछ लगाना नहीं पड़ता। वो टैबलेट भी एक ऐसी है जो वो नॉर्मल हार्मोन है, नेचुरल हार्मोन है, जो बॉडी में ही निकल रहा है वही टैबलेट फॉर्म में हम दे रहे हैं
2: जी।
1: तो इसलिए उसका साइड इफेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वही बॉडी में निकलता है, उसको बाहर से अब सप्लीमेंट कर रहे हैं टैबलेट की फॉर्म में
2: जी। लेकिन अगर ये अकेले इस दवाई को लेना है तब तो साइड इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन कई बार और भी बहुत से रोग होते हैं और साथ में बहुत सी दवाइयां और चलती हैं, तो ऐसे में भी क्या साइड इफेक्ट इसमें नहीं होता है?
1: जी नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, खाली प्रॉब्लम यही हो सकती है अगर हम ये गोली ज़्यादा मिकदार में दें और आदमी को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तभी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज़ जितना अगर हमने रेगुलरली फॉलोअप पर रख रहा है, रेगुलरली टेस्ट कर रहे हैं और हमें लग रहा है हमारा जो हार्मोन लेवल है वो नॉर्मल रह रहा है तो लाइफ लॉन्ग लेना है। ये तो हाइपोथायराइडिज्म का हो गया। हाइपरथायराइडिज्म में थोड़ा भिन्न है, उसमें लाइफ लॉन्ग तो ट्रीटमेंट नहीं चलता है
2: जी,
1: और आमतौर पर उसमें 2-3 टाइप्स के जो कॉमन है, कॉमनेस जिसमें ऑटोइम्यून है, ग्रेव्स डिजीज जिसको हम बोल देते हैं, उसमें इनिशियली अगर हमने दवाइयों से डिसाइड किया उसको ट्रीट करना, उसके 2 और तरीके हैं इलाज के, रेडियो आयोडीन थेरेपी और कभी कभी सर्जरी। बट कॉमनली जैसे इनिशियली हम ड्रग से ही वो ट्रीट करते हैं, 50% से ज़्यादा लोग 1.5 साल की रिक्वायरमेंट के बाद रिमिशन में चले जाते हैं। सो 1.5 साल तक 50% से ज़्यादा लोगों में हमें दवाई बंद करनी पड़ती है हाइपरथायराइडिज्म में, अगर ग्रेव्स डिजीज के कारण से हो
2: जी।
1: तो इसलिए हाइपरथायरॉयडिज्म में ये ज़रूरी नहीं है लाइफ लॉन्ग लेना पड़े। हाँ, बीच में उनको रिलैप्स फिर से हो जाता है, दोबारा से दवाई शुरू करनी पड़ती है या कोई और मोडेलिटी ट्रीटमेंट की देनी पड़ी। उसमें कभी हाइपरथायरॉयडिज्म में अगर सर्जरी की या रेडियो आयोडीन थेरेपी कर ली, उसके बाद उनको हाइपोथायरॉयडिज्म होने के

0: चांसेस बहुत होते हैं, तो उनको फिर उस टाइम हाइपोथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, ना कि फिर हाइपरथायरॉयडिज्म की।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि ये थायराइड की प्रॉब्लम हमें हो ही ना?
0: देखो, क्योंकि इसको ना होने का तो हमारे हाथ में बहुत चीज़ें हैं नहीं। इसकी पहले ही मैंने बोला, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से कुछ को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ कुछ ट्रिगर्स हैं। जो अब हम कर सकते हैं, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइपरथायरॉयडिज्म में ग्रेव्स डिजीज के लिए।
1: जी
0: सो ये तो हमारे हाथ में है, स्मोकिंग हम छोड़ दें। दूसरा एक बैलेंस्ड डाइट है, ये भी हमारे हाथ में है, क्योंकि हम चाहते हैं एक आयरन, सेलेनियम या जिंक, आयरन, इनकी एक बैलेंस सी इनटेक रहे हमारे खाने में, तो ये भी तो हमारे हाथ में है। ये दो चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं एटलीस्ट। बाकी चीज़ें, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स है, कुछ को हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बोलते हैं, क्योंकि आजकल के वक्त में पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डलते हैं, और बहुत ज़्यादा रिसर्च इन चीज़ों पे भी चलने लगा हूँ, क्या ये पेस्टिसाइड्स एज ट्रिगर काम करते हैं इन चीज़ों के आने के लिए, और इसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि हाँ, ये शायद ट्रिगर्स भी है। तो अगर कोशिश यही हो सकती है, ये चीज़ें अवॉइड हो सकती है, पेस्टिसाइड्स हो गया, एक बैलेंस डाइट हो गया, वह एनवायरमेंटल पोल्यूशन में कोशिश कर लूँ, अवॉइड कर सकूँ, और स्मोकिंग में विदहोल्ड करूँ, ना ले लूँ, तो हो सकता है मैं कुछ काफ़ी चीज़ तक एक ट्रिगर को ख़त्म कर दूँ।
1: जी एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, नाम बताइए।
2: हरि सिंह राणा बोल रहा हूँ जी, दाढ़ी से।
1: जी राणा जी, अपने रेडियो सेट का थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए या उससे थोड़ा दूर हट जाइए।
2: अच्छा जी, हाँ ऐसा है डॉक्टर
0: जी, जी
2: मैं इसका दवाई खा रहा हूँ, थायराइड नॉर्म।
0: जी
2: पहले मैं मेरे को 25 माइक्रोग्राम देते थे।
0: जी जी,
2: तो मेरी टीएच की वैल्यू 5 को क्रॉस कर गई, 6-7 आने लगी।
0: जी जी,
2: उसके बाद उन्होंने मेरे को 37.5 एडवाइस किया है बुखार में।
0: जी जी,
2: तो मेरे को ये बताइए, टीएच की जो वैल्यू देखकर जो है मेडिसिन डिसाइड करते हैं, या बॉडी वेट या आपकी और कोई चीजें देखकर मतलब डिसाइड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायग्नोज होता है ना, उसके बाद कैसे डिसाइड करते हैं कि इसको टीएसएच इतनी है, इतनी इसको थायराइड नॉर्म दे रही
0: है? आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। हमने एक, जब हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर लेते हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म को आपने थोड़ा सा इसको और बढ़ाने की कोशिश कर लेता हूँ मैं इस टॉपिक को। एक टर्म है, उसको हम सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया ऐसा कि किसी को बहुत लक्षण तो है नहीं, लेकिन उसका टीएसएच 10 से ऊपर आ गया था। तो यहाँ एक मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत तरीका अलग पड़ता है, या उसका टीएसएच 5 और 10 के बीच में आ गया, यहाँ भी थोड़ा मैनेजमेंट का तरीका अलग पड़ता है। एक तो ये मैं बात करना चाहूँगा। दूसरा, 65 से ऊपर की उम्र है कोई, उसको हमें पहली बार थायराइड का टेस्ट करा रहे हैं, मान लो किसी भी इंडिकेशन के लिए कर लिया, तो उसके वैल्यूज़ क्या रहते हैं उसके हिसाब से भी वहाँ फैसला होगा। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रही है तो वहाँ भी थोड़ा सा दिक्कत इस तरीके की रहती है, पर मोटे मोटे तौर पे अगर मैनेज करना है, आपका सवाल जो है उसका आंसर ये है कि टीएसएच के बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं थायरॉक्सिन, जो लिवोथायरॉक्सिन की दवाई है, जिसको आपने थायरोनॉर्म नाम लिया, वो डोज,
2: हाँ
0: उसका डोज टीएसएच के बेस पे ही डिसाइड करते हैं।
2: हाँ, मुझे स्टार्टिंग में जो डायग्नोस हुआ था, डॉक्टर ने मुझे 75 दे दिया।
0: राइट,
2: हाँ तो बहुत ज्यादा था, मेरा माइनस में चला गया मैं।
0: आपकी एज
2: तो कितनी है? डॉक्टर से डिस्कस किया तो उन्होंने मेरे को
0: आपकी एज कितनी है?
2: अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर साहब, टीएसएच की वैल्यू कितनी क्रॉस कर जाती है? 100, 150, 250 पता नहीं चल जाती लोगों की, ये क्या चक्कर है?
0: नहीं, टीएसएच तो ये भी एक हार्मोन ही है, और ये हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी से, इसको हम नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक का मतलब हो गया, क्योंकि T3 T4 निकलता है थायराइड से, टीएसएच आता है पिट्यूटरी से। जब T3 T4 कम निकलता है थायराइड से, तो हमारा जो ऊपर की एक कंट्रोल टावर है इसका हार्मोन निकालने का, वहाँ से टीएसएच निकलता है। सो टीएसएच निकल सकता है, 100 भी आ सकता है, 150 भी आ सकता है, इस तरीके
2: बहुत ज्यादा मैंने घबरा गया, देखिए इतना हो ही सकता है, बहुत ज्यादा
0: आ सकता
2: है, टेक्निकल है ये
0: प्रॉब्लम, आ सकते हैं। और टीएसएच के बेस पे हम लोग मॉनिटर करते हैं, टाइट्रेट करते हैं दवाई मोटा मोटा।
1: राणा जी, डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं कि आयु वर्ग से संबंध रखते हैं आप?
2: मैं रखता हूँ

0: 84
1: है, तो थोड़ा 84 की एज में जब हम दवाई शुरू कर लेते हैं तो बहुत चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। मैंने पहले ही बोला 65 से ऊपर की उम्र हो या किसी को हार्ट का दिक्कत है तो दवाई शुरू करना थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है, किस डोज से शुरू कर लें, रादर देन जो छोटी उम्र के होंगे उनको किस डोज पे हम शुरू कर लेंगे, इसमें बहुत फर्क रहता है।
0: हार्ट का पेशेंट नहीं हूँ डॉक्टर, डॉक्टर नॉर्मल है मेरा
1: जी,
0: 64% वर्किंग है उसके हार्ट की।
1: जी जी बहुत बढ़िया।
0: हाँ तो मेरे को वो तो नहीं है प्रॉब्लम, पर मेरे को डायग्नोसिस अभी हुआ है साल भर में, तो मैं मेडिसिन पर हूँ जी इस टाइम।
1: आप 37.5 पे अगर आप ठीक रह रहे हो तो उसको चलने दीजिए।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए। कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे दिनचर्या की। डॉक्टर साहब, योग व्यायाम इन सब चीज़ों से थायराइड पर क्या असर पड़ता है, या फिर जिस मरीज को ये समस्या आ रही है वो योग करे व्यायाम करे तो क्या कुछ निदान हो सकता है?
1: देखो, योग तो डायरेक्टली ट्रीटमेंट नहीं हो सकता इसका, देनी तो हाइपोथायरॉयडिज्म में रिप्लेसमेंट दवाई ही है, और हाइपरथायरॉयडिज्म है उसको तो एंटीथायरॉयड या दूसरे तरीकों से इलाज करना पड़ेगा। योग एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट ज़रूर हो सकता है इसका। अब योग के क्या एडवांटेजेस हो जाते हैं, अब हाइपोथायरॉयड है, इसका थोड़ा वेट बढ़ गया हुआ है, इसके कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम आ रही है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया हुआ है, इसका हाइपोथायरॉयडिज्म का ब्रेन पे भी बहुत असर पड़ता है, जो मैंने पहले ही बात की, ये लोग थोड़े डिप्रेशन में भी बहुत चले जाने के चांसेस रह लेते हैं, और थोड़ा मेमोरी लैप्सेस होने लग सकते हैं। तो इन चीज़ों को योग बहुत कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, वेट लॉस करने में, कोलेस्ट्रॉल में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, थोड़ा पॉजिटिविटी लाने के लिए माइंड में। सो जितना आदमी पॉजिटिव रहेगा फिर इस बीमारी को ईजिली आगे टैकल कर सकते हैं
2: जी। क्या भरपूर नींद लेना भी ज़रूरी है?
1: नेचुरली नींद तो जिसको क्रोनो मेडिसिन बोल देते हैं, क्रोनोट्रॉपिक मेडिसिन है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की एज में। राइट टाइम पे खाना खाना, राइट टाइम पे सोना, मे बी एज अर्ली एज पॉसिबल रात को और अर्ली मॉर्निंग है, इसके अपने इम्पैक्ट्स बहुत पड़ जाते हैं बॉडी पे। जो लोग थोड़ा लेट सो लेते हैं, लेट खाना खा लेते हैं, उनका इम्पैक्ट डिफरेंट पड़ जाता है, जो एक अनहेल्दी सा इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ जाता है
2: जी। डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं, समय थोड़ा कम है जी, लगता है फोन कॉल कट चुकी है। 01892-22-4391 की है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर, और समय अब हमारे पास बहुत कम बचा है। एक श्रोता कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेलो हेलो
3: हेलो
2: जी, जल्दी से अपना नाम बताइए और प्रश्न कीजिए, समय कम है।
3: नमस्कार सर, मैं योग से बोल रहा हूँ, प्रवीण कुमार
1: जी। नमस्कार
3: सर।
2: प्रवीण जी, रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए, तब बात कीजिए।
3: डॉक्टर साहब, बात ऐसी है कि मुझे आर्थराइटिस है 20-25 साल से।
1: सॉरी,
3: अब मुझे जो है वो थायराइड की प्रॉब्लम भी आ गई है, तो उसके लिए कोई परहेज दवाई आप कुछ
1: नहीं? हल्की थायराइड का अभी हम बात यही कह रहे थे, थायराइड की प्रॉब्लम दोनों तरफ से हो सकती है, हार्मोन कम निकलना, हार्मोन ज्यादा निकलना।
3: ये तो उन्होंने बताया नहीं जी, जिन्होंने रिपोर्ट चेक की।
1: कोई बात नहीं, आपको आप या तो नजदीक में कहीं भी, आप योल में रहते हैं तो धर्मशाला आ सकते हैं या टांडा में एक बार आ सकते
2: हैं। आपकी ओपीडी कब कब रहती है थोड़ा बता दीजिए।
1: हाँ जी हाँ जी, टांडा में आप कभी भी, हम लोग तो पूरा हफ्ता मेडिसिन की ओपीडी चलती है, वहाँ एंडोक्राइन की भी ओपीडी पूरा हफ्ता चल पड़ती है, तो आप कभी भी आ सकते हैं इन रिपोर्ट्स को लेके।
3: सर आप अपने अपना जरा रूम बता देंगे?
1: आप बुधवार शनिवार को आ सकते हैं
3: जी,
1: बुधवार और शनिवार को मेडिसिन ओपीडी में 34 नंबर रूम,
3: और शनिवार को आप वहाँ मिलेंगे
1: जी। जी,
2: आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, समय हमारे पास कम है। डॉक्टर साहब, चलते चलते कुछ टिप्स अगर देना चाहें तो?
1: टिप्स तो यही है कि हाइपोथायरॉयडिज्म, सबसे पहले जो मैं दूसरे मरीजों को भी बोलता हूँ, इसको बीमारी लेके पहले मत चलो, एक नेगेटिविटी मत रख लें इसके बारे में, क्योंकि जो टैबलेट इसमें दे रहे हैं वो हार्मोन ही है, उसका साइड इफेक्ट हो नहीं सकता, और उस टैबलेट को इस तरीके से लेके मान के चलो कि ये बेड्डी है
2: जी।
1: एम्प्टी स्टॉमक लेना है तो ये मान के मत चलो कि ये मैं दवाई ले रहा हूँ, ये मान के चलो ये जैसे रोज हम खाना खा लेते हैं, नमक है, पानी है, सब्जी है, दाल है, उसको भी एक हिस्सा मान के चले
2: जी। डॉक्टर सुजीत रैना, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, बहुत अच्छी जानकारी थायराइड के विषय में आपने हमें दी, बहुत

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और आपकी रेडियो दोस्त सचिता लेकर हाजिर है कार्यक्रम गीतों का कारवां। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज का गीतों का ये कारवां निकल पड़ा है एक नए सफर पर। और भाई, हम अकेले नहीं जा रहे हैं, अपने श्रोताओं को भी साथ लेकर चलेंगे। आज हमारा ये कारवां शहरों की तंग गलियों से निकलकर पहुंच गया है कहीं दूर, जहां लहरें आकर साहिल को चूमती हैं। तो दोस्तों, आज आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से लेकर चलेंगे समुद्र के किनारों पर, एक ऐसा सफर जहां लहरों का शोर है, रेत की छुअन है और यादों का गहरा समंदर है। हम सभी जानते हैं श्रोताओं की बॉलीवुड और समंदर का काफ़ी पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे ऐसे गाने जो समुद्र के किनारे फिल्माए गए हैं। इस सफर की शुरुआत करते हैं इस सदाबहार नगमे से, जिसने समंदर की हर लहर को एक आवाज़ दी। किशोरदा की आवाज़ है और आर डी वर्मन का संगीत है। आइए सुनते हैं इस गीत को।

समंदर की लहरों का ये सफरनामा आगे बढ़ रहा है दोस्तों। अब आपको सुनवा रहे हैं सन 2003 में बनी फिल्म कयामत का ये गीत, जिसने हर आशिक का दिल चुरा लिया था। श्रोतो, इस गीत में द्वीप के खूबसूरत समंदर किनारे लहरों के बीच अजय देवगन और नेहा धूपिया पर यह गीत फिल्माया गया था। नदीम श्रवण के संगीत और अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों का ये जादू है। साथ ही में कविता कृष्णमूर्ति की आवाज भी इस गीत में है, जिसे सुनकर लगता है मानो कि हम खुद समंदर की ठंडी रेत पर चल रहे हों।

गीतों का कारवां, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं समुद्र के किनारे फिल्माए गए कुछ चुनिंदा गीत। गीतों के इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं। जब बात समुद्र के किनारे फिल्माए गए गानों की हो तो भला हम साल 2000 के उस दौर को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ श्रोतो, मैं बात कर रही हूँ फिल्म कहो ना प्यार है के टाइटल ट्रैक की। दोस्तों, इस गाने की शूटिंग भारत में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के खूबसूरत समुद्र किनारे हुई थी। इस गाने के हिट होने के बाद न्यूजीलैंड का क्वींसटाउन बीच पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि फिल्म कहो ना प्यार है का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, क्योंकि इस फिल्म ने कुल 102 पुरस्कार जीते थे। तो चलिए यादों के समंदर में थोड़ा और डूबते हैं और सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, इस गीत के माध्यम से आप समुद्र के नीले पानी और झूमती हुई लहरों का आनंद ले सकते हैं।

दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ कानों को नहीं बल्कि सीधे रूह को सुकून देते हैं। जब समंदर का किनारा हो, उगता हुआ या ढलता हुआ सूरज हो और हाथ में किसी अपने का हाथ हो, तो जिंदगी का ये सफर बहुत ही सुहाना हो जाता है। आइए सुनते हैं फिल्म साया का ये बेहद खूबसूरत नगमा, जिसमें M.M. किरावनी साहब ने अपनी जादुई संगीत से इसे सजाया है। लहरों की, समंदर की लहरों के बीच जॉन अब्राहम और तारा शर्मा पर फिल्माए गए इस गाने को जब उदित नारायण और अलका याग्निक का अपनी आवाज से सजाते हैं तो दिल झूम उठता है। तो दोस्तों, हमारे साथ आप भी खो जाइए समंदर की इन सुरीली लहरों और यादों के इस हसीन कारवां में।

0: गीतों का कारवां ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
0: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
5: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
0: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
5: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
6: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
0: गीतों का कारवां ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे बचना ए हसीनो फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, ये जो गाना है वो इटली के खूबसूरत समुद्र के किनारे फिल्माया गया है। इटली का वो खूबसूरत सा समुद्र का किनारा और साथ ही सफ़ेद चट्टानों पर जो समुद्र के तट हैं, जहाँ पर सफ़ेद चट्टानें होती हैं, वहाँ पर ये गीत फिल्माया गया। इस गीत में आवाज़ें हैं के और शिल्पा राव की, विशाल शेखर का संगीत है

लहरें आती हैं, किनारे से मिलती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं। शायद यही जिंदगी का भी फलसफा है। आज का ये गीतों का कारवां समंदर के किनारे बैठकर यादों के सीप और मोती बटोरने का वक्त अब खत्म होने को आया है। उम्मीद है आज का ये सफर आपके दिलों को छू गया होगा। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम योग से निरोग जीवन।

0: इस पर आधारित ये विशेष भेंट वार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, चिंता और मानसिक दबाव लगभग हर व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे समय में एक ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करती है, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और वह है योग। योग केवल कुछ आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। आज के इस विशेष साक्षात्कार में हम जानेंगे योग की विभिन्न तकनीकों, महत्वपूर्ण आसनों तथा मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन में योग की भूमिका के बारे में। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं योग विशेषज्ञ शिखा मनकोटिया जी। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि योग वास्तव में क्या है, क्या ये केवल व्यायाम है या जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति।
2: योग का जो वास्तविक शाब्दिक अर्थ है वो है योग माने जुड़ना
1: जी,
2: और जुड़ना किससे? शरीर का, मन और आत्मा से, या फिर किसी भी व्यक्ति का स्वयं से जुड़ना, वो योग है
1: जी।
2: और योग का अगर हम आज के समय में देखें, लोग इसका मतलब लेते हैं कि सिर्फ शारीरिक रूप से कोई भी आसन किया गया वो योग है, लेकिन योग का वास्तविक अर्थ है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। जब एक व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वही योग का असली मतलब है
1: जी। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग का महत्व पहले से अधिक क्यों बढ़ गया है?
2: आज के समय के साथ दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो आज से 40-50 साल पहले जो लोगों की जिंदगी थी आज की तरह नहीं थी
1: जी।
2: ना तो आज की तरह किसी की लाइफ में स्ट्रगल था, कम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं थे
1: जी।
2: हर एक पड़ाव पे आजकल देखे तो अगर बच्चों की बात करें तो उनको स्टडी का स्ट्रेस है
1: जी,
2: 11th 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम का स्ट्रेस है, फिर उनके करियर का स्ट्रेस आ जाता है
1: जी।
2: जब वो भी सारे स्टेप्स पार हो जाते हैं तो उनके ऊपर मैरिज लाइफ सेटल का स्ट्रेस हो जाता है। तो इन सारे जो भी हमारे जिंदगी के पड़ाव हैं इनमें इतना तनाव भर गया है कि उस रूप से जिंदगी में किसी को भी शांति नहीं है
1: जी।
2: क्योंकि बहुत लॉन्ग स्टडी आवर्स हैं तो उनको सिटिंग देनी पड़ती है, तो वो फिजिकली उनकी बॉडी खराब हो रही है, स्लीपिंग क्लॉक्स खराब हो चुकी हैं, कोई बॉडी की रिदम नहीं बची है। और फिजिकली तो वो लोग हैं ही हैं, मतलब सिटिंग आर्ट्स वगैरह की वजह से, लेकिन मेंटली इतना स्ट्रेस है उनके ऊपर, उस वजह से भी आज के समय में जो है योग उनको बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवत गीता में बहुत सुंदर बात कही गई है, समत्वम योग उच्यते, कि जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही योग है
1: जी।
2: तो अगर हम इस वाली डेफिनेशन को फॉलो करें तो लाइफ के हर पड़ाव में अगर हमें संतुलित रहना है तो हमें योग को फॉलो करना ही पड़ेगा
1: जी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को इतनी व्यापक स्वीकृति मिलने के पीछे आखिर क्या कारण रहा है?
2: क्योंकि योग जो है हमारी एक भारतीय परंपरा रही है, प्राचीन काल से चलती आई है
1: जी जी।
2: और आज के समय में योग सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा है, क्योंकि जो हमारे विदेशी लोग हैं इन्होंने योग पर बहुत कार्य किया और इस पर बहुत रिसर्चेस की, बहुत ज्यादा उनको इससे बहुत ज्यादा लाभ हुए, तो इसलिए वहां पर योग का बहुत विस्तार हुआ। और जब से 2014 से मोदी जी की अगुवाई में जब यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकृति दी, तब से तो और भी ज्यादा जो योग है वो जन जन तक विदेशों में भी पहुंचा। और हमने देखा कि कितने तो रिकॉर्ड्स बने हैं जब भी योगा डे आता है
1: जी।
2: और योग के बारे में अगर हम देखें तो अभी भी लास्ट ईयर एक फ्रांस की हमारी फॉरनर थी, उनको पद्मश्री भी मिला था। इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया, तो हमारा जो योग है वो केवल भारत तक नहीं विदेशों में भी लोगों तक पहुंच रहा है और लोग इसको बहुत ज्यादा एडमायर भी कर रहे हैं।
1: तो बहुत खूब है ये।
2: बिल्कुल मैम, क्योंकि जब मैं सिंगापुर में थी एज अ योग थेरेपिस्ट, दुबई में थी, तो मैंने देखा है कि वो लोग हमें बहुत एडमायर करते हैं और हमारी इस अल्टरनेटिव थेरेपी को बहुत ज्यादा उन्होंने इसको अपनाया है अपनी लाइफ में और उनको फायदा भी हो रहा है बहुत ज्यादा
1: जी जी। और योग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और सामान्य व्यक्ति को इनके बारे में क्या जानना चाहिए?
2: महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग का वर्णन किया है योग सूत्र में
1: जी।
2: तो उनके अनुसार योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि
1: जी।
2: तो ये जो 8 अंग हैं, हमें सिर्फ योग को करना ही नहीं है, हमें इन 8 अंगों को जीवन में जीना भी है और तभी जो योग का वास्तविक अर्थ है वो संपूर्ण होगा और हमारी जो जीवन शैली है हमें उसमें इन सारे 8 अंगों को उतारना पड़ेगा।
1: जी बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि योग को हमने जीना भी है। और योगाभ्यास शुरू करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है जो योगाभ्यास अभी शुरू कर रहे हैं?
2: सबसे पहले तो जब भी हमें योगाभ्यास करने के लिए तैयार होना है, फिजिकल से ज्यादा हमें मेंटल मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए
1: जी।
2: क्योंकि योग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप योग मैट पर गए आप तभी योग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो उठकर योग नहीं कर सके तो हमने उनको बेड पर लिटा के भी योग करवाया है। योग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आसन करना, योग में हमारे पास योगिक ब्रीदिंग होती है जिसमें क्लेविकल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग और तीनों ब्रीदिंग्स आती हैं, तो उसको हम योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं
1: जी।
2: तो पहले तो मानसिक रूप से तैयार होना, फिर कौन से समय पर योग करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा समय तो ब्रह्म मुहूर्त रहता है जो सूर्य उदय से 1-1.5 घंटा पहले होता है। उसके बाद वातावरण कैसा होना चाहिए हमारा, बिल्कुल शांत, और यदि हम इसको प्राकृतिक वातावरण में करें तो बहुत ही अच्छा है। और जो हमें कपड़े पहनने हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल पहनने हैं
1: जी जी।
2: अगर आप किसी कमरे में कर रहे हो तो वो कमरा बहुत शांति भरा होना चाहिए, ये नहीं कि आपने वहां पे टीवी चल रहा है या फिर शोर शराबा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसे ये पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। खाना खाने से या तो पहले करें या फिर खाना खाने के 3-4 घंटे बाद करें
1: जी।
2: तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हमें योग अभ्यास करना
1: जी। यानी सही समय और सही स्थान का चुनाव इसे और भी असरदार बनाता है।
2: बिल्कुल।
1: और क्या मैम उम्र, लिंग या शारीरिक क्षमता के आधार पर योगाभ्यास में कोई विशेष सावधानी रखनी चाहिए?
2: ऐसे तो किसी भी आयु का, किसी भी लिंग का व्यक्ति योग कर सकता है
1: जी।
2: लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बच्चों को योग करवा रहे हैं तो हम बच्चों को ज्यादा, उनका जो योग सेशन है वो ज्यादा लंबे समय का ना हो, 1-1.5 घंटे का ना हो, क्योंकि बच्चे इतनी देर नहीं टिक कर बैठ सकते। तो उनको हमें योग जब करवाना है तो खेल खेल में करवाना है जितने भी आसन है
1: जी।
2: और उनको ऐसे आसन की हम प्रैक्टिस करवाएं जिससे उनकी एकाग्रता बढ़े, उनके बॉडी का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े और उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़े
1: जी।
2: तो ये कुछ बच्चों के लिए चीजें हैं। अगर हम यंग जनरेशन में आए तो जैसे उनके सिटिंग आर्ट्स बहुत ज्यादा हैं तो उनकी, जिससे जो उनकी बैकबोन है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए, बहुत देर बैठने से उनको कमर दर्द या फिर सर्वाइकल की पेन्स हैं
1: जी।
2: तो उनको ताड़ासन करवा सकते हैं, सिटिंग ट्विस्ट करवा सकते हैं, और स्पेशली उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स होनी चाहिए जिसमें आसन, प्राणायाम, ये सब ब्रीदिंग टेक्निक्स हो मोस्टली, कि जो उनकी प्राणवायु है वो नियंत्रित हो, क्योंकि उनकी बॉडी क्लॉक्स बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती हैं। अगर हम बड़ों पर बात करते हैं तो बड़ों के लिए उनको हम चेयर योगा करवा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो नीचे नहीं बैठ सकते, तो उनको हम चेयर योगा करवा सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करवा सकते हैं बहुत, और ब्रीदिंग टेक्निक्स करवाएंगे उनको। और अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो वो हमेशा ही किसी भी एक्सपर्ट प्रीनेटल ट्रेनर के अंडर ही करें
1: जी।
2: तो ये कुछ बातों का ध्यान है जो इनको रखना
1: चाहिए। योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान की क्या भूमिका रहती है?
2: जैसे जब हम कोई नया घर बनाते हैं
1: जी,
2: तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहती है उसकी नींव। उसकी नींव में 3-4 चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पत्थर, ईंट, सरिया। उसी तरह से अगर हमने अभी योग के 8 अंगों की बात की
1: जी,
2: तो उसमें से जो अभी अपने आसन, प्राणायाम और
1: ध्यान
2: की बात की है, तो ये तीनों जो है योग के, जिसे हम बोले स्तंभ है। आसन जो है, महर्षि पतंजलि जी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी, स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिर है, जिसमें सुख है, वही आसन है। क्योंकि आजकल अगर हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील्स देखते हैं तो बहुत एडवांस आसन दिखाए होते हैं
1: जी जी,
2: तो लोगों को तो उससे देख के अच्छा लगता है कि इसकी बॉडी की कितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन कहीं डर भी लगता है कि हम तो नहीं ये कर सकते।
1: और मैम कई जो है वो करने की कोशिश भी करते
2: हैं और घर में गलत करके गिर जाते हैं या इंजरीज करवाते हैं
1: जो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे।
2: तो आसन का मतलब तो है जिसमें आप कंफर्टेबल हो
1: जी,
2: वो आसन है, और जिसमें आप काफी लंबे समय तक टिक सकते हो,
1: स्थिर
2: रह सकते हो, वो आसन है
1: जी।
2: तो हमें आसनों को करना है बहुत ध्यान से, हमारी टेक्निक सही होनी चाहिए जिसमें हम कर रहे हैं। और जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है, वो आसन हमें करने हैं बहुत एडवांस लेवल से, बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट करना है। अगर हम प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम क्या है, प्राणों का मतलब है जो हमारी वाइटल फोर्स है
1: जी,
2: श्वास वायु, और आयाम का मतलब है नियंत्रण करना। तो जो आप अपनी श्वास प्राणवायु को नियंत्रित करते हो, नियंत्रण करना मतलब उसको रोकना नहीं बल्कि उसको चैनलाइज करना, तो वो प्राणायाम है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा उससे क्या होता है, प्राणवायु शांत होती है
1: जी।
2: हठयोग प्रदीपिका में एक बात कही गई है, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, जिस तरह से आपकी प्राणवायु चलती है उसी तरह से आपका चित्त चलता है, मन चलता है। और जब आपकी प्राणवायु शांत होती है तो आपका जो मन

0: है वो भी स्थिर हो जाता है। ये
1: जी।
0: प्राणायाम की बहुत ही बड़ी विशेषता है।
1: और मैम, जैसे प्राणायाम की हम बात कर रहे हैं तो इसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति जैसे प्राणायाम आते हैं, तो इनका क्या लाभ है ये जानना चाहेंगे।
0: अनुलोम विलोम जो है वो जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेट ब्रीदिंग, मतलब लेफ्ट इनहेल राइट एक्सहेल, फिर राइट इनहेल लेफ्ट एक्सहेल, और इसको जब आप रिटेंशन के साथ, मतलब हम कुंभकों के साथ करते हैं, जिसे हम थोड़ी देर रोकना बोलते हैं। कुंभक का
1: जी
0: मतलब होता है रिटेन करना, मतलब थोड़ी देर श्वास वायु को रोकना। जब
1: जी
0: आपने इनहेल किया तब भी रोका, और जब एक्सहेल किया तब भी श्वास को रोक लेना। तो
1: जी
0: जब इसके साथ करते हैं तो वो आपकी प्राणवायु जो है कंट्रोल होती है और प्योर होती है। और दूसरा आपने बोला है कपाल भाती,
1: जी
0: तो कपाल का अर्थ होता है आपका क्रेनियम, जो ब्रेन का एक पार्ट है क्रेनियम। और भाती मीन्स उसको बार बार एक्सहेल वाली फोर्स के साथ बार बार उसको फोर्सफुली पुश करना। जब भी हमें इनहेल और एक्सहेल करना है तो हम फोर्स के साथ करते हैं,
1: जी
0: तो उससे क्या होता है, जो हमारा ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। इसका थोड़ा सा हमें ध्यान ये रखना होता है, हाई बीपी के पेशेंट्स ना करें, हार्ट पेशेंट्स ना करें, या जिनकी कुछ, क्योंकि इसमें जो आपको इनहेल एक्सहेल आपका स्टमक का भी रोल रहता है, कि किसी की कोई सर्जरीज हुई है वो भी ना करें।
1: जो कपालभाति प्राणायाम है।
0: प्राणायाम है ना
1: जी
0: ये,
1: जी
0: क्योंकि अनुलोम विलोम कर सकता है कोई भी, वो बहुत सिंपल और हल किसी के लिए बेनिफिशियल है,
1: जी
0: लेकिन कपाल भाती का हमें ध्यान रखना है। और तीसरा जो आपने बोला है
1: भ्रामरी।
0: भ्रामरी, तो भ्रामरी जो है इसमें क्या होता है, आपको अपनी आंखों को बंद करके उसके ऊपर अपनी उंगलियां रखनी होती हैं पूरे फेस के ऊपर, और अंगूठे से अपने कान को बंद करना है,
1: जी
0: और ये आपको अपने अंदर लेकर जाता है। तो डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, हाई डिप्रेशन के, उनको हमें नहीं करवाना, क्योंकि ये हमें अंतर्मुखी ध्यान में लेकर जाता है। और स्पेशली अगर किसी को स्ट्रेस डिप्रेशन ऐसे वाले हैं उनको नहीं करवाना, और अदरवाइज ये बहुत रिलैक्स देता है।
1: जी जी
0: और प्रेगनेंसी में भी किसी को करवाना है तो उसको किसी भी अच्छे ट्रेनर के उसमें ही करवाना है।
1: जी
0: एक और बहुत बड़ी बात है जो लोगों में बहुत बड़ी भ्रांति है, और हर कहीं इसको नॉर्मल जो हमारी जनता है वो गलत, मतलब बोला भी जाता है या समझा जाता है, क्योंकि ऐसा ही काफी टाइम से चलता आ रहा है, कपाल भाती जो है प्राणायाम नहीं है, कपाल भाती षटकर्म में हमारी शोधन क्रिया है। जब हम अपने जो शुरू के षटकर्म है हमारे, जिसमें धोती वगैरह आते हैं, तो कपाल भाती हमारे कपाल को यानी कि क्रेनियम को प्योरीफाई करने की एक क्रिया है। और ये सबसे अंत वाला षटकर्म होता है। मोस्टली हमारे लोग समझते हैं कि कपालभाति को हम प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन कपालभाति प्राणायाम बिल्कुल नहीं है, ये एक षटकर्म है।
1: जी। और आज मैम व्यस्तता जीवन में बढ़ गई है, तो क्या कुछ मिनटों का, कुछ चंद मिनटों का जो नियमित प्राणायाम है वह भी स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
0: बिल्कुल मैम, आपने खुद ही बोल दिया नियमित, तो चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट,
1: जी
0: योग करते समय कभी भी ड्यूरेशन मैटर नहीं करती है, हमेशा मैटर करती है आपकी रेगुलरिटी,
1: जी
0: कि आप कितने रेगुलर और सिंसियर होकर उसे कर रहे हो। क्योंकि जितनी भी मोस्टली हमारी जो रिसर्चेज आती हैं, जो पेपर्स भी लिख आते हैं, उसमें जो भी हमारी स्टडीज कंडक्ट होती है उसमें जब भी देखा गया है बहुत स्टडीज में, कि अगर 15 मिनट भी रेगुलरिटी में किया है योग को, जिन पे उनकी रिसर्चेज हुई हैं, तो वो 15 15 मिनट या 20 मिनट पर भी बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आए हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके सब्जेक्ट्स ने रेगुलरली उनको किया था।
1: यानी कुछ मिनटों के लिए भी अगर करें हम तो ये सकारात्मक है, लेकिन नियमित रूप से हम करें।
0: नियमित रूप से यही सबसे बड़ा जो योग, ये ऐसे नहीं है कि हम कभी भी करें, आप चाहे थोड़ी देर करो लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करो।
1: जी, शुरुआती साधकों के लिए कौन कौन से सरल और प्रभावी आसन उपयुक्त हो सकते हैं?
0: शुरुआती दौर में तो जो भी हमारे पास बिगिनर्स आते हैं, सबसे पहले हम उनको सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरू करवाते हैं,
1: जी
0: कि जिससे उनकी जो मांसपेशियां हैं पहले वो लचीली हों, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बॉडी में आए, और उसके बाद धीरे धीरे उनको हम अगले जो हमारे बहुत सूक्ष्म आसन है, जैसे कि ताड़ासन, भुजंगासन, शशांक आसन, पवन मुक्त आसन, ये कुछ आसन ऐसे हैं जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी की लचीला जो पन है वो बढ़ता है उसका,
1: जी
0: दूसरा जो हमारी मांसपेशियां हैं वो स्ट्रोंग होती हैं। और जैसे प्राणायाम जब हम करते हैं तो उसमें भी बहुत सिंपल प्राणायाम, अब्डोमिनल ब्रीदिंग, क्लेविकल ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, तो ये जो कुछ अभ्यास हैं। और आसनों में भी एक सबसे बड़ी जो हम सबको बात बोलते हैं, कि किसी को एक तो अपने शरीर को फोर्स ना करें, और दूसरा जब 4 5 लोग एक साथ कर रहे हो तो एक दूसरे के साथ खुद को कंपेयर ना करें कभी भी,
1: जी,
0: तो
1: और
0: ये
1: अपने शरीर की क्षमता के,
0: क्षमता के अनुसार करें।
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: कभी भी योग को ये देखकर नहीं करना है कि वो मुझसे अच्छा कर रहा है, हमेशा योग में एक चीज जो मैटर करती है वो करती है उसकी आसन की सही टेक्निक। जी। आपकी बॉडी का पोस्चर, आपकी बॉडी की अलाइनमेंट सही होनी चाहिए, बाकी जो आपको कोई भी आसन करना है वो करना है अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार।
1: जी मैम, ताड़ासन की आपने बात की, तो ताड़ासन है, भुजंगासन है और वज्रासन है, ये कुछ आसन है, उनके क्या लाभ है?
0: ताड़ासन हमारा, जैसे अभी आपने पूछा था कि सबसे स्टार्टिंग हमें करनी हो, तो ताड़ासन बहुत सिंपल आसन है और योग में तो इसको हम टोज पर, पंजों पर जाकर करते हैं, लेकिन बिल्कुल ही बिगिनर है कोई भी तो हम उसको बोलते हैं कि वो सीधा पैरों पर खड़ा होके ऊपर को अपनी एक्सटेंशन करेगा, हाथों को ऊपर इंटरलॉक करके
1: जी।
0: इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जो हमारी बैकबोन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इरेक्ट होती है, जितने भी अगर हमारे स्पाइन के जो हमारे वर्टिब्रास है वो कहीं पे लॉक हैं तो वो अनलॉक होते हैं, और दूसरा लेग्स की भी एक्सटेंशन होती है, काफ मसल स्ट्रोंग होती हैं, आपकी बाजू एक्सटेंड होती हैं, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो यंग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और कोई अगर खड़ा होके ना कर पाए तो हम उसको बोलते हैं चेयर पर बैठकर अपनी बैकबोन को, स्पाइन को स्ट्रेच करो ऊपर को। दूसरा भुजंगासन है, भुजंगासन भी स्पाइन को बहुत अच्छे से इरेक्ट करता है, दूसरा पेट की मांसपेशियां भी इससे एक्सटेंड होती हैं, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हमारी नेक भी एक्सटेंड होती है, और सियाटिका के जो पेशेंट होते हैं उनको पीछे से दोनों पैर जोड़ के करवाते हैं तो बैक में भी बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, तो बहुत सारे लाभ है, जैसे गर्दन के लिए लाभ है भुजंगासन का, पेट के लिए बहुत अच्छा है, बैकबोन बहुत अच्छी स्ट्रेच होती है, और पीछे जब हम इनको पैर जोड़ के करते हैं तो शियाटिक जो नर्व है वो भी इसमें एक्सटेंड होती है, तो उसके भी दर्द में बहुत लाभ होता है। तीसरा आसन आपने बोला है
1: वज्रासन।
0: वज्रासन की एक बहुत खास बात है क्योंकि ये इकलौता एक ऐसा आसन है हमारे पूरे योग में जो इमीडिएटली हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं
1: जी।
0: इसकी सबसे बड़ी जो बेनिफिट है वो ये है कि पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है इससे, जितना भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको पाचन तंत्र बोलते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है इसको करने से, और जब हम इसमें बैठते हैं तो जो हमारी थाइज हैं वो उसमें जो मसल्स है वो स्ट्रोंग होती हैं, और एंकल्स में भी जब बैठते हैं हम शुरू शुरू में, क्योंकि लोग नहीं बैठ पाते हैं 5-10 सेकंड भी, तो उनको यही बोला जाता है कि अपने पैरों के नीचे कुशन्स रखो, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करो, अगर हम बोले रिसर्चेज हुई हैं इन सब पे तो बहुत ही ज्यादा लाभ है इनके हमारे जीवन।
1: और मैम, आसन करते समय हम अक्सर ऐसी कौन सी सबसे आम गलतियां हैं जो कर जाते हैं, अक्सर कर जाते हैं?
0: सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम सोचते हैं कि हम एडवांस आसन ही पहले करें
1: जी,
0: जैसे लोग चक्रासन पर आ जाते हैं, कई बार लोग पूर्ण उष्ट्रासन करने लग पड़ते हैं, लेकिन जब भी हम इसको करवाते हैं तो हम बोलते हैं कि हाफ से स्टार्ट करो
1: जी,
0: मतलब जितने भी हमारे एडवांस आसन होते हैं तो उनको कभी भी स्टार्टिंग में ट्राई ना करें, सबसे पहले जो है सूक्ष्म व्यायाम करके अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें
1: जी,
0: फिर उसके बाद जितने भी सिंपल आसन, ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, शशांक आसन, तो इन आसनों से धीरे धीरे शुरू करें जिससे आपकी बॉडी स्ट्रोंग हो, आपके आर्म्स हैं, हाथ हैं, पैरों की जो मसल्स हैं आपकी वो स्ट्रोंग बने, फिर धीरे धीरे आप ग्रेजुअली एडवांस आसनों की तरफ बढ़ें। दूसरा, कभी भी शोर शराबे वाली जगह पर आसन ना करें, प्रैक्टिस ना करें
1: जी,
0: हमेशा खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद करें, आपके जो हमेशा कपड़े हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए योग करते समय, और मन आपका शांत हो तभी आप योग में आए, बिकॉज अदरवाइज जो आसन है उसमें आपकी स्थिरता नहीं बन पाएगी।
1: तो मैं मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाने में ध्यान यानी मेडिटेशन की क्या भूमिका है?
0: अभी जैसे हमने पहले डिस्कशन की कि आसन, प्राणायाम और ध्यान
1: जी,
0: तो मैंने ये बताया कि ये तीनों जो हैं हमारे आधारभूत स्तंभ हैं योग के
1: जी, बिल्कुल।
0: और ध्यान पर हम तभी जा सकते हैं, पहले हमें आसन करने हैं, पहले तो हमारी जो है बॉडी है वो स्थिर हो, जब वो स्थिर होती है तो हमें उसके बाद अपने प्राणों को नियंत्रण करना है, क्योंकि जब हमारे प्राणों पर भी नियंत्रण हो जाएगा तभी हम ध्यान में बैठने के लायक बनेंगे
1: जी।
0: और फिर जब आप ध्यान में बैठते हैं तो निश्चय ही जो आपकी प्राणवायु है वो भी स्थिर है, आपकी बॉडी भी स्थिर है, तो आप एक पॉइंट पर कहीं पर भी कंसंट्रेट करके ध्यान कर पाएंगे, और जब आप उस ध्यान को कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी और माइंड को लेकर अब अवेयर हैं। जब आप में वो अवेयरनेस आ गई है तो आपका जो हम जिसे स्ट्रेस बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, वो जब आप अपनी बॉडी के बारे में अवेयर हैं आपको खुद ही पता चलेगा कि अब मुझे इनहेल और एक्सहेल करना है, जब भी मुझे लगे कि मैं थोड़ा सा भी मुझे स्ट्रेस आ रहा है या किसी भी चीज से मैं परेशान हो रही हूं, तो वो हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है चीजें
1: जी। मैम, स्ट्रेस की आपने बात की तो आज तनाव, चिंता और अवसाद तेजी से जो है ये समस्या बढ़ रही है, ऐसे में योग किस प्रकार मददगार हो सकता है?
0: ये जो आज का हमारा समय आ चुका है, चाहे इसको हम ले लें, हम भौतिक सुखों की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो चुके हैं
1: जी,
0: या फिर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जिस तरह के लाइफस्टाइल हो गए हैं, तो उन चीजों में जो इस समय जो सबसे ज्यादा हम बोले कि थेरेपी वाइज या क्या मतलब हमारे पास ऐसा सोल्यूशन आ सकता है, तो वो सिर्फ योग ही है। क्योंकि योग, मैंने पहले भी बताया, चाहे वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक या फिर आध्यात्मिक रूप से, ये हमें संपूर्ण जो है वेलबींग प्रोवाइड करता है। और जैसे आपको मैंने बताया कि भगवद गीता में बताया है स्मत्व योग उच्चते, कि योग हमें हर परिस्थिति में बैलेंस रखने की जो कला है उसको सिखाता है,
1: ठहराव
0: को लेकर आता है,
1: ठहराव जो है वो सिखाता है। और क्या योग जो है वो विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है?
0: बिल्कुल मैम, हो सकता नहीं, होता है
1: जी।
0: क्योंकि जैसे मैंने अभी ताड़ासन की बात की थी, जब हम ताड़ासन को टोज पर जाकर करते हैं और पूरे हाथ हमारे ऊपर की तरफ एक्सटेंड होते हैं, हम हमेशा ही एक बात बोलते हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि एक बिंदु पर कंसंट्रेट करेंगे। तो जब हम उस पे कंसंट्रेट करते हैं और हमारी बॉडी पूरी एक पोस्चर में है, तो उससे हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ती है। रिसर्च स्टडीज हैं, गोमुख आसन है हमारा, वो तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। ईगल पोज होता है हमारा
1: जी,
0: वो भी कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हम बात करते हैं ओम चैंटिंग की, तो जब ओम चैंटिंग करते हैं तो हमारे जो वाइब्रेशंस होती हैं ब्रेन में, उससे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। आपने भ्रामरी की बात की थी, तो भ्रामरी भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और इन सब के ऊपर रिसर्च स्टडीज हो रखी हैं।
1: और मोबाइल और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से होने वाले मानसिक तनाव को कम करने में योग कितना मददगार है?
0: बहुत ज्यादा मैम, क्योंकि आजकल हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कम कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड बिल्कुल नहीं करवा सकते। बहुत मुश्किल हो चुका है इस समय पे, क्योंकि कभी कभी हम खुद भी अवॉइड तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी किसी समय पर ऐसा होता है कि बहुत जरूरी काम है, जब कुछ भी नहीं, मतलब कोई आपके पास चीज ही नहीं है कि आप टीवी के सामने बच्चे को बिठाओ या कहीं, तो कभी कभी देना भी पड़ता है। लेकिन स्क्रीन टाइम बच्चों का हमें कम करना है, और अगर कम भी कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों को उसके इफेक्ट से दूर करना है, तो उसके लिए योग ही सबसे अच्छा साधन है। जिसमें मैंने जैसे आसनों की बात की थी, बच्चों को खेल खेल में योग करवाएं, प्राणायाम भी करवाना है तो बच्चों को ऐसे ना बताकर कि ये प्राणायाम है, उनको ब्रीदिंग्स करवाएं। उनको हम बबल ब्रीदिंग करा सकते हैं, ओशन ब्रीदिंग करा सकते हैं, बलून ब्रीदिंग करा सकते हैं, जैसे एलिफेंट ब्रीद करता है वो वाली ब्रीदिंग करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी है सिंह गर्जना, क्योंकि अभी हम तनाव की बात कर रहे थे, तो सिंह गर्जना तो चाहे यंग हैं, बूढ़ा है, फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, सिंह गर्जना से क्या होता है कि जो आपका अंदर का इंटरनल स्ट्रेस है, जो दबा हुआ स्ट्रेस है, वो बाहर निकलता है। क्योंकि कुछ बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो अपने गुस्से को अंदर दबा के रखते हैं, तो सिंह गर्जना बहुत इफेक्टिव है हर किसी के लिए।
1: क्या योग मैम केवल रोगों के उपचार का माध्यम है, या स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी उतना ही आवश्यक है?
0: योग केवल बीमारियों के लिए नहीं है
1: जी,
0: बल्कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही योग है। तो योग ऐसा नहीं है कि जो बीमार हो वही योग करे
1: जी,
0: बल्कि हर किसी को योग करना है। जो स्वस्थ है उसको अपने शरीर को और मन को शांत करने के लिए योग करना है, और जो बीमार है उसको तो करना ही है अपने आप को ठीक करने के लिए।
1: अब आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए योग के क्या विशेष लाभ हैं?
0: महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता है महिलाएं अपने मासिक चक्र से गुजरती हैं, और इसमें उनके चार फेस होते हैं, और इन चारों में ही उनके हार्मोन्स बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं
1: जी।
0: तो उनके लिए तो योग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, और मेरे जैसे कि मैं फीमेल योग ट्रेनर हूं, तो उनको बहुत जरूरी है करना
1: जी,
0: अदरवाइज उनके हार्मोन्स इंबैलेंस रहते हैं, और अगर किसी महिला के साथ ये होगा तो उसका इंपैक्ट पूरी फैमिली पर जाता है। तो महिलाओं के लिए तो योग बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब उनकी प्रेगनेंसी होती है, उसमें भी योग उनको बहुत हेल्प करता है अपनी बॉडी के चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए
1: जी।
0: फिर उनका नेक्स्ट पीरियड आ जाता है, पोस्टपार्टम पीरियड, दोबारा उनकी बॉडी को रिकवर स्टेज में जाना होता है। नेक्स्ट फेस उनका मेनोपोज फेस आ जाता है, तो उसमें भी उनकी बॉडी में बहुत चेंजेस, और वो मेंटली भी इमोशनली भी बहुत ज्यादा चीजों से गुजरती हैं। तो महिलाओं के लिए तो योग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उनको शांत रखने के लिए, उनकी बॉडी को फिजिकली भी फिट रखने के लिए और इमोशनली स्टेबल रखने के लिए। बच्चों के लिए योग उनकी कंसंट्रेशन को, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उनकी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कम होती है, कैल्शियम कम होता है, तो हड्डियों में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उनको भी सूक्ष्म व्यायाम वो लगातार करते रहें, प्राणायाम करते रहें, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: योग और आधुनिक चिकित्सा एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं?
0: मैम बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि अकेला योग भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमें एलोपैथी या फिर आयुर्वेद की जरूरत है, और अकेले ही अगर हम उन्हीं पद्धतियों पर डिपेंड रहेंगे तब भी नहीं, क्योंकि योग भी बहुत ज्यादा जरूरी है उन चीजों के साथ साथ, क्योंकि कई बार हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, तो वो सिर्फ दवाइयां लेके ठीक नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ योग करने से भी ठीक हो जाएंगी। अगर हम दोनों को ऐड कर चलेंगे, और आज का तो जो जमाना है वो अल्टरनेटिव थेरेपीज का ही है, तो उससे जो है पूर्ण जो हमारा स्वास्थ्य है उसको हम पा सकते हैं।
1: योगा अभ्यास के दौरान किन परिस्थितियों में विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत आवश्यक हो जाता है?
0: स्पेशली जब आपको बीमारियां जैसे कि हाई बीपी, थायराइड, डायबिटीज, और आपकी हार्ट सर्जरीज हो रखी हैं, या किसी की जैसे हर्निया सर्जरीज हो रखी हैं, या किसी का कोई सिस्ट था उसका ऑपरेशन हो रखा है, स्पेशली प्रेगनेंसी की कंडीशन में, पोस्टपार्टम की कंडीशन में, और अगर किसी की नी रिप्लेसमेंट हुई है, जिनको भी ऐसी चीजें हैं, तो उसमें तो बहुत ध्यान रखकर और किसी भी योग थेरेपिस्ट के अंडर ही करें, क्योंकि एक टर्म होती है योग इंस्ट्रक्टर और एक होती है योग थेरेपिस्ट, तो ये दोनों अलग हैं, तो हमेशा ही किसी भी थेरेपिस्ट की इन्विजिलेशन में ही करें।
1: जी, देख रेख में ही ये करना ज्यादा फायदेमंद है। यदि कोई व्यक्ति आज से ही योग शुरू करना चाहता है तो आप उसे क्या सरल दिनचर्या अपनाने की सलाह देंगे?
0: सबसे सरल दिनचर्या तो यही है कि वो अपना एक समय निर्धारित करे कि उन्हें किस समय पर करना है, चाहे वो सुबह चाहे वो शाम, एक अपना समय बाधित कर लें कि इस समय पर वो करेंगे ही। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उनको एक घंटा ही करना है, आधा घंटा ही करना है, वो किसी भी समय, मतलब कितनी भी देर का अपना एक बना लें शेड्यूल कि मुझे इतनी देर ही करना है, और फिर उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लें, एक मॉड्यूल बना लें कि सबसे पहले उनको बैठकर 5 डीप ब्रीदिंग करनी है या 10 करनी है समय अनुसार
1: जी।
0: उसके बाद थोड़ी देर उमा की चैंटिंग करें या फिर ओम की चैंटिंग करें, जितने भी बार वो करना चाहें, गायत्री मंत्र का जाप करें या जिस कोई भी मंत्र जो उन्हें अच्छा लगता हो, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने नेक से स्टार्ट करें, गर्दन से स्टार्ट करेंगे, उसकी अप एंड डाउन मूवमेंट्स कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, फिर थोड़ी सी हाफ रोटेशन कर सकते हैं, फिर कंधों की रोटेशन करें, फिर धीरे धीरे एल्बो की रोटेशन करें, फिंगर्स ओपन एंड क्लोज करें, रिस्ट रोटेशन करें, फिर धीरे से अपने टांगों को सीधा करें, पैरों की अपसाइड एंड आउटसाइड एक्सटेंशन करें, अपनी एंकल रोटेशन करेंगे, फिर उसके बाद बटरफ्लाई कर सकते हैं क्योंकि उससे पेल्विक मूवमेंट होती है अच्छी, चक्की चालन कर सकते हैं, खड़े होने में ताड़ासन कर सकते हैं, वृक्षासन कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे
1: जी।
0: उसके बाद भुजंगासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, लोकस्ट पोज जिसे हम शलभासन बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे। ये बहुत सरल हैं सबके सब, लेकिन जितना उनसे हो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें। फिर साइकिलिंग कर सकते हैं, थायराइड के लिए हैंड स्टैंड बना सकते हैं, फिर लेग मूवमेंट्स कर सकते हैं, और आराम से ये सब करते हुए उसके बाद एंड में क्लैपिंग थेरेपी कर सकते हैं। तो और फिर जब सत्र को खत्म करेंगे तब ओम की चैंटिंग करें, फिर उसके बाद अनुलोम विलोम या अल्टरनेट नोज ब्रीद करके आराम से, और भ्रामरी कर लें। मौसम अगर गर्मी का है तो शीतली शीतकारी प्राणायाम ऐड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो बस इनको प्राणायाम किसी भी तरह से, अगर किसी की कोई थेरेपी चल रही हो तो उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज कर और फिर एंड में शांति पाठ करते हुए अपने सत्र को खत्म कर सकते हैं। और इन सबको अपने समय के अनुसार कैसे उनको मैनेज करना है तो वो आराम से इन सबके साथ कर सकते हैं
1: जी। और बहुत सुंदर आपने बताया, योग को अपनी जीवन शैली का स्थायी हिस्सा बनाने के लिए मैम आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: स्थायी तो ये तभी बनेगा जब हम इसको नियमित रूप से करेंगे
1: जी।
0: अभी हमारी बात हुई है कि चाहे आप इसको 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, कहीं आपको इमरजेंसी आ जाती है जाने की तो 10 मिनट कर लो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस मत छोड़ो, डेली करो। जितनी मर्जी देर आप टाइम लगा सकते हो, 10-15 मिनट, कितना भी जो भी आपका मन कर रहा है, लेकिन इसे अपनी निरंतरता को नहीं तोड़े।
1: और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा आपका प्रेरणादायक संदेश क्या होगा?
0: मेरा तो यही संदेश होगा कि योग को केवल करने तक ही सीमित ना रखें, योग को जीना सीखें, क्योंकि अभी जो मैं देख रही हूँ अपने समाज में भी कि बहुत छोटी सी जिंदगी है हमारी, और इस समय तो बहुत ही ज्यादा छोटी हो चुकी है
1: जी जी।
0: तो हम इन भौतिक सुखों की तरफ ना जाकर सबसे पहले अपने शारीरिक रूप से, फिर मानसिक रूप से जरूर ध्यान दें, और दिन में अगर आपको योग करने का समय नहीं भी लग रहा है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने साथ कम से कम 5-10 मिनट तो जरूर बिताएं, वो सिर्फ अपने और अपने मन के साथ बिताएं, कुछ भी ना करके सिर्फ डीप ब्रीदिंग भी अगर हमने 10 मिनट कर ली दिन में किसी भी समय निकाल कर, तो आप पाएंगे कि ज्यादा नहीं आप 50-70% रिलैक्स हो चुके होते हैं
1: जी।
0: तो हमें जब भी कभी समय मिले तो अपने साथ जरूर बिताएं, कि किसी के साथ बैठने से अच्छा है कि आप स्वयं को जानो। योग का तो मतलब ही यही है, खुद के साथ जुड़ना
1: जी।
0: लेकिन लोग पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होकर फेसबुक इंस्टाग्राम से अपने साथ ही नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। तो आज के समय का जो सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है सोचने वाला, वो वही है कि आपने सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, क्या आपने खुद को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है?
1: जी बहुत खूब।
0: तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने खुद को फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी से भेजी होगी। तो दिन में कम से कम 5-10 मिनट तो अपने साथ जरूर बिताएं, चाहे रात को सोते समय पूरा ध्यान दें कि आज मैंने क्या किया, क्यों किया, क्या इसका मेरे शरीर पर या मेरे मेंटल लेवल पर क्या इफेक्ट था। तो धीरे धीरे जब हम इस प्रैक्टिस को रेगुलरली करेंगे तो अवश्य ही हम स्वयं को स्वयं से जान जाएंगे।
1: जी मैम। तो श्रोताओं, आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक जीवन का आधार है। नियमित योगाभ्यास न केवल हमारी कार्य क्षमता बढ़ाता है बल्कि तनाव, चिंता और मानसिक अशांति से निपटने की शक्ति भी प्रदान करता है। हमारे साथ अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए योग विशेषज्ञ
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये

0: भाजपा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरदर शाखा के बीच शुरू की गई है। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मंत्रालय ने बताया कि मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित रेहरदर शाखा तक पहुँचने में वर्तमान में 2 घंटे से अधिक समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। आयुष मंत्रालय ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित कार्यक्रमों के तहत वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। इस आयोजन का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम पर सर्वाधिक दर्शकों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। आज विश्व रक्तदान दिवस है। ये दिन अमूल्य मानव जीवन बचाने और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में रक्तदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। इस वर्ष की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने विश्व रक्तदान दिवस पर देशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्त की एक एक बूंद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है और किसी परिवार में फिर से खुशी ला सकती है। उन्होंने लोगों से मानव जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया। आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश में कल मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि अभ्यास के माध्यम से आपदा से निपटने की तैयारियों में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कल आयोजित होने वाले मॉकड्रिल के सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 15 जून को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बहु आपदा मॉक ड्रिल आयोजित करेगा। उपायुक्त किरण भ्राना ने बताया कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक विभिन्न काल्पनिक आपदा परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत सिसु में ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, चाकस नाला में भूस्खलन, जहलमा नाला में फ्लैश फ्लड, उदयपुर और काजा में भूकंप तथा व्हीलिंग वन क्षेत्र में रात्रिकालीन वनाग्नि से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय समुदाय की भागीदारी रहेगी। उपायुक्त किरण बढ़ाना ने लोगों से अपील की है कि मॉकड्रिल के दौरान सायरन, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन गतिविधियों को देखकर घबराए नहीं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: भगवान शिव के पवित्र धाम किन्नौर कैलाश की वार्षिक यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से लगभग 6050 मीटर यानी 19850 फुट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक व साहसिक तीर्थ स्थलों में से एक है। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें देश विदेश के हजारों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग पार कर पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: समुद्र तल से लगभग 6050 मीटर यानी 19850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक एवं साहसिक तीर्थों में से एक है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 376 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाए। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए। इस यात्रा से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और जिले में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी के लिए
0: आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। टूर्नामेंट के मैच इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे हैं। फाइनल मैच अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स में होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नर्मदा शर्मा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे श्रीमती निष्ठा वासन जी से, जो कि आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं। आप धर्मशाला के निवासी हैं। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: हम अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे कि आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं।
1: हाँ नर्मदा जी, मैं धर्मशाला की ही निवासी हूँ। मैं यहाँ बड़ोल में रहती हूँ और मैं एक रिटायर्ड अध्यापिका हूँ। मेरा लगभग नौकरी का जो समय है वो 31 साल तक रहा है और बहुत अच्छा समय था हमारा, क्योंकि उस समय वॉक टॉक और चौक का टाइम था
0: जी,
1: और वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता था, अच्छा लगता था पढ़ाना भी और बच्चों को हम लोगों से पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था।
0: अच्छा, कितने साल हो गए आपको सेवानिवृत्त हुए?
1: मुझे सेवानिवृत्त हो गए लगभग दो साल
0: हुए अभी। अच्छा, तो वो पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो बचपन का टाइम था वो कैसा रहा और कैसे आप उस समय को आज भी याद करती हैं?
1: नर्मदा जी, हमारा बचपन का समय बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग मिलजुल के रहते थे। ये नहीं पता होता था कि ये गली का लड़का है या गली की लड़की है
0: जी।
1: बहुत प्रेम भाव होता था, एक भाई बहन वाली भावना होती थी। और शाम को टाइम, मतलब हम लोग देखते थे कि कब घड़ी की सुइयां आएं और 4 बजे हम लोग बाहर निकल जाएं और हमें खेलना है। और हम दौड़ दौड़ के खेलते थे, रेत में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे। ऐसी कोई सेंसिटिविटी थी नहीं, ना पेरेंट्स में ना बच्चों में, कि हाँ कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। माहौल बड़ा साफ सुथरा था।
0: सबसे बड़ी बात जो है वो यही है, आज का और उस समय का जो फर्क हम महसूस करते हैं कि कोई रोक टोक नहीं होती थी।
1: जिन बातों के लिए नर्मदा जी होनी चाहिए वो तो थी, लेकिन ये है कि खेलते हम खुलेआम थे, बचपन का टाइम था।
0: हाँ।
1: भावनाएं बड़ी साफ सुथरी थी,
0: बिल्कुल,
1: और विचार बड़े सुच्चे थे सब लोगों के।
0: वही कह रही हूँ ना कि अपना जो मोहल्ला था तो उसमें एक घर की बेटी है तो वो मतलब पूरे मोहल्ले की बेटी है,
1: बिल्कुल
0: ऐसा माहौल रहता था।
1: हाँ बिल्कुल नम्रता जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि एक मोहल्ले की बेटी, क्या एक कॉलोनी की बेटी जो है वो पूरी कॉलोनी की बेटी ही होती थी।
0: जी जी,
1: हाँ जी। स्कूल में छुट्टी होती थी तो हम लोग इकट्ठे घर आते थे, अगर एक भी छूट जाता था तो स्कूल के, मतलब अपनी कॉलोनी के लड़की लड़के पहले काउंट करते कि हम लोग पूरे हो गए ना
0: जी,
1: चलो जी अब चलते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल दूर हुआ करते थे।
0: और जो समय है आज का, इसके साथ अगर हम तुलना करें तो आज अगर 10-15 मिनट का रास्ता भी है तो भी पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं बच्चों को। और वो समय ऐसा होता था कि हम लोग पैदल जाते थे, जैसे सभी लोग मिलके इकट्ठे, और कितनी भी दूर, कितने कितने किलोमीटर दूर स्कूल होते थे तब भी, क्योंकि पहले इतने पास पास स्कूल नहीं होते थे। आजकल तो हर 100 मीटर पे स्कूल है। जी
1: ठीक बोल रही हैं आप, वही वाली बात है नर्मदा जी, आज का समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, पेरेंट्स बहुत पॉजेसिव हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कम,
0: बच्चे कम,
1: एक एक दो दो घरों में बच्चे हैं। पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि असली प्रॉपर्टी यही है और उसका थोड़ा सा इफेक्ट अलग से जा रहा है। बच्चों को आदत हो गई हुई है पेरेंट्स के हर चीज के साथ चलने की, और पेरेंट्स को आदत हो गई है हर बच्चे के साथ चलने की।
0: बिल्कुल,
1: हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, हमें खुला छोड़ा जाता था।
0: थोड़ा सा ये भी समझ सकते हैं हम कि ये भी फर्क है कि जो दुर्घटनाएं, मैं कह सकती हूँ कि अब हो रही हैं, जो घटनाएं अब घट रही हैं, वैसा भी कुछ नहीं होता था पहले।
1: नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं वही कह रही हूँ ना कि उस समय बचपन होता था
0: जी।
1: आज के समय में टेक्नोलॉजी ने बच्चों को इतना ज्यादा, मतलब एडवांस कर दिया है कि बच्चों में बचपन खत्म हो गया।
0: बिल्कुल,
1: बचपन रहा ही नहीं बच्चों में। अब बच्चे इतने मैच्योर हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसी मैच्योर बातें करते हैं
0: जी।
1: और ऐसे ऐसे जवाब भी कई बार दे देते हैं। पेरेंट्स को हम लोग सुनते हैं, बींग टीचर हम लोग देखते थे, कई बार सामने सामने उलझ भी जाते थे बच्चे पेरेंट्स के साथ। ऐसा हमारे समय में नहीं होता था, क्योंकि एक गैप था और पता होता था कि पेरेंट्स के सामने कौन सी बात करनी है, और टीचर्स का भी डर होता था। आज वो समय बिल्कुल खत्म हो गया।
0: आज तो टीचर डांट भी नहीं सकते हैं बच्चों को, और उस समय खूब पिटाई भी होती थी, है ना।
1: तभी तो बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाते थे, है ना। इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं होता था। आज तो बच्चों को

0: इंजॉय कर पा रहे, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी का टाइम है, बच्चे उसी के साथ लगे रह रहे हैं,
1: समय ही नहीं है बच्चों के पास, समय ही नहीं है, घर आते ही पढ़ाई फिर से करनी है।
0: और नर्मदा जी एक बात और है ना, हमारे समय में कहाँ जिम का जमाना था,
1: जी बिल्कुल,
0: हम लोग दौड़ कूद के ही अपना जमाना, यही जिम था,
1: यही जिम होता था।
0: आज बच्चे जिम में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि वो घर में कुछ काम करें, पेरेंट्स की हेल्प करवाएं या कुछ गार्डनिंग का काम कर लें, वो उनको अपनी डिग्निटी से बहुत डाउन काम लगता है।
1: तो आप इसमें मतलब किसको दोषी मानती हैं, कि बच्चों का कसूर है या पेरेंट्स का?
0: नर्मदा जी, दोष तो समय का है, समय का इसलिए दोष है कि अब वो समय रहा ही नहीं, क्योंकि बच्चे कम हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग दौड़ दौड़ के इसी पे आश्रित हैं, क्योंकि अगर बच्चा 5 मिनट ट्यूशन के लिए लेट हो गया तो भी मुसीबत है। हमारे टाइम में ट्यूशन को एक बड़ी मतलब ऐसे समझा जाता कि हाँ उसने ट्यूशन लगाई हुई है, माय गॉड यार क्या हो गया इसको, है ना। आज तो वो जमाना खत्म हो गया, तो हम किसको दोष दे सकते हैं? स्ट्रेस को ही दोष देंगे कि स्ट्रेस इतना ज्यादा है बच्चों को कि पेरेंट्स उसको रिलीज नहीं कर सकते, बल्कि और ज्यादा बच्चे स्ट्रेस में जी रहे हैं, इसीलिए कि नहीं कंपटीशन बड़ा ज्यादा है,
1: अपेक्षाएं भी कहीं ना कहीं बढ़ गई
0: हैं, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा हैं, और कुछ बच्चे भी देख सुन के अपने आप को समझते हैं कि नहीं हमें इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है। उस दौड़ में क्या है कि वो बस एक किताबी कीड़ा बन के रह जा रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: जहां तक मेरी भावना है।
1: जी जी।
0: दूसरी बात ये है कि उनके शरीर का कोई एक्सरसाइज नहीं है, मानसिक संतुलन जो है एक लेवल तक है, क्योंकि हम लोग 4 लोगों में जाते थे, बातें करते थे, सुनते थे, समझते थे एक दूसरे को, आज बच्चे सिर्फ मोबाइल से ही बात करते हैं, फेसबुक से बात करते हैं,
1: मिलना जुलना कम हो गया,
0: मिलना जुलना रहा ही नहीं, बहुत कम हो गया बच्चों का। ट्यूशन है, ट्यूशन पे जाके सिर्फ पढ़ेंगे, चलो पढ़ा तो भी ठीक है, जो ना पढ़ पाए वो भी ठीक है, लेकिन टाइम सारा मतलब बाउंडिंग्स बहुत ज्यादा हैं टाइम।
1: जी, अच्छा आपने बताया कि आप शिक्षिका रही हैं, तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली?
0: नर्मदा जी, मैं इस विभाग से बहुत ज्यादा संपर्क में रही, क्यों कि मेरे मदर भी टीचर थे।
1: अच्छा।
0: उस समय में
1: जी, जी।
0: और वो रिटायर हुए एज ए प्रिंसिपल, तो जब मम्मी हमें घर आके कोई बातें सुनाते थे तो हमारा मन मचलता था कि हम भी कभी इस लेवल पे पहुंच पाएंगे। तो चलो बहुत अच्छी एजुकेशन हमने भी ली, पेरेंट्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी,
1: बिल्कुल,
0: तो चलो आज तक इस मुकाम तक इसीलिए पहुंचे हैं, ड्यूटी ओवर पेरेंट्स एंड माँ को देख के, माँ का बड़ा ज्यादा रोल,
1: माँ का बहुत
0: बहुत ज्यादा रोल था।
1: हर माएं सोचती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, मतलब माँ बाप दोनों ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे भी आगे निकले।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या आपके उस जीवन की कोई ऐसी बात जो आपको आज भी याद हो?
0: मेरे जीवन की बात ये है कि उस समय नर्मदा जी हमने NCC ले रखी थी।
1: अच्छा।
0: तो NCC में मुझे स्टेट में अकेले पैराशूट ट्रेनिंग के लिए भेजा गया।
1: अच्छा।
0: और मैंने वो आगरा में करी, 35 दिन का था, और मेरे आने पर जब मैं वो सक्सेसफुल होके आई, सर्टिफिकेट लेके आई, तो मेरा बहुत ज़्यादा ऑनर मिला मेरे को, रेडियो स्टेशन में बुलाया गया, वहाँ एक्चुअली मेरा संपर्क वहीं से जुड़ा था स्टेशन के साथ, तो बड़ा अच्छा मेरा इंटरव्यू लिया गया, तब टीवी नए नए चले थे, तो मतलब बड़ा ऑनर मिला, वो पल मुझे भूलते नहीं है कि कैसे उन्होंने मेरे को कोट पैंट ऑफर किया, फिर 26 जनवरी की परेड में मैं वो पहन के गई, फिर मेरा वहां पे बकायदा अनाउंस हुआ कि ये आज की हमारी स्टेट की सबसे बड़ी और बहुत जो भी था, चलो अच्छी या कैसे भी करके ये हमारे स्टेट को इसने रिप्रेजेंट किया और सक्सेसफुल होके आई है, तो वो समय भूलता नहीं है, वो टिल डेथ चलेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो ये यादें होती हैं जो हम संजो कर रखते हैं ना, कब कब कौन से हमें प्राइज मिले, किसने अप्रिशिएट किया, तो ये जो काम होते हैं याद रहते हैं जिंदगी भर। तो अब आप सेवानिवृत्त हो गई हैं, तो अभी का समय जो है वो आपका कैसे बीत रहा है?
0: नर्मदा जी, ऐसा है ना कि नौकरी में बंदा एक्टिव रहता है, दौड़ता है, भागता है, हर चीज को मैनेज करके रखता है ना, लेकिन सेवानिवृत्ति का भी एक टाइम उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट रखा ही हुआ है, क्योंकि उस समय फिर इंद्रियां थोड़ी थोड़ी ढीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये है कि जो स्मार्टनेस है ना वो बॉडी में रहती है
1: ऐसी वही बात ना, तो आप
0: एक डिसिप्लिन बना रहते हैं
1: और किसी ना किसी गतिविधियों में तो जुड़े ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी टीचर हमने देखे कि वो रिटायर हो गए हैं लेकिन फिर भी कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, या घर में कोई मेड आती है उनके बच्चों को पढ़ाना, या कुछ मतलब किसी ना किसी जो सोशल वर्क जिसको हम बोल सकते हैं उनमें जुड़ी रहती हैं। तो अपने अपने तरीके से हर कोई अपना समय जो है व्यतीत करता है, तो वो आप कैसे करती हैं?
0: जैसे मैं

0: अभी नहीं हुई थी, तो
1: अच्छा
0: मैंने इनर व्हील एक संस्था है,
1: जी
0: मैं
1: जी
0: इनर व्हील के साथ
1: बिल्कुल
0: जुड़ी जुड़ी
1: अच्छा
0: पहले ही जुड़ गई थी मैं,
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: तो उसका संपर्क ज़्यादा ये है कि स्कूलों के साथ ही होता है, तो चलो बच्चों को भी थोड़ा हेल्प कर देते हैं
1: जी
0: जितना
1: जी
0: हो पाए, है ना।
1: हाँ, मैंने सुना है उनका लड़कियों की शादियों
0: हाँ
1: में भी
0: जी हाँ जी
1: काफी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कुछ दान देते हैं, सहयोग देते हैं वो।
0: और पिछले साल मैं प्रेसिडेंट भी रही हूँ इसकी, और
1: अच्छा
0: मैंने
1: ठीक
0: रिप्रेजेंट किया अपने क्लब को,
1: जी
0: और काफ़ी अच्छा गया मेरा टेन्योर। और यही है कि स्कूलों के साथ जुड़ के रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो स्कूल ही बसा होता है कि बच्चों के साथ जुड़ के रहो,
1: जी
0: इनकी
1: जी
0: हेल्प करो,
1: हाँ
0: है ना,
1: हाँ हाँ
0: जितना भी हो सके इनके साथ इनको गाइड करो, ये
1: बिल्कुल
0: मिसगाइड अगर हैं तो इनकी काउंसलिंग करो, तो वो मैं अंदर मेरे आज भी है।
1: हाँ, वही ना, वो जो टैलेंट आपके अंदर है तो वो आप
0: हाँ
1: औरों को बताएंगे,
0: बिल्कुल।
1: समझाएंगे उनको। अच्छा, मैंने सुना है कि आप कुछ लिखती भी हैं,
0: हाँ नर्मदा जी, मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, बहुत
1: तो ये कब
0: ज़्यादा
1: से शौक है आपको लिखने का?
0: ये शौक मेरा शुरू से ही था।
1: अच्छा
0: हाँ, क्योंकि मैं बताया मेरे मदर टीचर थे,
1: जी जी
0: संस्कृत के टीचर थे वो,
1: अच्छा
0: और वो बहुत अच्छा लिखते थे।
1: ठीक
0: तो स्कूल में कोई थॉट लिखना होता था तो मेरा इंतज़ार होता था कि आज, मेरी मदर का नाम था श्रीमती तारा देवी,
1: अच्छा जी
0: तो कि आज तारा बहन जी की बेटी ने बोर्ड पे पता नहीं क्या लिखना है,
1: अच्छा
0: तो मैं होता तो माँ का ही पीछे बैग था, लेकिन
1: बिल्कुल
0: मैं लिखती थी, आज का थॉट मैं कभी दोबारा रिपीट नहीं करती थी, तो
1: अच्छा
0: वहीं से मेरे अंदर ये भावना आई लिखने की,
1: ग्रेट
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ।
1: अच्छा। तो हमारे श्रोताओं के लिए आज कुछ सुनाएंगी आप?
0: हाँ मैं ज़रूर, मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत लिखने की। तो मैं, ये जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है ना,
1: जी जी
0: इनके लिए मैंने थोड़ा सा लिखा है कि घबराना
1: अच्छा
0: नहीं,
1: ठीक, बहुत
0: जिंदगी
1: अच्छे
0: है ऐसा, है ना,
1: जी
0: कि एक तरफ तो हम निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन एक तरफ ये भी जिंदगी तो सट के बाद शुरू हुई है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि पहले तो हम ऐसे ही भागते दौड़ते कूदते, उधर बच्चे लेके जा रहे हैं, आज उधर बच्चे लेके जा रहे
1: जिम्मेदारियां
0: हैं,
1: बहुत होती
0: स्कूल
1: थी
0: की जिम्मेवारियां, और
1: जी
0: घर में आना तो घर का बस ऐसे आके चुन्नी टांगनी और फटाफट किचन देखना कि बच्चों का खाना लेट ना हो जाए, घर के बुजुर्ग जो हैं इनको हर चीज़ टाइमली मिलनी चाहिए, और
1: और
0: अपने आप को हमने इग्नोर किया,
1: बिल्कुल, और ये टाइम ऐसा होता था कि तब कोई हेल्पर भी नहीं होते थे घर पे,
0: नहीं
1: है
0: होते
1: ना,
0: थे हेल्पर,
1: खुद
0: बिल्कुल
1: ही
0: नहीं
1: करना
0: होते
1: होता
0: थे,
1: था सारा काम।
0: हम सब काम खुद ही करते थे।
1: जी जी
0: और अब मुझे ये फील होता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है।
1: जी
0: मेरे
1: बिल्कुल
0: ख्याल में हर जो सीनियर सिटीजन है, हर किसी के मन में यही है कि 60 साल के बाद ही जिंदगी शुरू होती है,
1: बच्चों की
0: क्योंकि
1: शादियां हो गई होती हैं
0: बच्चों
1: या
0: की
1: जॉब कर रहे होते हैं
0: हाँ
1: बच्चे,
0: बिल्कुल
1: तो आप
0: बिल्कुल
1: फ्री होते हैं।
0: फ्री हो जाते हैं हम लोग,
1: हाँ
0: चलो घर बन चुके होते हैं,
1: जी
0: बच्चों के एजुकेशन कंप्लीट हो जाती
1: हो
0: है,
1: गई होती
0: शादियां भी
1: है।
0: चलो टाइमली हो ही जाती
1: हाँ
0: हैं
1: हाँ
0: बच्चों
1: हाँ
0: की,
1: हाँ जी
0: लेकिन कुछ लोग जो है ना वो अपना मन मार के बैठ जाते हैं कि नहीं अब हम सटके हो गए हैं, अब नहीं। मैं कहती हूँ नहीं, सट के बाद ही जिंदगी शुरू हुई है, अपने आप को स्ट्रांग रखो।
1: बिल्कुल
0: तो मैंने ये 4 लाइनें लिखी हैं,
1: जी
0: मैं उम्मीद करूंगी श्रोताओं को जरूर अच्छी लगेंगी।
1: जरूर जरूर
0: अब तो वो मुकाम है कि हर किसी के लिए दिलदारी रख, दिल ना दुखे किसी का बस इतनी सी समझदारी रख, जीवन के इस पड़ाव पर हटकर पहचान वाली कलाकारी रख, सच है कि मन भीगता नहीं हर किसी से, ये
1: बहुत
0: सच है कि मन भीगता नहीं हर किसी से, फिर भी जुबान पे एक प्यारी सी मुस्कान रख, बस यूं ही जिंदगी चलती है, और चलते रहो वक्त के साथ, थोड़ा थोड़ा बदलते रहो, ठोकरें खाकर भी संभलते रहो, उम्र भर कोई साथ नहीं निभाता, उम्र भर कोई साथ नहीं निभाता, अकेले में भी थोड़ा मुस्कुराना सीखो, छोटा सा जीवन है, बस फूलों की तरह महकते और मुस्कुराना सीखो।
1: बहुत
0: बस
1: अच्छे
0: यही चंद लाइनें मैंने लिखी थी कि ये मेरे जो साथी हैं उनको थोड़ी सी प्रेरणा हो जाएगी।
1: चलिए, ये तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपका बहुत खूबसूरत सा संदेश हुआ। अपने युवाओं के लिए और जो शिक्षक हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
0: मैं युवाओं को यही कहूंगी कि वैसे तो हम मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये कर रहे हैं, वहां दान दे रहे हैं, सब कुछ है ना, लेकिन जो घर में तुम्हारे बुजुर्ग बैठे हैं ना, उनके आशीर्वाद लो, वो
1: बिल्कुल
0: असली दान है,
1: जी
0: उनका सहयोग दो, उनको समय दो, वो असली दान। मैं
1: बिल्कुल
0: युवाओं को यही संदेश दूंगी कि उनको थोड़ा, ठीक है, समय के साथ थोड़ा सा इंसान, मैं वहमी तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये है कि वो अकेलापन महसूस करता है, उस महसूसियत को थोड़ा सा कोऑपरेट करो।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है कि अगर घर
0: हाँ
1: में बुजुर्ग हैं तो
0: बिल्कुल
1: उनके साथ वो कुछ चाहते नहीं है ना, उनको
0: बिल्कुल
1: ये रहता है कि हमारे साथ कोई थोड़ा सा समय बिता ले,
0: बस
1: हमारे साथ बातचीत करें, है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ
1: अपना सुबह शाम के वक्त में से थोड़ा सा टाइम उनके लिए दें,
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी
1: है
0: है,
1: ना,
0: बहुत
1: उनका और
0: जरूरी।
1: हाल चाल पूछ लिया, थोड़ी देर उनके साथ समय बिता लिया। कई सारे बुजुर्ग ऐसे भी हमने देखे कि अकेले रहते हैं। मैं

0: ना एक एक्सपीरियंस किया कि जहाँ कभी कहीं गए और वो अकेले रहते हैं तो फिर वो उठने नहीं देते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास और बैठे,
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तब ये
1: बिल्कुल
0: चीज महसूस होती है कि ये कितने प्यासे हैं इस चीज के लिए कि हमारे अपने जो हैं, जिन बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, जो टाइम है वो उनके
1: कहीं
0: साथ
1: ना कहीं
0: बिताएं।
1: नर्मदा जी हमारे बच्चे भी मजबूर हैं, क्योंकि आज कमाई का साधन बड़ा टफ हो गया है। बच्चे ऑनलाइन काम कर रहे हैं और ऑनलाइन काम करना मुश्किल है, काफ़ी टफ है, तो हमें भी बच्चों को वहाँ कोऑपरेट करना है। हाँ ये है कि संस्थाएं ज्वाइन करो, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे साथी हैं हमारे साथ के, उनको चाहिए किसी संस्था के साथ जुड़ जाएं, और वो लोग आते हैं घर में, करते हैं बातचीत, ऐसी कोई
0: हाँ,
1: बात
0: ये
1: नहीं,
0: एक
1: इनकी पिकनिक्स
0: अच्छा
1: ऑर्गेनाइज करते हैं।
0: साधन है, ये अच्छा एक,
1: हाँ
0: क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं किसी न किसी संस्था से जुड़े हैं जहाँ उनका आपस में मिलना जुलना भी हो जाता है,
1: बिल्कुल
0: सभी एक ही मिलती जुलती आयु के होते हैं,
1: बिल्कुल
0: सेवानिवृत्त
1: बिल्कुल
0: होते
1: बिल्कुल, अपने
0: हैं।
1: अपने एज ग्रुप के होते हैं, अच्छा लगता है, और उस साइड पे ही ज़्यादा हमें जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी कसूर कम है, लेकिन जहाँ तक हो सके बच्चों को ज़रूर साथ देना चाहिए। पेरेंट्स का थोड़ी बातचीत, हालचाल पूछने से ही काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब खुश भी हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने हमें पूछा।
0: अब वरिष्ठ नागरिकों की बात हो रही है, ऐसा तो थोड़ा सा मुझे एक चीज़ और, कि कई बार हम मार्केट में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अकेले चले होते हैं, तो ऐसे में बच्चों को मतलब समझना चाहिए कि अगर उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है तो खुद लेके जाएं, छुट्टी ले लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना बिल्कुल इस मतलब इस तरह से वो बिजी रहते हैं कि बिल्कुल भी टाइम, अगर उनके अपने बच्चे के साथ ऐसा होता है कि बच्चा बीमार है तब भी तो टाइम निकालते हैं, तो
1: बिल्कुल
0: मुझे जब मैं देखती हूं तो मुझे बड़ा दुख लगता है इस
1: नहीं
0: चीज का।
1: नर्मदा जी, ये कारण, ये बात ही दुख वाली है कि पेरेंट्स अकेले चले हुए हैं। इस एज में कई बार चक्कर आ जाता है, कई बार इंसान थक जाता है, कई बार पसीने से, वो थोड़ा सा बच्चों को, आप ठीक बोल रहे हो, सोचना चाहिए, समय देना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि हमारे बुजुर्ग एक ऐसी चीज है ना कि जो समय निकल गया या हाथ से बंदा निकल गया, बाद में रोने का धोने का कोई फायदा नहीं होता। ये सब काशी विश्वनाथ सब कुछ यही है जो हमारे घर के अंदर है, इसी
0: बिल्कुल,
1: की पूजा करो, यही असली संसार है।
0: और बहुत सारे परिवार ऐसे भी देखे हैं कि जो अपने बुजुर्गों को साथ रखते हैं वो बहुत फल फूल रहे हैं, वो उन्हीं का आशीर्वाद होता है
1: बिल्कुल
0: कि, है ना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: नर्मदा जी, दुआएं कभी बेकार नहीं जाती,
0: जी।
1: कहते हैं दुआ और बददुआ दोनों रंग दिखाती हैं, लेकिन बददुआ बहुत जल्दी रंग दिखाती है, दुआ प्रभु समेट के रख लेते हैं कि तेरे को वक्त पे मिलेगी, इसका जवाब तेरे को वक्त पे मिलेगा, तो वो फलते हैं, ऐसी
0: अच्छा,
1: बात
0: चलिए
1: है।
0: अब चलते चलते आप अपने जीवन की कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहती है और जब भी याद आती है तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो आप बांटना चाहें।
1: हाँ नर्मदा जी, ये तो है, बचपन ही है, बचपन सबको अच्छा लगता है, या कुआरापन सबको अच्छा लगता है, क्योंकि
0: जी
1: वो एक फ्री लाइफ होती है।
0: बिल्कुल,
1: मैं वैसे बेसिकली जम्मू से बिलोंग करती हूँ, मैं अपने घर में सबसे छोटी थी
0: अच्छा
1: और बड़ा डिसिप्लिन्ड लाइफ थी, और अच्छा लगता था वो सारा, वही मैं वही याद करके रह जाती हूँ कि देखो हमारे घरों में ऐसे होता था, आज वो सारा मतलब खत्म ही हो गया, सारा कोई सिस्टम, हमारा पढ़ाई का अंदाज खत्म हो गया, हमारा खेलने का अंदाज खत्म हो गया, हमारी साफ सफाई का या जो भी कैसे भी कर लो, हमारी दोस्ती का एक अंदाज साफ सुथरा सब खत्म हो गया। वो सब याद आता है कि आज के समय में और उस समय में बड़ा फर्क था, वो समय वाकई मेमोरेबल था।
0: तो निष्ठा वासन जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके जो जीवन है उसके बारे में जान के। अब अपने परिवार के बारे में बताएंगी, आप कौन कौन है आपके परिवार में?
1: मेरे इधर वाले परिवार में मेरे हस्बैंड हैं
0: जी
1: और मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, बेटी मेरी MSc टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी,
0: जी
1: मैरिड है जम्मू में,
0: अच्छा
1: और यहाँ बेटा मेरा, हमारा ऑप्टिकल्स का बिजनेस है और वो यहीं पे हैं, उन्होंने मतलब दृष्टि के उसमें ही अच्छे से वो एजुकेशन ली हुई है, और एक मेरी बहू है, मेरा नाता पोता सब
0: सब
1: है,
0: हैं, छोटे छोटे
1: हाँ
0: बच्चे, तो
1: छोटा सा
0: कैसा लगता है
1: परिवार।
0: अब, दादी हैं, नानी हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है इस स्टेज पे, तो यही चीज़ें अच्छी लगती है
0: बिल्कुल,
1: कि बच्चे खुश रहें, खेल रहे हमारे साथ, है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ हाँ
1: तो उनके साथ तुतली तुतली भाषा में बात बात करो, तो ऐसे लगता है कि हम अपने बच्चों का इतना बचपन नहीं देख पाए क्योंकि हम नौकरी में भी थे, कुछ हम परिवारों में भी बंधे हुए थे जी। तो आज वो ऐसे लगता है कि वो बचपन वापिस आ गया, तो अच्छा लगता है।
0: बचपन वापस आ गया ऐसा महसूस करते हैं, और जो अपने बच्चों के साथ इतना टाइम आप नहीं दे पाते पाए होते हैं ना, तो उसको अपने वो जो दोते और पोतरे होते हैं उनमें देखते हैं, और ऐसा बोलते हैं ना कि अपने बच्चों से ज्यादा प्यार उनके साथ होता
1: ये
0: है,
1: तो
0: दादा दादी और नाना नानी को।
1: हाँ नर्मदा जी, ये पक्की बात है कि मूल से सोत प्यारा होता ही है
0: जी,
1: है ना। वो कहीं ऊंचा भी रो पड़े तो हमें ऐसे लगता पता नहीं क्या होगा।
0: जैसे देखो आपने डांटा होगा अपने बच्चों को, लेकिन जब उनको कोई डांटता है तो आप अपने बहू बेटों को नाराज होते होंगे, या बेटी है आपकी तो उनको भी नाराज होते होंगे ना। ऐसा
1: मैं नाराज तो नहीं होती उनको बिल्कुल भी, लेकिन
0: मतलब उनको रोकते होंगे कि नहीं मत डांटो, या फिर
1: बच्चे अपने सुझाव देते हैं कि देखो इस समय इसको ऐसे तो ऐसे कर लेते हैं, ये वाली घुट्टी दे दो, ये कर लो, वो कर लो, थोड़ा सा ऐसे
0: वो
1: अच्छा
0: तो
1: लगता
0: होता है घर में ये चीजें। जैसे पुराने तो जो उनको एक्सपीरियंस होता था दादा दादी नाना नानी को,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: घर में क्या बच्चों को कौन सी बीमारी हो गई है तो क्या देना है, घरेलू नुस्खे जो है वो भी दादी नानियों को आते हैं,
1: दादी
0: तो
1: नानी
0: उनको अपना के भी बहुत, तभी इसीलिए बोलते हैं ना कि जो ज्वाइंट फैमिलीज है दादा दादी नाना नानी के साथ रहने में कितना फायदा होता है।
1: ये तो है, ये तो है।
0: और आजकल जो एकल परिवार है तो उनको कितनी मुश्किल आती होंगी।
1: बिल्कुल जी, आज का जमाना ये है ना नर्मदा जी कि सारे कमाएं तभी घर चलता है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो उसके लिए हम लोग बच्चों को कहीं क्रच में छोड़ें या कोई हेल्पर रखें या कुछ कैसे भी करके, लेकिन ये है कि एक सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं इसके दादा दादी नाना नानी घर में हैं, हम आजादी से जा सकते हैं। बेशक हेल्पर है लेकिन फिर भी उसको भी देख रेख करने वाला कोई है घर में, तो हम उस चीज को बहुत इंजॉय करती हूँ मैं कि नहीं मैं बच्चों को देखना है, हमने अभी इस समय कहीं नहीं जाना, बच्चे आएंगे, बच्चे इन द सेंस के मेरे बेटा बेटी या बहू बेटा जब आएंगे उसके बाद हम निकलेंगे, क्योंकि इसको हमने अकेले नहीं छोड़ना है।
0: जिम्मेवारी समझते हैं ना, तभी परिवार चलते हैं कि एक दूसरे को समझो, है ना। आपने उनको ये उनकी हेल्प होती है कि वो अगर जॉब कर रहे हैं तो आपने बच्चों को संभाला है, और बच्चों को तभी अटैचमेंट भी होती है, प्यार भी होता
1: है। ये तो है, बच्चों का अटैचमेंट तभी होती है अगर आप अटैचमेंट दोगे,
0: बिल्कुल।
1: ये तो आदान प्रदान है, अच्छा लगता है,
0: दादा दादियों को भी अच्छा लगता है, और बच्चों को भी ज्यादा प्यार होता है
1: ज्यादा
0: कि जब कोई फरमाइश उनकी पूरी नहीं हो रही है तो वो अपने दादी नानी के पास जाते हैं,
1: ग्रैंड पेरेंट्स के पास ही जाते हैं कि ये लेना, ये करना, ऐसे करना। समझाने वाली जगह पे हम समझा देते हैं कि ये चीज नहीं लेनी, जो लेके देनी है वहाँ शौक से जाते हैं, बच्चे अच्छा समझते हैं।
0: अच्छा, जैसा ये होता है कि दादी नानियां जो है वो कहानियां भी सुनाती हैं, किससे कहानियां कई बच्चों को सुनाती हैं ना, तो आप भी सुनाती हैं?
1: हाँ नर्मदा जी, कभी कभार सुना भी लेते हैं, लेकिन वही बात है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, आजकल बच्चों को खाना भी खिलाना हो तो थोड़ा सा उनको कार्टून वगैरह लगा दो, उसी में बहुत अच्छी स्टोरीज आ जाती हैं, बहुत सारे हनुमान चालीसा आ जाते हैं, लेकिन हम लगाते ऐसे ही चैनल हैं जो शिक्षाप्रद हों, और लगाने बहुत कम है, सिर्फ ये है कि बच्चों को थोड़ा सा खुश रखने के लिए, या थोड़ा सा जैसे पेरेंट्स बाहर हैं तो उनको थोड़ा एंगेज रखने के लिए, वो स्टोरीज वहाँ पे बहुत अच्छी, मतलब बच्चे सुन सकते हैं, हमें भी अच्छा लगता है।
0: अच्छा, आप शिक्षिका रही हैं 31 साल तक ना?
1: जी।
0: तो आपके समय का खैर ज्यादा पुराना तो नहीं हुआ है आपका भी समय, लेकिन फिर भी पिछले 31 साल से आप पढ़ा रही हैं, तब के और आज के जो शिक्षक हैं उनमें क्या फर्क है, और आप कुछ अपने सुझाव देना चाहती हैं क्या?
1: हाँ नर्मदा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि जब हमारा समय था ना वो था वॉक टॉक एंड ब्लैक बोर्ड, ठीक है, तो वो बोर्ड का समय और वो चौक टॉक बहुत अच्छा समय था, बच्चे ड्रॉ करते थे, हम बच्चों से बोर्ड पे लिखवाते थे, और बच्चों की राइटिंग बड़ी खूबसूरत होती थी, कॉपी का पेन पे बहुत अच्छा लिख लेते थे। आज के बच्चों में ये कमी है, उनकी राइटिंग इतनी सुंदर नहीं है। हमारे जब पेपर होता था 3 घंटे में तो हमें ये होता था कि सुंदर भी लिखना है और पेपर कंप्लीट भी करना है, आज बच्चों के पेपर छूट जाते हैं क्योंकि उनकी लिखाई में वो इतना दम नहीं है, ना वो खूबसूरती है, ना वो इतनी समझ है। अब देखो ना, हमारे समय में अगर हम इंग्लिश पढ़ाते थे तो हम उसको ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा बच्चों को करते थे कि नहीं ये आपने ग्रामेटिकली मिस्टेक किया। आजकल तो स्लैंग, बच्चे ठीक है, अगले को समझ आना चाहिए, आपने बोल दिया उसने भी सुन लिया, लेकिन वो चीज वो गहराई नहीं रह गई एजुकेशन में,
0: और राइटिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते थे,
1: राइटिंग
0: तो वो भी बच्चों में रहता हाँ, था क्रेज कि किसकी हाँ, हमारी ये ज्यादा
1: कंपटीशन होता था,
0: कंपटीशन होता था,
1: बकायदा कंपटीशन होता था, और बोलने का बड़ा अच्छा कंपटीशन होता था, कौन पोयम अच्छी बोल सकता है, कौन सुर ताल के साथ बोल सकता है, विद एक्शंस कौन बोल सकता है
0: जी।
1: आज वो जमाना कहाँ, टेक्नोलॉजी खा गई वही समय खत्म हो गया।
0: चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप हमारे स्टूडियोज में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। श्रोताओ, आप सुनिए कार्यक्रम तराने मन के। कार्यक्रम तराने मन के सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त सचिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार।

कहते हैं कि दिल की बात जब जुबां पर नहीं आती तो वो संगीत बन जाती है। ऐसा ही एक खूबसूरत नगमा आपको सुनवा रहे हैं। धरती फिल्म से इस गीत को हमने लिया है और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

श्रोताओ, बात जब मोहब्बत के वादों की आती है तो अक्सर शिकायतें आ ही जाती हैं। ऐसी ही एक खूबसूरत शिकायत लेकर इस गीत में हाजिर हुए हैं। ये गीत हमने लिया है फिल्म दुश्मन से, आवाज़ है किशोर कुमार की। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: तराने मन के कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
4: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में

0: सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa.
5: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
6: आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने मन के। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। उमराव जान फिल्म से ये गीत अब आपको सुनवा रहे हैं।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.

तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का कार्यक्रम तराने मन के। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सचिता। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लक्ष्य फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ। आवाजें हैं शंकर महादेवन, सोनू निगम और साथियों की।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी इस फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बंदिश फिल्म से कार्यक्रम का यह अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं।

सैनिक भाइयों, अभी आपने अलका याग्निक का गाया ये गीत सुना। इस गीत को हमने लिया था फिल्म दिल तेरा आशिक से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म विजय पथ का ये गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं।

सैनिक भाइयों, विजय पथ फिल्म के इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब अपनी रेडियो दोस्त सचिता को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। जय हिंद।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल सभा।

सभी बच्चों को जय हिंद। रेडियो दीदी अपने वादे के मुताबिक हाजिर हो चुकी है स्टूडियो में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा लेकर। सभी बच्चों को आपकी रेडियो दीदी प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत प्यार और ढेर सारा दुलार। और आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं संडे की इस प्यारी सी और छोटी सी

क्लास में। और दिल से अभिनंदन, आभार हमारे उन तमाम श्रोताओं का जो अपने कीमती वक्त के साथ कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। आप सभी का हम दिल से स्वागत करते हैं। तो नन्ही दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बातचीत। जी हाँ, माना कि अभी तक आप इधर उधर हैं और आपको ध्यान नहीं है कि आज संडे है और दीदी ने आपसे मिलने आना है, तो भाई जल्दी से अपने माइंड को फ्रेश कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और याद कीजिए कि दीदी बिल्कुल आपके घर द्वार पहुंच चुकी है और बहुत सारी बातें दीदी आज भी आपके साथ करेगी, बहुत सारी जानकारियाँ दीदी आज भी आप तक पहुंचाएगी। बस आपने सुनने के लिए तैयार रहना है और एकाग्र मन से, शांत मन से दीदी की सारी बातों को सुनना है। तो दीदी बता दे आपको, आज की बातचीत का विषय है विश्व रक्तदाता दिवस। जी हाँ बच्चों, 14 जून की तारीख भी इतिहास के पन्नों में अपना खास स्थान रखती है। बच्चों, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को क्यों मनाया जाता है? क्या कभी आपने सोचा है कि ये दिन आज की तारीख को ही क्यों मनाया जाता है? चलो इसके बारे में हम आपको पहले बता दें। बच्चों, 14 जून को ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के अवसर पर ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और बच्चों, इस खोज के लिए लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब हमारे सभी नन्हे दोस्त ये भी सुनेंगे कि रक्तदान दिवस हम सब मनाते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है और इसके महत्व क्या है। तो बच्चों, रक्तदान, जी हाँ, बहुत बार आपने सुना होगा रक्त का दान करना, अपने खून का दान करना उन लोगों के लिए जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं, जो जिंदगी की जंग लड़ रहे होते हैं, जिनमें जीने की चाह होती है। और रक्तदाता वह इंसान होता है जो नहीं जानता है कि उसके द्वारा दान किया हुआ रक्त आखिर कहाँ जाएगा, किसको दिया जाएगा। जब वो अपने रक्त का दान करता है ना, तो वो यही सोचता है कि उसकी शरीर की हर एक बूंद जिंदगी बन जाए। तो बच्चों, इसी विषय पर हम आपके साथ बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी बातें करेंगे और इन्हीं बातों जानकारियों को सुनने के लिए आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। और अभी हम ले रहे हैं छोटा सा संगीतमय अंतराल, बिल्कुल आपके रेडियो सेट्स पर हमने भेज दिया है सुंदर सा गीत।

0: कांटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: दीदी, नौकरी लग गई।
4: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी, नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
3: पर दीप,
4: देखो

0: जनहित में जारी।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप
2: देखो,

किसी भी तरह की गंभीर बीमारी उसे होती है, कोई भी व्यक्ति है जब उसे कोई गंभीर बीमारी होती है, सर्जरी होती है या फिर उसे थैलेसीमिया कैंसर का उपचार या फिर अन्य कोई गंभीर बीमारियों से कोई व्यक्ति जूझ रहा होता है, तो उस समय उस व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत होती है और रक्त भी उसके ग्रुप का होना चाहिए। तो बच्चों, जिंदगी की जंग लड़ रहे व्यक्ति को एक नया जीवन मिलता है। बच्चों, एक यूनिट रक्त कई लोगों की जान बचाने में बहुत मदद कर सकता है। सोचो, अगर कोई रक्तदान ही ना करे तो क्या होगा? सोचा है कभी आपने कि जो लोग रक्तदाता हैं, रक्तदान करते हैं, अगर बहुत सारे लोग

नया जीवन मिलेगा, जो रोज भगवान से दुआ करते हैं कि उनके अपने ना जाने कितनी बार यही प्रार्थना करते होंगे कि हमारे अपनों की जान सलामत रहे, हमें हमारे ग्रुप का खून मिल जाए। कहते हैं ना नन्नी दोस्तों, और आपने अपने बड़े बुजुर्गों को

उसके मन में एक ही भावना होती है कि उसका रक्त किसी जिंदगी को बचाने के काम आए। जानते हैं नन्हे दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? ये दिवस इसलिए भी मनाया जाता है ताकि स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मान दिया जा सके, यानी जो लोग अपनी इच्छा से अपने रक्त का दान करते हैं उन्हें सम्मानित किया जा सके। ये दिन उन तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर है जो अपने रक्त से अनगिनत जिंदगियों को बचाने में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। तो नन्ही दोस्तों, बात करें 2026 की थीम की, यानी विश्व रक्तदाता थीम की। अब हम बात करें कि इस वर्ष की थीम क्या है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। बच्चों, इस वर्ष की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। तो आप तो अभी छोटे हैं ना, लेकिन जब बड़े होंगे ना तो इस विषय पर आपने ज़रूर सोचना है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही छोटे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं, तो ये बात तो भाई गलत है ना। थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा, अच्छा अच्छा ज़रूर सोचना चाहिए। तो नन्हे दोस्तों, एक बार फिर से हम यहाँ पर रुकते हैं और सुनवाते हैं अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का कार्यक्रम में एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, हम बात कर रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में। इस अवसर पर आम लोगों को ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि रक्तदान करके किसी की जान बचाई जा सकती है, और कोई भी व्यक्ति जो 18 से 65 वर्ष की आयु का स्वस्थ व्यक्ति है वो रक्तदान कर सकता है। और हाँ बच्चों, रक्तदान से पहले स्वास्थ्य संबंधी कुछ मानकों की जांच की जाती है जो बेहद ज़रूरी होती है। रक्तदाता का एक छोटा सा कदम किसी का जीवन बचा सकता है। और हम तो, यानी हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति आप बन जाएंगे, तो आप भी रक्तदाता बन सकते हैं। पर उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक नियमित दिनचर्या का पालन आप करें, संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार आप लें, अच्छे विचार अपने मन में रखें, और दूसरों के लिए दया करुणा का भाव अपने हृदय में आपने जरूर रखना है, तभी आप आगे चलकर स्वैच्छिक रक्तदाता बन सकते हैं। ठीक है नन्हे दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी विश्व रक्तदाता दिवस पर। और अब है हमारे आज के इस कार्यक्रम का आखिरी सेगमेंट, आखिरी पड़ाव, और अब दीदी अपने नन्हे दोस्तों को सुनाएगी एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी, और हमारी कहानी का शीर्षक है परछाई। नन्हे दोस्तों, तैयार है ना आप कहानी सुनने के लिए? तो सुनो। एक गांव में नटखट शरारती बच्चा रहता था, उसका नाम था आरव। एक दिन आरव अपने घर के आंगन में खेल रहा था, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी और उसने देखा धूप में एक काली काली आकृति लगातार उसके साथ साथ चल रही है। अब आगे क्या हुआ, आरव अपनी उस आकृति को देखकर हैरान हो गया। ये क्या हो रहा है, उसके मन में कई सवाल आए। ये क्या हो सकता है, क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है, या फिर मेरे पीछे कोई भूत पड़ा हुआ है? उसने अपना एक हाथ हिलाया तो परछाई ने भी अपना एक हाथ हिलाया। आरव उछला तो परछाई भी उछली। आरव जो करता परछाई वही दोहराती। अब बस फिर क्या था, आरव को लगा अरे ये कोई भूत नहीं है, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो लगातार मेरे साथ रह रहा है, मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहा है। अब क्या था, आरव को लगा ये नया दोस्त है तो मैं इसे अपना दोस्त बना लूँगा क्योंकि ये तो बहुत अच्छा है। अब आरव ने उसका नाम रख दिया, और बच्चों आरव ने उसका नाम रखा कालू। आरव जहाँ जहाँ जाता कालू उसके पीछे पीछे जाता। जी हाँ, कालू यानी परछाई। आरव जो करता कालू वही करता, यानी जो कार्य आरव करता, जो भी एक्टिविटी आरव करता, परछाई ने तो वही काम करना था। अब आगे क्या हुआ नन्हे दोस्तों, ये भी सुनो। शाम होते होते सूरज ढल गया और कालू यानी परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। जब परछाई गायब होने लगी तो आरव का मन घबराने लगा, डरने लगा। उसे लगा मेरा नया दोस्त, मेरा अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर जा रहा है। अब वह उदास मन से अपनी माँ के पास गया। उसने कहा माँ, मेरा दोस्त कालू कहीं चला गया है, वो अंधेरे में कहीं खो गया है, उठो माँ उसे ढूंढते हैं। तब आरव की मम्मा ने उसे गोदी में उठाया और कहा बेटा वह कोई परछाई कोई कालू नहीं है, पता है वह क्या था जो सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे साथ लगातार घूम रहा था? अरे बेटा वो तुम्हारी परछाई थी।
और सुनो आरव, परछाई हमेशा रोशनी के साथ आती है और जब अंधेरा होता है तो चली जाती है। जब तक तुम्हारे ऊपर धूप होगी या बल्ब की रोशनी होगी, परछाई भी तुम्हारे साथ रहेगी। परछाई कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती। अब आरव खुश हुआ और समझ गया कि रोशनी ही परछाई का असली रहस्य है। अब नन्हे दोस्तों, ये बताओ कि इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली। बच्चों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जैसा परछाई हमारा साथ नहीं छोड़ती है, ठीक ऐसे ही सच्चे दोस्त और माता पिता हर सुख में हर दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। इसलिए कभी भी गलती से अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि हम हमेशा उनके ऋणी हैं और हर जन्म अपने माता पिता के ऋणी रहेंगे। इसी तरह से नन्हे दोस्तों, जब जीवन में कोई अच्छा और सच्चा दोस्त मिलता है ना, तो उसे अपनी लाइफ में अपने जीवन में कैद करके रखना, उसे कभी भी जाने मत देना। और नन्हे दोस्तों, अपने माता पिता के लिए हमेशा अपने हृदय में सम्मान रखना, भावना रखना, दया रखना और हमेशा उनके ऋणी रहना।

तो अब जाने से पहले हम अपने नन्हे दोस्तों को बता देते हैं आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोगी के रूप में हमारे साथ रहे सुरेंद्र कपूर।

अब इसी खूबसूरत से गीत के साथ अपनी रेडियो दीदी प्रवीण को दे कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। प्यारे बच्चों, जय हिंद।

0: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार, वो 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरत नाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Innovates in Nice, France in a short while from now, alongside French President Emmanuel Macron. The flagship event, being held under the India-France Year of Innovation, will bring together more than 120 Indian startups, global investors, technology leaders and entrepreneurs, showcasing India's rapidly expanding innovation ecosystem. Later in the day, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss key regional and global issues. Prime Minister Modi yesterday reached Nice in France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. Prime Minister Narendra Modi says India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the country with the world's largest healthcare program, that is Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable people. He said efforts like PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world's leaders during next week's G7 summit in France. A senior administrative official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. In Jharkhand, 7 people, including 3 women and a 10-year-old boy, have died in separate lightning strike incidents across the state over the past 24 hours. Police said 2 people lost their lives in Ranchi and 2 people died in Garhwa district. The other fatalities were reported from Chatra, Giridih and Saraikela Kharsama districts. Authorities have sent the bodies for post-mortem examination. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan-3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. A case has been registered against a US-based organization and 6 others following a complaint by the Enforcement Directorate ED alleging the illegal utilization of foreign funds through a network of foreign debit cards, including in left-wing extremism-affected

माला सिन्हा और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे, और इस गीत की डिटेल आपको लिखनी है श्रोताओं कि गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लाल किले के दीवान खास में स्थित शीश महल में देखे हैं, गाइड ने मशाल जलाकर चारों ओर देखती आग देख दंग रह गए थे। जी हाँ श्रोताओं, बहुत सारे शीशे पहले महलों में लगाए जाते थे और बड़े बड़े जो कमरे होते थे उसमें लगाए जाते थे, वो इस वजह से कि जब एक छोटी सी मशाल भी जलाई जाए या मोमबत्ती भी रोशन की जाए तो उससे सारा महल रात में जगमगा उठे, तो इस वजह से शीशे लगाए जाते थे। वैसे शीशों पर बड़ी कारीगरी भी की जाती थी, आपने ताजमहल में भी देखा होगा। वैसे बहुत सारे तो अब हैं नहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना एक ऐसी वस्तु है जिसमें पारा लगने के बाद अपना चेहरा दिखता है और पारा हटने के बाद पूरी दुनिया की हकीकत का असली चेहरा हमारे सामने रख देता है। जी हाँ, अगर पारा न चढ़ाया जाए इस पर तो इस पर शक्ल नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि कहिए आईना या फिर दर्पण पारदर्शिता के साथ आत्मनिरीक्षण करने का संदेश देता है, हमारे वास्तविक बाहरी रूप को दिखाते हुए हमें अंदर झांकने को भी बोलता है। इसलिए तो कहा जाता है कि दर्पण झूठ ना बोले, हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही वापस मिलेगा। बाहरी रूप संवारने के साथ साथ मन या दिल के अंदर रहे को विचार को संवार कर दूर करने की भी जरूरत है। जी हाँ श्रोताओं, वैसे एक बात भी है कि आईना जितना दिखाता है उससे ज़्यादा कहीं कुछ छुपा भी लेता है, और तभी तो हमारी इबारत में दिल के बारे में भी लिखा है कि वो दिल है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं, और इसी का असर हमारे चेहरे पर होता है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दुनिया के सामने मुस्कुराते मुस्कुराते थक कर इंसान अकेले में हार जाता है तो आईना वो दोस्त होता है जो उसके बहते हुए आंसुओं को बिना किसी शिकायत के कबूल करता है। दुनिया की नज़रों में भले ही हम खुद को छुपा लें पर अपनी ही नज़रों से नजरें मिलाना सिर्फ आईने के सामने मुमकिन है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कांच को भी दर्पण में ढालने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। जिस तरह कांच अपनी मूल पहचान पारदर्शिता को थोड़ा बदलकर दर्पण बनाता है और तभी वह खुद का असली रूप देख पाता है, उसी तरह इंसान को भी समझदार और परिपक्व बनने के लिए अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना पड़ता है।

काजल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। आपको कलाकार बताने हैं इस गीत के, और अगले गीत में भी आपको कलाकार बताने हैं और फिल्म पहचाननी है, गीतकार बताना है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमारे ग्वालियर में हर साल व्यापार मेला लगता है, उसमें एक हॉल में कई प्रकार के शीशे लगे होते हैं, उनमें किसी में मोटे पतले या फिर अलग अलग तरह के मुंह बनकर सामने आते हैं, तो उसे देखकर बड़ी हंसी आती है। जी हाँ, ये तो है, लेकिन शीशे के परिधान भी होते हैं श्रोता, वो आपको कितने पसंद हैं और कहाँ से आप ख़रीदते हैं, जहाँ आपने जहाँ भी ख़रीदा होगा, जहाँ से भी ख़रीदा होगा, वो एक ख़ास नगरी होगी। वैसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया यानी कांच नगरी किसे कहते हैं, और क्या आपने यहाँ कभी ख़रीदारी की है? एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि एक गीत है जो 60 के दशक की एक मकबूल फिल्म का है, उसमें बहुत सारे शीशे दर्शाए गए हैं, आपको वो फिल्म, वो अभिनेत्री पहचाननी है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाला सुरीला सफ़र कार्यक्रम में कुछ गीत नैनों में दर्पण है, दर्पण के इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग गीतों का जिक्र है श्रोता, और ज़रूर दर्पण के भी गीत हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हुस्न उफनती हसरतों उमंगों तरंगों का जिक्र है, जब इश्क की अरमान लिए दिल एक हमसफर हमराही और हमराज की चाहत रखता है, जो उसके दिल की भावनाओं को समझे और जीवन सफ़र का हमसफर बने। हुस्न और इश्क के ताने बाने में बुनी हुई तड़प दर्शाती खूबसूरत इबारत इश्क की इबारत है। संगीत में सफ़र की प्रेम गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम श्रोतागण भी बेकरार हैं। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है श्रोता। एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण के बाद देखकर हमें तो गीत गाता चल का गीत याद आ गया, जिसमें प्यारी सी सारिका जी गा रही हैं, मैं वही दर्पण वही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईना सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना हमें मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है, आईना हर देखने वाले को सच ही दिखलाता है, देखने वाला आईने में क्या देखना चाहता है, जो रूप भी आईने के सामने आता है आईना भी उस रूप का सच दिखाता है,

जाता है, जो रूप भी आईने के सामने आता है आईना भी उस रूप का सच दिखाता है। पर आईने की एक सच्चाई ये भी है दोस्तों, ये कब सच बतलाता है, जब देखो दायां तो बायां ये दिखलाता है।

ये जीवन के दिल के अलग अलग परिदृश्य हैं श्रोताओं, जो गीतों में ढलकर हमारे सामने आए हैं, और यही तो आईना दिखाना चाहता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है फिल्म के बारे में, जो हमने सवाल पूछा था मुगले आजम फिल्म का, वो गीत प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और उसमें बहुत सारे शीशे जो हैं वो बेल्जियम ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं। मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत है। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भारत में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को कांच नगरी यानी ग्लास सिटी कहा जाता है। इसे चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देश में कांच की चूड़ियों और कांच के अन्य सजावटी सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये शहर आगरा के पास स्थित है। जी हाँ, और भी शीशे को लेकर बहुत सारी जो हैं बातें हैं, और बहुत सारे शहर हैं श्रोताओं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं और जो व्यापार में भी लाई जाती हैं, यानी जिनका जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। और शीशे के जो गहने होते हैं वो भी अलग होते हैं। कुछ एक मीनाकारी और कुंदन के तरह का बनाया जाता है, जिसमें मीनाकारी होती है। तो ये पारंपरिक जो ज्वेलरी है जो है वो राजस्थान के एक शहर में बनाई जाती है। क्या इस शहर के बारे में आपको पता है, जहां कुंदन और मीनाकारी का काम होता है। एक हमारे श्रोता लिखती हैं कि शीशे की एक सुंदर नाजुक वस्तु यानी आईना दर्पण, जो किसी भी चीज़ का सटीक प्रतिबिंब दिखलाता है, सजना संवरना, खुद को स्मार्ट दिखना रखना, ये काम दर्पण की सहायता से आसान बन जाते हैं। मन का दर्पण सच्चाई का प्रतीक होता है, जो आत्मबोध के साथ नकारात्मकता से बचाता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो दर्पण जब घर में रखा जाता है तो बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है श्रोताओं, जैसा कि हमारी इन श्रोता ने लिखा है। तो क्या आप दर्पण को कहाँ रखना है इस बारे में भी ध्यान देते हैं, तो ज़रूर बताइए। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना तो वही रहता है, मगर चेहरा हर रोज़ बदल जाता है, कभी थका हुआ, कभी बिखरा हुआ, तो कभी संवरा हुआ। ये सच है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन पूरा सच भी नहीं दिखा सकता। आईना चेहरे की झुर्रियाँ तो दिखा देगा, पर चेहरे के पीछे की थकान नहीं, मुस्कान तो दिखा देगा, पर उसके पीछे छुपे दर्द को नहीं बता सकता। एक और श्रोता ने लिखा है, वस्तुओं में एक आईना ही है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने की ग्रहण

0: सहनशीलता रखता है। पूरी निश्चलता के साथ आईने की जो सबसे बड़ी खूबी है, जहाँ से जो मिला उसे उसी रूप में लौटा देता है। इसलिए तो कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उम्र दर उम्र और बदलते वक्त के दो ही साक्षी होते हैं, पहला समय और दूसरा आईना। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते, मगर सच यही है, आईना अपनी मौजूदगी में हमें खुद से मिलने की आज़ादी देता है। एक केवल उसी के पास साहस होता है तुमको तुमसे रूबरू कराने का। आईना हमारे जीवन रथ का सच्चा सारथी है।
1: गजरा लगा के, गजरा सजा के,

अपना देश फिल्म का ये गीत था, मुमताज़ और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में ऐसी नाजुक चीज़ की बात है जो सभी का हम सफ़र भी है, और वो चीज़ जो हमें खुद से रूबरू कराती है, और ये है आईना जो कभी झूठ नहीं बोला करता। आपके प्रतिबिंब जैसा है, आपका प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही उभरता है। वक्त के साथ बदलते चेहरे से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है जो उसमें प्रतिबिंब होते हैं। और कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में, अक्सर आओ एक मुलाकात ज़रा आईने से भी कर लेते हैं। एक यही तो है जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। सिर्फ आंतरिक भावनाओं को छोड़कर मैं जब भी अकेला होता हूँ तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि कोई तो है मेरे साथ। और उसी समय रेडियो पर बजता गीत दिल को बेहद सुकून दे जाता है। आज की इबारत पढ़ने से पता चलता है कि बड़े ही रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में। और कुछ एक गीत भी इन्होंने बताए हैं जिसमें से कुछ एक गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र आईने के साथ शुरू करना और आईने को लेकर ही पूरा करना है। मैं वही दर्पण, वही अपने आप को दिखाने के लिए लोग बाल काले करते हैं, चेहरे पर मालिश लगा लेते हैं, लेकिन जब वो आईना देखते हैं तो आईना असली सूरत और उम्र दिखाता है। कभी कभी हम इतने उदास होते हैं और आईने को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही कुछ गीत पुष्प सुनकर आज सुरीला सफर कार्यक्रम पूरा करना है।

इस गीत को आपको पहचानना है श्रोताओं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रास्ता आईना मासूम चेहरा जुल्फ रंग महल हम सफ़र गजरा गजरा और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। दर्पण भी है, हुस्न भी है, ज़रा ठहरो मोहब्बत दिलदार, तो ये सारे शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है आईने में देखकर खुद को मुस्कुरा देते हैं वो उस और उस मुस्कान पर न जाने कितने दिल हार जाते हैं। तुम्हारी आंखों की चमक के आगे आईना भी फीका लगे, खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारी सूरत बनाई है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इबारत को लिखना चाहा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत को ध्यान से पढ़ने पर ये मुख्य शब्द निकल कर आते हैं जिन पर गाने आधारित हो सकते हैं। आईना चेहरा जुल्फ हम सफ़र और बहुत सारे शब्द इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी सी बात, दर्पण में दिखने वाला अक्स तो कुछ पल साथ रहता है लेकिन अच्छे कर्मों का प्रतिबिंब लोगों के दिलों में बरसों तक चमकता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं आज की इबारत आत्ममंथन और प्रेम का सुंदर संगम लगती है। आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता बल्कि दिल के भीतर छिपे एहसासों यादों इंतज़ार और मोहब्बत को भी सामने ले आता है। ऐसा लगता है जैसे आज का सुरीला सफ़र हमें अपने ही दिल से मिलने मुस्कुराने और जीवन के सबसे सच्चे हम सफ़र अपने आप को पहचानने की ओर ले जाएगा। जी हाँ श्रोता, और यही सब बातें जो हैं, कई बार हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने दिल से पूछते हैं और इन्हीं सब बातों का जिक्र आज गीतों के ज़रिए आपके सामने आया है। कभी कभी तो आईने के सामने खड़े होकर हम बातें भी करते हैं, कभी अपने आप से कुछ कहते हैं तो कभी अपने आप से लड़ भी पड़ते हैं।

वैजंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। लीडर फिल्म से शकील बदायूनी का लिखा नौशाद का संगीत था, जिसके पहले आपने सुना मेरे महबूब फिल्म का गीत जो साधना पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि यदि आईना में साफ दिखता नहीं है तो आईना साफ करने के साथ साथ एक बार अपने ऐनक के ग्लास को भी साफ कर देखें। हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, एक बार अपने अंदर भी झांक लें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में आईने की बात है। आईना हर किसी के चेहरे की सच्चाई बयां किया करता है और इस दिल की वे उपमा चेहरे के समान ही है। एक चेहरे की हकीकत को यथा योग्य दिखाने वाले उस आईने को बाहर आईने के समान अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हृदय रूपी आईने के कृत्य उस आईने के मन दर्पण की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह समर्थ हुआ करते हैं। और ऐसे ही अभिव्यक्ति को जो है वो बता रही है ये इबारत। जी हाँ, और आईना बहुत सारी अभिव्यक्तियों को ध्यान में हमारे लाता है। श्रोताओं, ऐसे ही गीत आज हमने पिरोए हैं और अगला गीत भी बिल्कुल वैसा ही है। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठना मनाना, अपने और बीते हुए रिश्तों की परछाइयाँ। अतः आईना एक एहसास कराता है कि सच्चा हम सफ़र कोई और नहीं बल्कि स्वयं का दिल और अपनी पहचान है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना हकीकत बयां करता है, कुछ छुपाता नहीं, सामने लाता है आईना। कुछ गीत इन्होंने लिखा है, आईना वही रहता है जो वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। वैसे कांच की बात अगर करें श्रोताओं, जिससे आईना बनता है तो इसके बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, फूलदान भी बनते हैं, और एक ज़माना था जब खिलौने भी बहुत बना करते थे और हम सब ख़रीदा भी करते थे। कांच के खिलौनों की अगर कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे शीशे कई सारे ऐतिहासिक महलों में लगाए गए हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप हमें ज़रूर लिखें। और इस गीत को पहचाने अदाकार बताने हैं आपको। कई बार दर्पण देखते देखते देर भी हो जाती है, और ऐसा ही ये गीत है।

तनुजा और राजीव पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, मुकेश की आवाज़ थी, नीरज के बोल थे, रोशन का संगीत था। शीश महल जो आमिर का किला है श्रोताओं, उसमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से, बड़ी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। 1727 में जिसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। रानी महल में यहाँ आप देख सकते हैं कि तारों को देखने के लिए दीवारों और छतों पर हजारों दर्पण लगाए गए थे, जो एक दिए की अगर रोशनी की बात करें तो उससे भी जगमगा उठते थे। और अब ये गीत आप सुनिए और बताइए कि ऐसा लॉकेट आपके पास भी था क्या? इस लॉकेट में किसकी सूरत या शक्ल नजर आती है?

शालीमार फिल्म का ये गीत आपने सुना, ज़ीनत अमान और धर्मेंद्र भी इसमें नज़र आते हैं। लॉकेट में जो एक टूटे शीशे में नज़र आती है वो धर्मेंद्र की तस्वीर है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कांच का पेपर वेट बहुत सुंदर लगता है, कांच के दो तीन फ्लावर पॉट हैं हमारे घर में, कांच के और भी सुंदर डेकोरेटिव पीसेज हैं, पर बस डर लग रहा है कि टूट ना जाए। जहाँ टूटने का तो खतरा रहता है, ऐसा ही दिल भी है और जो शीशे का ही होता है। तो इस बारे में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कांच का बना हुआ पहले दो चिड़िया का सेट आया करता था, जिसमें वो बीच में रखे एक बर्तन में एक के बाद एक अपनी चोंच डुबोती थीं, अब वो नहीं मिलता। एक और श्रोता ने लिखा है कि जयपुर के आमेर किले के अंदर मशहूर शीश महल है, कहते हैं इस शीश महल के दर्पण विदेश से मंगवाए गए थे, जी हाँ बेल्जियम ग्लासेस हैं इसमें। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग हम स्त्रियां अधिक करती हैं सजने संवरने के लिए, शायद इसीलिए हम स्त्रियों को टोका जाता है कि हम सजने संवरने में बहुत समय लगाती हैं।

अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत है, आपको कलाकार बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि, दीपावली और शादियों के दौरान शीशे के काम वाला कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गुजरात का प्रसिद्ध चनिया चोली और राजस्थान का घाघरा चोली बिना मिरर वर्क के अधूरे माने जाते हैं। आधुनिक समय में ये कला सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पश्चिम पहनावे जैसे जैकेट, कुर्तियाँ, स्कर्ट, बैग और होम डेकोर के में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है।

राज कपूर और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड, मुकेश और शारदा की आवाजें थी। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है और यही है आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी की प्रतिक्रियाओं, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी सांझ विषय पर आधारित है। दोस्तों, सांझ दिन और रात के मधुर मिलन का वो क्षण है जहाँ प्रकृति अपनी समस्त थकान उतारकर एक शांत, गंभीर और सौम्य रूप धारण कर लेती है। जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणों को समेटते हुए क्षितिज की गोद में विश्राम लेने लगता है, तब आकाश के विस्तार पर लालिमा, केसरिया और धूसर रंगों की छटा बिखर जाती है। ये दृश्य केवल आंखों को ही नहीं, मन को भी एक अद्भुत शांति से भर देते हैं। सांझ का समय जीवन के उस पड़ाव का प्रतीक है जहाँ गति की तीव्रता मंद होकर आत्मचिंतन में परिवर्तित हो जाती है।
1: ओ

दोस्तों, दिन भर की आपाधापी, संघर्ष और कोलाहल के पश्चात ये सांझ की घड़ी ठहर कर स्वयं से मिलने का अवसर प्रदान करती है। पक्षियों का अपने घोंसलों की ओर लौटना, गायों का बछड़ों के पास आना रंभाना, मंदिरों की घंटियों का मधुर निनाद और आकाश में उभरती प्रथम तारा रश्मि, ये सभी दृश्य सांझ को एक आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति में सांझ का विशेष महत्व रहा है। इसे संध्या वंदन का समय माना गया है। जब मनुष्य अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर ईश्वर का स्मरण करता है, ये समय आत्मा की शुद्धि और मन की एकाग्रता का प्रतीक है।

दोस्तों, सांझ हमें सिखाती है कि हर अंत के भीतर एक नए आरंभ की संभावना छिपी होती है। जैसे दिन का अवसान रात्रि का द्वार खोलता है, वैसे ही जीवन में प्रत्येक संधि एक नई दिशा का संकेत देती है। साहित्य और काव्य में भी सांझ को विरह, प्रतीक्षा और स्मृति का भावपूर्ण रूप मिला है। प्रिय के वियोग में डूबी नायिका के लिए सांझ का धुंधलका उसके मन की व्याकुलता को और गहरा कर देता है। वहीं किसी साधक के लिए यही सांझ और ध्यान और समाधि का पावन क्षण बन जाती है। सांझ केवल दिन का एक भाग नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का एक सजीव प्रतीक है, जो हमें संतुलन, शांति और आत्म अवलोकन का संदेश देती है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुश

0: खाली, जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
3: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरिसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तर्ज सचिन देव बर्मन की मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जो शहीद

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: शागिर्द फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे।
1: राम और श्याम इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले का गया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि देश में एम्स की संख्या 1 से बढ़कर 23 हो गई है। वहीं ई संजीवनी, कोविन और यूविन जैसे प्लेटफॉर्म से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही हैं। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को कल 15 जून को शपथ दिलाई जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। कल शपथ समारोह जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया चंबा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सोलन और कृषि मंत्री चंद्र कुमार कुल्लू में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसी तरह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर, जबकि आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा हमीरपुर में शपथ दिलाएंगे। जिला स्तर पर होने वाले शपथ समारोह कार्यक्रमों के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस का विषय मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं रखा गया है। सुरक्षित रक्त के महत्व के बारे में जागरूकता लाने और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस अवसर पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने कहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सोलन जिले के अर्की में विशाल दंगल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मान व प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की है। संजय अवस्थी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने और उनके शारीरिक विकास में खेल गतिविधियां अहम भूमिका निभा रही हैं। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना है। लाहौल स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शांशा के एक छात्र व प्रतिभाशाली खिलाड़ी ऋषिक रायांग का चयन प्रदेश की 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की एथलेटिक्स टीम में हुआ है। उन्होंने बिलासपुर के लुहणू मैदान में हुए राज्य स्तरीय ट्रायल में जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: सितंबर माह में देहरादून में होने वाली नॉर्थ जोन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले भी वे अंडर 17 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की ओर से खेल चुके हैं। ऋषिक की इस उपलब्धि पर उनके अभिभावकों, प्रशिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। उनकी सफलता को लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: ऊना जिला में पिछले 3 वर्षों में 9,393 किसान राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने की दिशा में तत्परता से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर वृद्धि की नीति ने जिले में सकारात्मक बदलाव की नींव रखी है। उपायुक्त के अनुसार प्राकृतिक खेती के बढ़ते दायरे से जल, मिट्टी और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिल रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: सामयिक चर्चा के बाद समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र, 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत का दृष्टिकोण। वाचक स्वर नविता चौहान।
0: केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं पर केंद्रित कई पहल शुरू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के आधार पर सरकार ने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाई, उच्च शिक्षा को मजबूत किया और कौशल विकास व रोजगार के अवसर बढ़ाए। भारत के स्टार्टअप तंत्र में भी इजाफा हुआ, जिसमें 2,03,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप शामिल हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, समावेशी कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश के युवा अमृत पीढ़ी के रूप में उभरे हैं और विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान दे रहे हैं। अपनी लगभग 65% आबादी के 35 वर्ष से कम उम्र के होने के कारण भारत अपने इतिहास के एक अहम मोड़ पर है। सरकार इस जनसांख्यिकी लाभांश की अपार क्षमता को पहचानती है। पिछले 12 वर्षों में देश ने युवाओं के साथ सरकार के जुड़ाव के तरीके में एक बुनियादी बदलाव देखा है। ये दौर भारत के युवाओं को राष्ट्रीय विकास की ताकत में बदलने के लिए किए गए व्यवस्थित और परिवर्तनकारी प्रयासों को दर्शाता है। ये बदलाव शिक्षा, कौशल विकास, खेल और उद्यमिता सहित हर क्षेत्र में दिखाई देता है। युवाओं को अब केवल निष्क्रिय लाभार्थी नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें अमृत पीढ़ी के रूप में पहचाना जाता है। वे विकसित भारत 2047 के मुख्य निर्माता और सह रचनाकार के रूप में उभरे हैं। पिछले दशक में युवाओं के विकसित होने में भारत के नजरिए में काफी बदलाव आया है, जो युवा और गतिशील आबादी की बदलती आकांक्षाओं और जरूरतों को दर्शाता है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 ने देश में युवाओं के विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया। इसमें 15 से 29 साल के लोगों को युवा माना गया और शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य, खेल, सामाजिक भागीदारी और सशक्तिकरण जैसे अहम क्षेत्रों की पहचान की गई। इसका मुख्य जोर पहुंच, समावेश और संस्थागत मजबूती पर था। इसी बुनियादी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने हाल के वर्षों में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास का विजन पेश किया है। इसमें युवाओं को सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों का लाभार्थी के तौर पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय साझेदार के तौर पर देखा गया है। हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय युवा नीति 2025 का ढांचा भविष्य के लिए जरूरी कौशल, उद्यमिता, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी, डिजिटल भागीदारी और टिकाऊ विकास जैसी उभरती प्राथमिकताओं पर और जोर देता है। हाल ही के वर्षों में शिक्षा के प्रति भारत का नजरिया काफी बदला है। अब ध्यान सिर्फ पहुंच बढ़ाने से हटकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो गया है। शिक्षा अब शहरों तक ही सीमित ना रहकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही है, ताकि सभी को समान अवसर मिल सकें। भारत के युवाओं के लिए सर्वांगीण और भविष्य के लिए तैयार करने वाली शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी बदलाव का मुख्य आधार है। ये देशभर के हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई पहली व्यापक शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा तक पहुंचने और उसे देने के तरीके में बुनियादी बदलाव किए हैं। भारतीय युवा अब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के जरिए सशक्त हो रहे हैं, जो ज्यादा सशक्त, डिजिटल रूप में सक्षम और नवाचार पर आधारित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने एक मजबूत डिजिटल लर्निंग व्यवस्था बनाई है। स्वयं प्रभा, पीएम ई विद्या और दीक्षा टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल कंटेंट और ई संसाधनों के जरिए सीखने के अवसरों को और बढ़ाया है। अकेले दीक्षा में 135 भाषाओं में 3,66,000 से ज्यादा ई कंटेंट संसाधन मौजूद हैं। उच्च शिक्षा के स्तर पर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल ने 7,414 संस्थानों में अकादमिक और शोध संस्थानों तक पहुंच बढ़ाई है, जिससे लगभग 99,00,000 लोगों को फायदा हुआ है। नवाचार, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब बनाए हैं, जिनसे 1,01,00,000 से ज्यादा छात्रों को मदद मिली है और उभरती तकनीकों में 16,00,000 से ज्यादा परियोजनाओं के विकास में मदद मिली है। इसके अलावा 72 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स ने 6,700 से ज्यादा स्टार्टअप्स को समर्थन किया है और 32,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा करने में मदद की है। 2014 से युवाओं के लिए भारत की उच्च शिक्षा से जुड़े मूलभूत ढांचे का भौतिक विस्तार काफी बड़ा और रणनीतिक रूप से किया गया है।
2: सुन रहे थे सामयिक चर्चा, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडिया वेव 370।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

कमाल अमरोही की रचना थी गुलाम मोहम्मद की तर्ज, लता मंगेशकर की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को पसंद किया अनिल इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

फिल्म मेला का ये गीत था मोहम्मद जफ़ी और लता मंगेशकर का गाया, आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। ज़िला अहिल्यानगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा ने।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाज़ें थी, अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोलते मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मन चाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव पांच गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूं।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है, पांडवों ने अपनी धन संपदा राज्य सब कुछ द्यूत में हार दिया है। दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं। उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य यह है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के। उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं द्यूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था। शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है।
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों छुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम।
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं।
1: क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं। उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
0: महाराज।
1: हाँ गांधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक है, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज हैं। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
0: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
1: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गांधारी।
0: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
1: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
0: ईश्वर कल्याण करे।

0: आज युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं ये निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुलोचन।

चित्रसेन, उपचित्र, सुचारू, चित्राक्ष, नंद और उपनंद मारे गए।

राज, दुर्मुख, दुर्जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद, गांधारी,

आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रह गई।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना। सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा, तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: परंतु
1: कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर
0: पड़े। बस बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई। सब वेदनाएं सो गई। दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर ढोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोंछो कांधारे, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो उठो।
3: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
0: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
3: शांत हो राजमाता।
0: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहस्रों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
3: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहां। राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
0: नहीं कृष्ण, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
3: देवी गांधारी,
0: कृष्ण, मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देखकर जिएंगे, बताओ।
3: मुझे क्षमा करो माता।
0: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
3: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
0: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ। मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा उस संवेदना से परे है।

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी? हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ?
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वायु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो, एक ज्योतिहीन के गले बदने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद? उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृकुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ?
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गोष्ठी को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूं गांधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म, पातिव्रत्य, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना? और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी? आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी?
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी, तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है गांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आपने
0: कुरु वंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं गांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं चला, मेरी संतति चली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए गांधारी कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ, प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय है, और इसीलिए वो 100 होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हाँ, अपराधी भी नहीं हम है महाराज, हम है।
0: गांधारी, देखो, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हठ धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो, वो युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं।
0: गांधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई है।
1: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहां तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूं।
1: महाराज,
0: हाँ गांधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए, रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए, इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित कर दें।
0: चलो, तावानल बढ़ रहा है, आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है तो उसका परित्याग क्यों किया जाए।

0: चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ, इसी तरह चलो।
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार कर

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम, जो कि आकाशवाणी के मुंबई के इंद्र से रिले किए जा रहे हैं।
2: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
3: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
2: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
4: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
2: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।
3: देख

0: तो कभी छाऊं।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
3: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहाँ जाके कुछ पूजा करेंगे। वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं।

0: है कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
1: वो तो बहुत पॉपुलर था।
0: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
1: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
0: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
1: अच्छा,
0: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे
1: अच्छा
0: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
1: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें।
0: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा। हाँ जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं। तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी। फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी। और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो, मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं,
0: अच्छा।
1: जो जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ कि भाई ये काम आप क्यों करेंगी। हाँ,
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
1: मैं
0: आपकी
1: तो
0: भी
1: बड़ी
0: अपनी
1: हो
0: एक
1: गई
0: दुनिया
1: थी।
0: बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया,
0: भीतर
1: वो फिर
0: होता है,
1: गर्व
0: वो
1: महसूस करने
0: महसूस
1: लगे।
0: किया। मितुल जी, कहते हैं कि महाकवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था, और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा।
0: जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी
1: हाँ,
0: ने?
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं, और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है
0: खूबसूरती
1: कि
0: के
1: मेरे
0: साथ,
1: जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो
0: बोलो
1: तुम
0: तुम
1: कौन
0: कौन
1: हो,
0: हो।
1: बोलो तुम कौन हो।
0: क्या बात है,
1: हाँ,
0: क्या बात
1: तो
0: है
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना
0: जी।
1: सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
0: तुम
1: तुम।
0: थे।
1: हाँ, तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा
1: क्या
0: प्यार
1: मेरा
0: पसंद है
1: प्यार
0: तुम्हें।
1: पसंद है। तो ये भी कितना सुंदर सुंदर से गीत है,
0: बहुत स्वीट।
1: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
0: हर पल के गीत है
1: हर
0: ये, हर
1: पल के। तो
0: मौके
1: ये
0: के गीत है।
1: रोमांटिक गाने भी उन्होंने
0: जी
1: लिखे,
0: जी
1: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के बिहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत गहरी गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि, जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रोमानियत के उस माहौल में भी थे जहाँ रोमानी कविता उनकी कलम से निकली, रोमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
1: जी।
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहाँ के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी।
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा, तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते
1: बिल्कुल,
0: हैं
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी

0: व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था
1: जी।
0: और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहाँ खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
1: जी।
0: वो भी ऑडियंस में थे
1: जी। और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है।
1: जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत,
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे, और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है, तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीज़ें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जाम्बून,
0: हाँ,
1: काले नहीं, सफेद
0: सफेद, हाँ,
1: खैर एनीवे, वाटर

0: पीपल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा, उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
1: क्या बात है।
0: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
1: अच्छा,
0: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
1: क्या बात है।
0: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है, और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
1: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
0: हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
1: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है, और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए ये क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
0: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के, उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे। ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
1: अच्छा,
0: इतनी मजबूत है।
1: क्या बात है,
0: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।
1: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
0: जी
1: उसको खड़ा किया।
0: हाँ
1: जी मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं, और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई, और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
0: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
1: जी
0: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं, और जब मैंने शुरू किया 1982 में तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
1: जी,
0: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर कर के स्वस्तिक ड्रॉ किया।
1: जी,
0: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
1: जी,
0: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना लक्ष्मी के,
1: नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में,
0: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
1: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी।
0: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, नहीं मुझे वो मज़ा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली
1: जी,
0: बोलती आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं, उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलते नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था। कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था, उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए, मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने
1: जी,
0: में
1: जी, जी।
0: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है आपके क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी।
1: अच्छा
0: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन
1: जी,
0: गई
1: जी।
0: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
1: मकसद मिल गया
0: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब गुरु बनते हैं ना तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और आपका जीवन बदल जाता है।
1: सुख

0: तो कभी था।
1: मितुल जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही।
2: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया, कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
1: अच्छा,
2: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना, ड्राइंग करते
1: रहे। तो आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
2: बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास, आज खजाना है।
1: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
2: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा
1: है,
2: अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
1: ऑयल पेंटिंग
2: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है। कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहाँ बंध जाते हैं।
1: जी।
2: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
1: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर।
2: वही तो, वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने आर्ट।
2: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
1: अच्छा जी।
2: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
1: जी जी जी।
2: तो ज़्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरे कला है मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है। तो लोग आते हैं, देखते हैं, अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है, नहीं। अपनी कला को एक कला प्रति रहने दिया है,
2: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहाँ पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
1: बिल्कुल,
2: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
1: तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
2: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की
1: बात कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
2: जी।

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा हैं, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास, जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में ख़त्म करना है तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए।

0: उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए
1: जी।
0: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात मतलब आर्टिफिशियल वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
1: ठीक है,
0: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
1: अच्छा जी, तो वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
0: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है, कपड़े पे पेंटिंग करना। तो अभी मेरे पास दो हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे को, बच्चों को, सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
1: मॉडर्न आर्ट है,
0: मॉडर्न आर्ट है,
1: इस तरह का, सभी तरह के। आप
0: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको आप अपना पेंटिंग बनाइए।
1: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं?
0: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं
1: बहुत सुंदर।

0: मितुल जी, आपने बताया कि आप इतनी प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: जो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है,
0: हाँ हाँ,
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं। जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर के आजू बाजू रहती हैं
1: और रोज खाने के लिए आती हैं। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो ये सब भगवान है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही है?
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज है, तगड़ी है बड़ी, और कुत्तों को डराती हैं।
0: तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब।
0: जी जी, जी। तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी है, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है,
0: अच्छा
1: है ना, जैसे ब्राउनी है,
0: हाँ,
1: ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके
1: हाँ,
0: नाम है,
1: हाँ, सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिनटिन है तो दूसरा है चिनचिन, जैसे चुन चुन भी है, सो किटकैट भी है।
0: अच्छा, सो ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती है?
1: हाँ, हाँ, मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है। क्या बहुत हो गया
0: जी। कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है?
1: पूरा पूरा जंगल है, और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
0: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान।
1: जरूर सुनवाइए, जरूर सुन।

0: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल वो
1: जी
0: क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ।
0: जी
1: और मैं ये कहना चाहूँगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए,
0: जी
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए।
0: जी बहुत खूब बहुत शानदार। मितुल जी आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनकी जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपको हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं आभारी हूँ विविध भारती। मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
0: जी
1: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से। और आज की बातचीत बस यहीं तक, अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है पहले हिंदी में समाचार व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति सहित कई प्रमुख व्यापारिक नेता भी उपस्थित थे। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों आज भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 25,00,000 से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहत ने रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डेओक को 5-1 से हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi and President of France Emmanuel Macron today jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palais des Expositions in Nice, France. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together top innovation startups and venture capital funds from India, France and other countries. It features innovations across 13 key sectors including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, quantum technologies, space technology, clean energy and biotechnology. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted the strength of India-France ties. He said while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
3: Addressing the gathering, French President Macron also described it as an honor for France to host the first edition of the initiative outside India. He said the world increasingly sees India not only as a country with immense talent, but as a nation of innovation and a disruptive force in technology.
4: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
3: External Affairs Minister Dr. A. Jaishankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, National Security Advisor Ajit Doval, Principal Scientific Advisor Ajay Kumar Sood, Infosys Founder Narayan Murthy and several prominent business leaders were also present on the occasion. Speaking at the event, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India is emerging as a trusted and reliable partner at a time of global geopolitical and technological transformation.
5: The world seeks trusted and reliable partners, and that is what India brings to the table. We bring the energy of the world's youngest large nation, the finest talent pool available, and a scale that few can match.
3: Ahead of the event, Prime Minister Modi also interacted with leading investors, venture capitalists and innovators participating in the landmark India-France Innovation Showcase. Later in the day, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss key regional and global issues. The Indian Embassy in Oman said that an Indian-flagged mechanized sailing vessel, Virat 1, carrying around 14 Indian experienced and engine failure off the coast of Oman. In a social media post, the embassy informed that the crew were transferred safely to a life raft. The embassy added that the rescue operation is presently underway through ships in vicinity under coordination of Omani authorities. Sources said that the vessel sank because of mechanical failure. Iran has said it has not yet taken a final decision on the proposed memorandum of understanding aimed at ending tensions with the United States and Israel. Iranian media said the political, legal and technical reviews on the proposed deal are still underway. Meanwhile, a Qatari delegation arrived in Tehran to hold consultations with Iranian officials and facilitate diplomatic exchanges between Iran and the United States. The developments come amid ongoing negotiations with U.S. President Donald Trump expressing hope that a framework agreement could be reached soon. In archery, India's Dheeraj Bomma Devara and teenager Kumkum Mohod clinched the gold medal in recurve mixed team event at the World Cup Stage

अभी आपने सुना राम भक्त विभीषण फिल्म का ये भक्ति रचना, जिसे गाया था सुमन हेबड़ी ने। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति पंडित भीमसेन जोशी की आवाज़ में।

अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी जिसे हमने लिया था फिल्म भक्त अभिलाषा से। गायक कलाकार थे पंडित भीमसेन जोशी। भजन फिल्मों से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति निश्चय फिल्म से अनूप जलोटा हेमलता की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन फिल्मों से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज के दिन आप जानकारियों के साथ साथ सुना करते हैं वीकली पल्स, जिसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल अपडेट्स दी जाती हैं।

कार्यक्रम युवा मंच सुनने वाले सभी श्रोताओं को, हमारे युवा साथियों को आपकी दोस्त वर्षा टोच का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ युवा साथियों, आज छुट्टी का दिन है और हम देखिए हाजिर हो गए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच लेकर। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको हर दिन नई जानकारी जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और आजकल तो आपने सुना ही होगा कि हमारे जो कार्यक्रम हैं उनका स्वरूप थोड़ा बदला हुआ है, तो हमने आप सभी युवा साथियों से ये करबद्ध प्रार्थना भी की थी कि कैसा लग रहा है आपको ये स्वरूप युवा मंच का भी जो बदला हुआ है, आप ज़रूर हमें लिखकर भेजें, व्हाट्सएप के जरिए भी बता सकते हैं आप। तो आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी के साथ। वीकली पल्स पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज है युवा साथियों वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। जी हाँ, विश्व रक्तदाता दिवस है आज, तो इस पर पहले हम जानकारी साझा करेंगे और उसके बाद हम आपको वीकली पल्स से जोड़ेंगे। तो जानकारी साझा करने से पहले हमें ये पता है कि हमारे युवा साथी इंतज़ार करते हैं छोटी सी म्यूज़िकल ब्रेक का, तो चलिए ले चलते हैं आपको ब्रेक की तरफ और फिर फौरन हाजिर होते हैं जानकारी के साथ।

0: युवा साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये गीत पसंद आया होगा। लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं आपकी सेवा में।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
0: जी हाँ युवा साथियों, आपका फिर से स्वागत है। सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज पहले हम जानकारी साझा कर रहे हैं आपके साथ विश्व रक्तदाता दिवस पर। हर वर्ष 14 जून को पूरी दुनिया में स्वैच्छिक और सुरक्षित रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा घोषित आधिकारिक वैश्विक थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं, वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड सेव लाइव्स, ये है। ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। युवा साथियों, जिन्होंने मानव रक्त समूहों यानी AVO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी, मुख्य उद्देश्य और महत्व जागरूकता बढ़ाना था। समाज में सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों जैसे प्लाज्मा प्लेटलेट्स की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना, दानदाताओं का आभार, बिना किसी वित्तीय लाभ के निस्वार्थ भाव से रक्तदान कर लोगों की जान बचाने वाले रक्तदाताओं को सम्मानित करना, एकजुटता का संदेश देना भी इसका एक उद्देश्य है। ये याद दिलाना कि रक्तदान केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं बल्कि मानवता और सहानुभूति का एक बड़ा प्रतीक है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: युवा साथियों, कार्यक्रम में फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज पहले हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस पर। युवा साथियों, रक्तदान के प्रमुख स्वास्थ्य लाभों की अगर हम बात करें तो रक्तदान न केवल दूसरों का जीवन बचाता है बल्कि खुद दाता के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। स्वास्थ्य लाभ की अगर हम बात करें तो हृदय स्वास्थ्य में सुधार, शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है जिससे दिल के दौरे का खतरा कम होता है। नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण, रक्तदान के बाद शरीर तेजी से नई और स्वस्थ रक्त कोशिकाएं बनाना शुरू करता है। मुफ्त स्वास्थ्य जांच, हर बार रक्तदान करने से पहले रक्तचाप, हीमोग्लोबिन और संक्रामक बीमारियों की मुफ्त जाँच हो जाती है। कैंसर के जोखिम में कमी, शरीर में टॉक्सिक आयरन लेवल घटने से कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा कम होता है। रक्तदान से जुड़े कुछ ज़रूरी नियमों की अगर हम बात करें तो दाता की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच और वजन कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन स्तर सुरक्षित रक्तदान के लिए शरीर में हीमोग्लोबिन न्यूनतम 12.5 होना आवश्यक है और एक स्वस्थ पुरुष हर 3 महीने में और महिला हर 4 महीने में दोबारा सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकते हैं। यदि आप रक्तदान करने की सोच रहे हैं तो अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल, मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक या रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित शिविरों में जाकर संपर्क कर सकते हैं। पहले अपना रूटीन चेकअप कराएं, तभी आप रक्त दान करने की सोचें। तो लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फौरन हाजिर होते हैं नेशनल इंटरनेशनल अपडेट्स के साथ वीकली पल्स के अंतर्गत।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: युवा साथियों, बात करते हैं वीकली पल्स की। ईरान अमेरिका समझौता। जी हाँ युवा साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर बड़ा दावा किया है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को जल्द खोलने की बात कही है। भारत अमेरिका राजनयिक गतिरोध के बारे में अगर हम बात करें तो नागरिक जहाज़ों पर हमलों को लेकर भारत ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है, क्योंकि भारत ने अपने नाविकों की हत्या पर कड़ी आपत्ति जताई। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आईसीसी वीमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों के बीच महामुकाबला आज यानी 14 जून 2026 को इंग्लैंड के बंगेम शहर के एज वेस्टर्न स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये हाई वोल्टेज मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, जिसका टॉस शाम 6:30 बजे किया जाएगा। दोनों टीमों का इस टूर्नामेंट में ये पहला और बेहद महत्वपूर्ण शुरुआती मैच है। तो युवा साथियों, अब घड़ी की सुइयां ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं, तो चलते चलते आपको बता दें कि इस मनोरंजक और जानकारियों से भरे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह और आज मैं रही आपके साथ वर्षक टोच। कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण में कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि आप अपनों का और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। शाम 6:06 का प्रसारण समय रहेगा कार्यक्रम खेती बाड़ी का। इसमें आज चेरी और पलम की खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ ही साथ भेंट वार्ता व लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। कार्यक्रम मिंजरांजो की लोकगीतों पर आधारित सजीव फोनिन विशेष तौर पर महिलाओं के लिए रहेगा। इसका प्रसारण समय रहेगा शाम 6:35 का। रात्रि 8 बजे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा देश का अनेक ही कलाकार। कार्यक्रम के अंतर्गत आज रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों की महफिल के अंतर्गत फिल्म संगीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे व 7:45 पर प्रादेशिक समाचारों और रात्रि 8:15 पर हिमवीर्स कार्यक्रम भी आकाशवाणी शिमला से ही रिले किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 बजे व रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, शाम 7:10 पर विशेष कार्यक्रम सशक्त भारत, रात्रि 8:45 पर समाचार, संध्या व 9 बजे न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, व रात्रि 10 बजे रवि वासरीय संगीत सभा भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले की जाएगी। श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आज शाम को शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी आपके नाम?

0: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो क्या
2: आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और उनमें सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सरकार आगे भी लगातार काम करती रहेगी। प्रदेश के सभी जिलों में कल 15 जून को आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से ये मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत व बचाव कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। पूर्वाभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल होंगे, जो आपदा तैयारी में मौजूद कमियों की पहचान करने और उनके समाधान के सुझाव देंगे। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला में एक महिला की हत्या होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में पहले नहीं सुनी गई थी, लेकिन अब आए दिन हो रही हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होता है, लेकिन प्रदेश पुलिस सरकार के निर्देशों पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को परेशान करने, सत्ता समर्थित अराजक लोगों को सुरक्षा देने और भाजपा नेताओं के फोन की निगरानी करने जैसे कार्यों में व्यस्त है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जिस तरीके से पुलिस को अपना टूल बनाकर विपक्ष को परेशान करने में जुटी है, उसके खतरनाक परिणाम सामने आएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के 2 दिवसीय हिमाचल प्रवास ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा व आत्मविश्वास का संचार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस प्रवास ने न केवल संगठन को मजबूती प्रदान की, बल्कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भी जनता के समक्ष उजागर किया है। किन्नौर जिले के प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से करीब 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक व साहसिक तीर्थ स्थलों में से एक है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रोजाना अधिकतम 375 श्रद्धालुओं को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। रिकांगपियो से हमारी संवाददाता के अनुसार ये यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें हर वर्ष देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। नव भारत युवा संघ ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। संघ के अध्यक्ष भावन शर्मा ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और नशा व खनन माफिया भी पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं और समाज पर बुरा असर पड़ रहा है।
1: पिछले कुछ समय से पूरे हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो बिगड़ना हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, उसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय होगी? हिमाचल में सरेआम माफिया राज फैल रहा है, खनन माफिया फैल रहा है, ड्रग माफिया फैल रहा है, आखिर किसकी जिम्मेदारी तय होगी? कौन इसके लिए जवाबदेह होगा? हिमाचल के आम नागरिक खुलेआम घूमने में भी डर रहे हैं। हिमाचल की माताएं बहनें आज सुरक्षित नहीं है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसे परीक्षा कर्मयोगी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण व निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने सहित ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। इसमें नीट, स्नातक पूर्व परीक्षा भी शामिल है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में वर्षा दर्ज की गई, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात भी हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी। इसमें आज जानकारियों के साथ साथ भेंट वार्ता व लोक संगीत भी सुनवाया जाएगा।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी विच सारे दा स्वागत है। कन्नै मैं थोड़ा किसान साथी जोधा राम, कन्नै अज मेरे कन्नै सन्नो
1: ताई।
0: हाँ सन्नो ताई अज गिरी फिरी आई है।
1: बिल्कुल गिरी फिरी आई। कन्नै दिखा मैं तो अज इं तो बड़ी तोल की थी पर फिर आँदी आँदी लेट ही हुई गई।
0: दिखा लेट तो इं भी हो मैं सोचा अच थोड़ी दी वर्खा हो जाती है, लेकिन दिखा दिन भर अज मौसम बढ़िया रहा।
1: ना ना भाई कल हुई थी ना बांकी वर्खा। कन्नै खेतीबाड़ी वाले जो तो मैं बोलती वर्खा अमृत होंगी
0: बढ़िया वर्खा। कन्नै इसी अहां बोलदे वे मानसून अल्ले आया नहीं है, लेकिन ये अहां दे पहाड़ा दा अपना मानसून है ना। कन्नै ये भी बड़ा अच्छा होंदा कि अल्ले दी करासां दे उरे दे काम भी चले, कई और लाई ते कई अल्ले लगाना है अगेती कन्नै पिछेती किस्मत दे हिसाब नाल लगा करदे।
1: कई तो बेचारे हैं जे पानी वाले छत्ता खड्डा नालूआं ते पानी घेरी लै दे। कई बेचारे अमरे पहा रोज दिखा दे संजा बेई करी पे हुण भरदा तां कुछ किछलियां भाई ये धाना दे बोले उरा ही पट्टियां तैयार करिए। कुछ ऐसे इलाके ने बेचारे से पूरी तरह ही वर्खा पर निर्भर हैं।
0: सही गल है। कहीं दिखा खेतीबाड़ी की गलबात सोगी सोगी असं अपनी होर खेतीबाड़ी की गलबात भी करनी होंगी, जो कि असं खेतीबाड़ी के कन्न करते कई ऐसे कामकार होंगे है ना जी, जी कि असं दिखा लीचियां के अंबा के अमरूदा के बड़े सारे पौधे भी जो अपने बगीचे में लगाए होंगे है ना जी। कने एक होंगे चैरी, कने एक होंगे जी अह पलम हुई है ना जी। दिखा तो चैरी वास्ते ऐसा है कि चैरी जो असं जो ठंडा इलाका होंगे ना सब बड़ा अच्छा होंगे।
1: बिल्कुल कने दिखा चेहरी दिखने भी कने बड़ी छैल लगती लाल लाल। कने खाने तो मैं बोलती अलग ही मजा है। आ भी लाया था एक बूटा जो था भाई पर से टिकिया नहीं, पता नहीं भाई से कोई इलाके की गल होगी
0: जी
1: या कोई तिनी मौसम से नहीं किता से जिया खरीदया लाया पर से चलिया नहीं कुछ।
0: अच्छा
1: तो भाई ये चलो जिन्हें इलाकों में तो ये फल मैं बोलती होंगे से तो राजे कने इस जरा ये फल है चेहरी पलम हुई है इन्हें मांग भी बड़ी भरी है
0: जी। बिल्कुल कने दिखा चेहरी की खेती वास्तव जलवायु ठंडी होना चाहिए, एक मिट्टी जरा सा अच्छी तरह निकासी वाली दो मट मिट्टी होनी चाहिए अगर हाँ चेहरी की खेतीबाड़ी करनी है ना जी।
1: शायद ताई नहीं टिकिया हुआ है कि यहाँ पहा थोड़ा गर्म बूला पहा जरा गर्म हो जाता ना।
0: हाँ जी
1: तुहा गला ठंडा चाहिए इस वास्ते
0: ठंडा चाहिए क्योंकि दिखा जनवरी कने जरा जे फरवरी का महीना होंगे ना इस महीने में जलू ये लगाना पौंदी है ना जी। अगर असं चेहरी की खेती करनी है तो आने वाले जरा जो हम साल निकलना हाँ तो लास्ट दिसंबर के महीने में अं जरा चेहरी की खेतीबाड़ी कर सकते, लेकिन असं जानकारी जरा अगर पहले तो है ना तो बड़ी सारिया जरा चीज़ा सही ढंग ने जरा से निपटी जाए।
1: बिल्कुल कने मेरी एक बुब बूले पहा ग्राए का ना तो क्या लैना पे तिना दे जागतें दिखा अक्ल की थी जमीन थी तिना दी थोड़ी पथरीली तो तिनी बोले ना थू लगनी कणक ना थू लगना धान
0: तिनी
1: कोई सौ बूटा फल फलूटा का लाई दिया। कने बड़े भारी तिनी मेहनत भी की पैसे भी खर्चे कने हूँ जालू भी दिखना बोलता भाई मैं पैसे खर्चे बोलते ना तलू दो पैसे लगन तो चीजा की पीड़ भी होंगी।
0: बिल्कुल सही गल
1: संजा पैगा उठी सत ने पानी दया दा कने डंगर पशुओं भी बचा दा कने दिखा मैं बोलती भाई साले छे महीने दो साल फल फ्रूट खाने वाले हो जाने।
0: सही गल है दिखा छोटे पौधे जो पानी देना बड़ा जरूरी है, धुप जरा बड़ी तेज पौधी तो पौधे सुकी जाते ब्यागा संजा पानी जरूर दिया। कन्नै दिखा इस अगर हाँ चेहरी की खेती करनी इसकी गलबात करिए मिट्टी जरा जल निकासी वाली दो मिट्टी होना चाहिए, पौधा लगाने दसमें असं तुम दसी दिया कि सर्दियों दिनों लगता है कि अली तो अहम जरा तैयारी करनी होगी तो अली तो अहम जरा अपनी डायरी जरा जरूर लिखी लैनी
1: क्या क्या करना।
0: दूरी जरा पौधे से पौधे की दूरी रखनी असं 5 से 6 मीटर कने सिंचाई जरा गर्मियों करनी आवश्यकता के अनुसार जरूर तो मैं तो असं जरूर जरा सिंचाई करनी। फल उत्पादन जरा पौधा चो कने 5 साल बाद जरा फल देना शुरू करता है। गल करिए पलम की जिसे अहम आलू बुखारा भी बोलते है ना जी।
1: हाँ।
0: तो इस वास्ते जरा ऐसा भी ठंडी जलवायु ही सबसे बढ़िया होंगी कने मिट्टी जरा उपजाऊ 2 मिनट मिट्टी होना चाहिए कने पौधा लगाने का समय भी सही है जरा जी चेहरी का कने दूरी सही पौधे की दूरी जरा 5 से 5 मीटर की होना चाहिए कने प्रति पौधा जरा है सह गोबर की गली सड़ी खाद कने संतुलित उर्वरक जरा इस देने कने फल उत्पादन जरा भी 3-4 साल के बाद जरा हो जाता।
1: बिल्कुल कने गलांदे भेजिए ना फल वाले बूटे की समय समय पर छंटाई कटाई हुई है ना तो इससे कीड़िया कुड़ियां भी लगदियां रोग बीमारियां भी लगदियां। हाँ
0: बिल्कुल जी कहना फुल होने के टाइम में जरा सा पर्याप्त नमी जरा सा होना चाहिए है।
1: बिल्कुल
0: है ना जी। तो दिखा इस तरीके ने जरा असा खेतीबाड़ी कर सकते जी चेहरी की खेती है पलम की खेती है ना जी। करो और भी बड़ी सारी खेतीबाड़ी अगर हाँ करनी है तो सही तरीके ने करना पौंदा कने सही जानकारी जो होना सा बड़ा जरूरी
1: बड़ी जरूरी है। तो दिखा ट्याले पर जानकारियां भी हाँ दिंदे रहना है कने सौगी सौगी हाँ ट्याले पर लोग जनकारां दा भी जड़ा एक मेला लगाए रखना है।
0: बिल्कुल जी तो
1: शामिल कर दे एक लोकगीत
0: जी।

0: आप इतना आवारा भी तो।
1: भाई ये
0: हाँ
1: बच्चा कम से कम 4 महीने चाहिए था, तीन
0: अच्छा
1: महीने तो दूध पींदा ही ये बच्चा, तीन चार
0: हाँ
1: महीने फिर माँ का दूध नहीं मिलेगा तो फिर ये बच्चा ग्रोथ भी किन्या करेगा, बिना दूध तो गर्मी आई जानी अंदर,
0: हाँ जी हाँ।
1: फिर डॉक्टर को लेना तो
0: ओपरे
1: फिर
0: दूध नहीं है ना,
1: नहीं फर्क पौंदा ना।
0: मतलब ऐसा डाल ही खाना पैरू लगी पवे है ना।
1: भाई जी माँ का दूध ना 100 बीमारियां मारता है,
0: बिल्कुल हाँ जी हाँ ठीक लगे तो। हाँ जी यानी कि डाल ही खाना अगर हाँ था छेलू पैरू लगी पवे
1: हाँ जी हाँ जी
0: इससे बाद अगर हाँ चाह तो खरीद सकते हैं ना,
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो किन्ना किन्ने तक आई जाता अगर कोई लेना हुआ तो। हाँ ते
1: 4 महीने
0: या
1: तक बच्चा ऑटोमेटिक 10-12 हज़ार का हो जाता, 10-12 हज़ार का बच्चा हो जाता, 4 महीने का बच्चा 15-16 किलो तो हो जाता, तो
0: यानी कि ये
1: फिर
0: तो फिर वजन दे पैसे हुए
1: वजन दे
0: है
1: पैसे हो
0: ना,
1: ना।
0: बाकी नहीं हुए है
1: इस
0: ना।
1: तो छोटा बच्चा कोई पाले भी है ना तो पढ़ना नहीं, उन टाइम ज्यादा लगना, जिन्ना बच्चा बन गया होगा ना बनी नहीं होगा थोड़ा, तो फिर वो अगे ग्रोथ ज्यादा होनी होगी, जो माँ का दूध देने मिल गया तो फिर बच्चे ने चलना भी कहीं।
0: जी तो हाँ जल अपना जी जल भी तो हाँ अपना कोई जिया बकरी बेची है या छेलू बेचे या सही है चाहता बार का अंदाजा इं लगाते
1: लगी
0: अंदा
1: जाता बाहर
0: कि
1: तक
0: कोई तोलने तालने का भी है कुछ। हाँ
1: नहीं लगी जाता बाहर का अंदाजा ना पता लगी जाता। अहाँ भी है ना फोना भी दिखते रहने ना,
0: हाँ
1: तो फोना भी दिखते रहने तो फोना दे बड़े बड़े फार्मा बिच सब
0: हाँ
1: मीटर दे कन्ना नाप दे, छेलू लंबाई चौड़ाई नापी के
0: अच्छा
1: ना ना
0: फीते ना।
1: हाँ फीते ना पूरा पूरा दस देना, तो एक
0: हाँ
1: दो बार अही भी नापिया तो पूरा पूरा ही आंदा।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: यानी कि लंबाई ना अपनी की हाइट
1: आ लंबाई नापनी ते पिछले हिस्से की गोलाई
0: अच्छा
1: पूरा पूरा
0: यानी
1: ही
0: कि
1: आंदा।
0: फीता मारी की है
1: हाँ
0: ना।
1: जी हाँ जी
0: हाँ दिखा ये भी तो हाँ बड़ी अच्छी गल जेड़ी शायद
1: फिर
0: दसी है।
1: पूरा पूरा आई जाता।
0: हाँ कई बार नहीं भी पता लगता ठगी भी आंदे
1: हाँ जी हाँ
0: कई है
1: जी
0: ना, नहीं कुनी आके दो ठार किट्ठे बेचे ना चार कई बार मजबूरी बिच बेचना भी पौंदे है
1: हाँ
0: ना,
1: जी
0: पैसे धेले दी चलो तंगी आई जाती है जिन्हें किसा ठगो नहीं तो सभी इं जागरूक हो जाए तो ना जो जरा सब पूरा पता लगी जाना ना।
1: हाँ जी हाँ जी फीता मारना ना फीते दे पूरा आ जाता, 1 किलो 2 किलो वजन घटता वधदा है
0: अच्छा
1: बाकी नहीं वधदा। हाँ
0: अच्छा
1: जी
0: जी अश्विनी जी अहां दे जेड़े नौजवान युवा साथी है ना उन जो तो हाँ जेड़ा सा क्या संदेश देना चाहेंगे कि सभी किया अपना काम कार करेगी अपना रोजगार चलाई पान।
1: भाई जी मैं तो यो बोलना कि मैं भी बाहर नौकरी की,
0: अच्छा
1: 15-16 साल नौकरी की बाहर, मशीन चलाता हमें जेसीबी,
0: अच्छा
1: फिर दूजे वाले काम करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, अपना घर बंदा काम करे ना
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: उस काम के कन्ने साढ़े घर दे भी बिजी हो जाते,
0: हाँ जी
1: बच्चे बिजी, जिन्ने च 5 मैंबर तो 5 मैंबर हेल्प कर दे एक दूजे की,
0: हाँ जी
1: तो काम वही करो जरा घर बैठ के हो जाए मिल के, तो काफी फायदा मेरे को दिखाई दिया ना,
0: हाँ जी
1: घर में बैठ के खेती बाड़ी करनी वो अच्छा है बाहर भटकने से
0: हाँ जी
1: फैक्ट्रियों में लगने से, सबसे अच्छा है घर में काम करना।
0: अश्विनी जी अपने खेती बाड़ी के अनुभव तो हाँ अहाँ करना साझा किए तो हाँ दा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी तो दिखा किसान साथियों कम्मे की गल तुहां वल हाँ फिर पजाई है कने उम्मीद करनी है बे जिन्हें किसाना भेड़ बकरियां रखनियां घरे तिना जरूर इन्हों गलों का ध्यान रखना कने जी जी इन्हें दसिया भी कि दिखा शौक ते ही सह कुतु दे कुतु बकरी पालन पजाई था ना।
1: जी बिल्कुल हाँ, कने दिखा सनू ताई मैं तुझे एक गल दसना भूली गया
2: सह
1: है,
2: क्या
1: टियाले दोने से पहले मिंजू पे आ चक्कर थोड़े दिया ना
2: चक्कर पे ही पे पुनिया
1: बुइया पौने वाला था, मैं कहना फिर मैं जरा जाई उन दिन अज वेला हाँ मैं
2: अच्छा
1: कने मैं गया चेक कराना, कने थोड़े देर टेस्ट होया मेरा, कने मिंजू बोलिया भाईया बोलिया तेरा तो खून ही बड़े बार ज्यादा हुई है, बोलिया
2: बे मता खून हो
1: मता
2: तो
1: खून हुई है
2: बड़ी
1: बोलिया
2: छैल गल पे मता खून होगा
1: हाँ
2: था
1: बोले तो खून पता हुई है, तो मैंने तो हाँ इं करा मैंने ले लिया फिर, कहना भाई तेना मैं भी रक्तदान करे ना अज, कहना फिर तेना दस्या भी आई आ बोलिया अज जेड़ा ऐसा है 14 जून है, कहना अज बोलिया असा विश्व रक्तदान दिवस मनाते बोलिया।
2: नहीं तो एक गल दस जो भाई वे खून ने तो दे ताए तो इस तुझ कमजोरी नहीं आनी।
1: नहीं कमजोरी कमजोरी तो कोई नहीं आई ना, कहना
2: हाँ
1: जी कमजोरी कमजोरी कुछ नहीं होंगी, कहना बधिया बोलिया, कहना खून अगर बदा बोलिया तो खून दान करते रहा बोलिया, कहना बधिया रहा स्वास्थ्य भी ठीक
2: फिर खून
1: रहा
2: तरोताजा हो जाना दोबारा।
1: तरोताजा हो जाता, फिर दोबारा से
2: हाँ
1: जरा शरीर खून बनाना शुरू कर ना
2: जे
1: जी
2: मैं जहाँ तो मेरा भी ले लेंगे।
1: बिल्कुल, पहले थोड़ा तेना देखना बार कितना करी है, बारे हिसाब ने
2: हाँ
1: देखना भी खून कितना करी है, अगर 50 कने 45 किलो से घट होया तो भी थोड़ा तेना खून नहीं लेना
2: तो मैं तो वही हूँ टोकू पाने
1: हाँ
2: वाली मैं तो बोले 45 तो घट ही होनी
1: हाँ
2: है
1: थोड़ा देता देना जूसे का पैकेट कने एक देता केला खाने हो
2: हैं
1: है ना
2: दिखा
1: जी
2: पे
1: हाँ
2: कन्ने खान पीन भी कन्ने खून भी ले गया।
1: तरोताजा हो मैंने सीधा टियाले चले आंदा मैंने मुझे तो पता लगा मैं खून दे गया है ना जी,
2: अच्छा
1: कने दिखा अज भी फ्री भी जानकारी मिली कि अज जरा ऐसा है रक्तदान दिवस है, कने अज के दिन जरा है मतलब एक आदमी था जिन्नी जी मतलब ए पॉजिटिव कने बी कने ओ ब्लड ग्रुपां दी खोज कीती ही है ना जी, तो तिन्हां दी जयंती हुंदी अज
2: गलाने दा मतलब एक
1: हाँ
2: खरे भरे दिन है तू हाँ जो खून दान करी क्या
1: हाँ
2: है।
1: बिल्कुल जी, तो जिन्हें खून जिन्हें ब्लड ग्रुपां दी तिन्हां खोज कीती ही तिन्हां दा जन्मदिन है, तो अज के दिन जरा सा दिवस जरा सा मनाया जाता, कने इस विच जरा सा खून देने वास्ते जागरूक किया जाता
2: देखा
1: कुछ
2: बड़ी
1: लोग
2: अच्छी गल है वे
1: हाँ
2: बोलते हॉस्पिटलों च कई दिखने कई परेशान होए होंगे भी खून नहीं मिला दा खून नहीं मिला दा तो जी तुम सही है या कोई और हाँ तुम कोई भी नौजवान हाँ खास कर युवा
1: हाँ
2: जे तुसें लगा दा भी तुस खून दान करी सकदे न
1: बिल्कुल
2: तो जियां जोधा भाई ग्रा दे पेई इसते कोई फर्क नहीं पौना तो जरूर करा कने ताकि दिखा अस्पतालां विच खून जे तुहांदा कुसी कम्या ही हैगा ना
1: बिल्कुल
2: तो मैं बोलदी तिना भी तुहां जो चार दिन खरा ही गलाना दुआ देनी है तुहां जो देना
1: सही गल है तो जरूर जरा ऐसा असा इस दिन जो जरा ऐसा मना देन
2: बिल्कुल
1: कने गां असा लोकां जो भी जरा ऐसा प्रेरित करना रक्तदान वास्ते
2: बिल्कुल
1: कने किसान साथी इसते बाद जरा ऐसा लोक गीते दा समय होया तो वह सुनदे ये लोक गीते।

0: किसान साथियों इसी लोकगीत कन्ने कार्यक्रम का समय संपन्न होता जाते जाते दसी दे कार्यक्रम विच तकनीकी सहयोग रहा विकास पठानिया दा कन्ने कार्यक्रम प्रस्तुति जतेंद्र पाल सिंह
1: जी
0: तो उन्हां सा दोनों जो दया अनुमति

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं के लिए विशेषतः कार्यक्रम मिंजरा। ये रहेगा आज सजीव फोनिन। हमारी सभी श्रोताओं से ये करबद्ध प्रार्थना रहेगी कि इसमें सिर्फ महिला श्रोता ही फोन करें।

कार्यक्रम मिंजरा विच स्वागत है भैनों तुहांदी अपनी सखी स्टूडियो विच बैठी हुआ है लक्ष्मी कने तुहां मिंजो ने गलबात करी सकदे तुहां सारियां पता है भी ये कार्यक्रम अहां दियां अपनियां भैणां दा अहां दियां अपनियां बिटियां दा कोई भी महिला अहां ने इस कार्यक्रम विच जुड़ी सकदी इस वास्ते तुहां इत्थों दा नंबर डायल करना पौना 0182-224-392 कने बिल्कुल भी देर नहीं करनी कने जल्दी ते जल्दी तुहां फोन मिला ताकि अहां तुहां ने जुड़ी सकन कने दिखा बई अजकल तो ग्रां विच वैसे भी बड़ी चहल पहल है लोग खेतीबाड़ी दे कम्मां कारां विच तां जुड़े हुए हैं सौगी सौगी से अहां दे कार्यक्रम भी सुनदे कने अपने जिहड़े होर तिन्हां दे खेतीबाड़ी ते इलावा कम हैं तिन्हें भी सही समय पर निपटा दे करा दे कने कन्ने कन्ने अपने घर परिवार जो भी दिखा दे तो जलू तक अहां दियां सखियां अहां दियां भैणां कार्यक्रम नाल जुड़दियां ने फोन कर दियां ने तालू तक अहां तिने सुनानी है एक लोक झनकार।

0: हेलो। हाँ जी हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोला दे?
1: नमस्कार मैडम जी। ये
0: हाँ जी नमस्ते जी।
1: किरण बोला है मैडम जी, कुठेड़ा गांव से। हाँ
0: अच्छा जी, किरण जी स्वागत है तुम्हारा कार्यक्रम विच।
1: जी, काम
0: और सुना जी, क्या काम कार लगाए हुन?
1: कार मैडम जी, कल बरखा पे गया, खेती बाड़ी है काम करना, छलियां छलियां बाड़ियां ने।
0: दिखा लोग बरखा ते तंग होंदे कने जेड़े हंदे किसान हैं सब बरखा दिखी करी खुश होंदे ना
1: समझो बड़ी खुश
0: जी। जी
1: पक्का तो क्या होना।
0: जी
1: हाँ जी,
0: और दिखा संजय दे बेले ता रोटी रसोई दा काम लगे होंदा, सोगी सोगी आंदे कार्यक्रम भी सुनदे होने,
1: बड़ा काम होंदा, रोटी के रसोई दा, डंगरे बछुमा दा। हाँ
0: कन्ने आंदे कार्यक्रम ना भी जुड़ी रहंदे ना।
1: जी, हाँ जी, थोड़ा कार्यक्रम हाँ लगातार ही सुनते।
0: तो दिखा तुहां फोन भी लगी है, कन्ने बड़ी खुशी दी गल है तुहां आहां दे कार्यक्रम विच फोन कीता। तुहां ये सुनाना है इस ते बाद हाँ एक तुहां दे पसंदा दा लोक गीत जी।
1: ठीक है मैडम
0: जी
1: जी।
0: धन्यवाद किरण जी।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
1: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
2: जी तो दिखा भाई अहाँ फोन का इंतजार करा दिन ताकि अहाँ दिया सखियां भैणा के कार्यक्रम मिंजरा ने जुड़न। कने जलू तक फोन आंदा है उतनी देर अहाँ अपनिया सखियां भैणा जिहड़े अहाँ सुना दे इस वक्त कार्यक्रम के माध्यम से, तिना ने भी अहाँ कुछ ना कुछ गलबात या जानकारी सांझे करते रहना है। दिखा अज खास करी अहाँ हर कार्यक्रम विच गल करा दिन रक्तदान दिवस की। तो अज 14 जून जो पूरे विश्व विच रक्तदान दिवस बड़े जोरों शोरों ने मनाया, कने बड़े युवा बड़े साथियां इस विच बड़ी चढ़ी के भाग भी लिया। कने जरूरी नहीं है कि अहां दे पाई अहां दे युवा ही रक्तदान कर दे, अहां दियां भैणां अहां दियां जिहड़ियां छोटियां बच्चियां ने जिहड़ियां मतलब युवा ने सभी इस विच बड़ी चढ़ी के भाग लैंदियां। कने लैणा भी चाहिए, अगर कोई अहां दी चीज़ कुसी दे कम्मे ओआ दी है तां मैं बोलदी भई जरूर इस विच अपना योगदान देना चाहिए। कने एक गल ये भी है भई चलो मर्द भाई तो अहां दे रक्तदान करते हैं, पर अहां दी जिहड़ियां भैणां ने या अहां दियां कुड़ियां ने जो जिहड़ियां रक्तदान करदियां ने तिन्हां नूं वैसे तो पता है कि तू दसी भी दिंदे सै रक्तदान दे समय कि तुहां क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि महिला भैणां जो रक्त दी बहुत ज़्यादा जरूरत हुंदी तां तिन्हां नूं अपने खान पान का भी बिल्कुल ध्यान रखना पौना कि रक्तदान करना तो चलो अच्छी गल है, सै रक्त द्वारा फिर पूरा हो जाना, लेकिन तिस दे कन्ने करा करी सै अपना खान पान अच्छा रखी करी तिसा कमी जो पूरा करी सकती हाँ। इस वास्ती तुहां आयरन, विटामिन सी होई है जियां फोलिक एसिड होई है, विटामिन B12 होई है, इन्हां जिहड़े भरपूर खाद्य पदार्थ हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, तिन्हां दा सेवन सै ज़्यादा तो ज़्यादा करन ताकि अहां दियां महिला भैणां जो छोटियां कुड़ियां जो युवा किशोरियां जो तिन्हां जो अगर रक्त की कमी महसूस होंदी है तो सै थोड़ी पूरी हो सके। गल करिए खून बधाने वाली सब्जियां, तो दिखा पालक तो मैं बोलती हाँ खाते ही, खास करी ग्रां की गल करिए अहां दियां भैणां हां दे भाई आपू खेती बाड़ी विच इन्हां सब्जियां जो उगांदे आपू भी खा दे, कने जलू बाहर से कुथी बेच देन तो 4 पैसे भी कमा देन। तो पालक विच आयरन कने फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा हुंदा, अगर इसे अहां अपने खान पान विच शामिल करन तां जिहड़ी रक्त की कमी है तीसरे यहाँ काफ़ी हद तक पूरी करी सकते। दूआ है चुकंदर, चुकंदर की गल तां करा दे भी एक जड़ा बिल्कुल खून बधाने वास्ती बड़ा अच्छा मतलब तुहां समझी सकते कि तुहां अगर इसे अपने खाने विच शामिल कर गए तो यह भी खून बधाने विच मदद करदा, खास करी जिहड़े अहां दे छोटे बच्चियां ने स्कूलों जा दियां। अजकल बच्चे खाने पीने का थोड़ा बोलते ना करी आते लापरवाही, तो तिन्हें दियाँ जिहड़ियां मम्मियां ने सुना दियाँ हुण कार्यक्रम तो तिन्हें स्कूले दे टिफिनां विच अगर सर कुछ भी पांदियां ने खाने बनाने वास्ती तो तिन्हां विच कोशिश करा भी तुहां कुसी ना कुसी रूप विच चुकंदर भी शामिल करी दिया। कच्चा चुकंदर अगर बच्चा पसंद नहीं करता है तो तुसां कोशिश करा ती सो तिन्हां कोई जियां सै कुछ ऐसा खाने वाली कोई चीज़ बनाई दिया जिस विच चुकंदर दा रस भी शामिल हो, चाहे तुहां आटे गुनने विच इस रस जो इस्तेमाल करी लिया, चाहे तुहां कुसी और रूप विच भी, ताकि बच्चे दिखा जलू रंगीन कोई चीज़ा दिखते तो तिन्हां दा मन वैसे ही खाने करी पौंदा। तां दियां भैणा ये चीज़ा भी शामिल करी के खूने की कमी छोटियां बच्चियां जिहड़ियां जवान हो दियां तिन्हां विच काफ़ी सुधार करी सकदियां। इस दे बाद जियां दिखा ब्रोकली है, शक्करकंदियां ने, मेथी है, बथुआ है, कने होर भी कई सब्जियां फल हैं तिन्हें तुहां शामिल करी सकदे। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी।
3: हेलो,
2: हाँ जी कौन बोला दे जी?
3: मन्नत।
2: अच्छा मन्नत जी कुतुते बोला दे? अच्छा दिखा तुहां दे मम्मी तुहां पचा ते सिखा देन। खरी गल है दिखा, छोटे बच्चे कई बारी फोने च आहने गल करने तियां उत्सुक होंदे, पर थोड़ी झिझक होंदी, शर्म भी होंदी ना।
3: हां जी।
2: चलो कैसा लगा तुहां फोने च आहां करने गल करी के?
3: अच्छा लगदा।
2: अच्छा ता क्या करे इस वक्त तुहां?
3: प्रोग्राम सुना तुहाडे।
2: कदे लगदे प्रोग्राम? धन्यवाद कने आगे भी कार्यक्रम सुन दे रहे।
3: थैंक यू मैम जी।
2: धन्यवाद जी।

0: एसयूवी का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa. कार्यक्रम मिंजरां च एक बार फिर स्वागत है। कने कुछ पैण ऐसा जिन्हें कामा कारा विच तां तू ध्यान होना तो तिना शायद अपना रेडियो सैट हले तक ऑन लेट किया हो तो तिने दसी दे भी कार्यक्रम मिंजरां विच तुहां अहाने जुड़ी सकते। नंबर है 0182-224-392। कने अज अह अपन भैणा ने सीधी गलबात करा दे तिना दे फोना सुना दे कने पुछा दे तिना क्या काम कार लगाए उन्हें। पर जलू तक फोन आता है तलू तक हाँ फिर अपन गल्लां बातां जानकारियां तिना ने सांझियां करा दे। तो दिखा भैनो कल सगरां दे कने बड़ा भरिया दिन होंदा। खास करी ग्रां दी गल करिए कने हिमाचल दी तां इत्थू ए जिहड़ी सगरां दे संक्रांति ऐ सो बड़े खुशियां ने बड़े हर्षो उल्लास ने मनाया जांदा। कने वैसे तो साले विच 12 सगरांदी होंदी पर जिहड़ियां 3 खास हन जिहां मकर संक्रांति होंगी, सैर संक्रांति होंगी, कने एक जड़ी है जून दी। ता हर त्यौहार दा हर चीज़ दा अपना अलग अलग महत्व है। कने इन्हें अगर हम मनाएंगे तो अगली पीढ़ी जो भी हाँ थोड़ा बहुत दसी सकते भी ये भी अहां दे जीवन दा एक हिस्सा है न। कने जे इन्हां चीज़ां अहां पूरी तरह भुलियांगे तो मैं बोलदी गां तां फिर बड़ा वक्त खराब होवा दा। तां थोड़ा थोड़ा हायों दसदे रहना चाहिए, छोटी छोटियां गल्लां बच्चों ने भी नो जिहड़ी युवा पीढ़ी है तिन्हां ने भी सांझियां करदे रहना चाहिए। लगता है कुणी फोन तो अहां दी भैणा मिलाया था पर शायद नहीं मिली पाया। कने उम्मीद करनी है भी दोबारा जी तिन्हां फोन मिलाना है तो जरूर तिन्हां दी गलबात अहां ने होनी है। हैलो
4: हेलो
3: हेलो नमस्कार जी।
4: नमस्कार
3: जी। नमस्कार, नाम दसने जी अपना।

0: हां जी
1: रीता।
0: रीता जी, गल करा। अगर तुहां फोन मिलाया तां गल करा कर, जो कि समय दी कमी रहंदी, फिर तुहां बोलना कि शायद गल हां दी पूरी नहीं होई, आधी गल कटोई। तां चलो, जेड़ा भी वक्त मिलदा तिस दा पूरा भरपूर इस्तेमाल करना चाहिदा ना।
1: हां जी
0: कार्यक्रम च फोन कीता तुहां, कदे लगा जी?
1: बड़ा बढ़िया लगा।
0: अच्छा, तां इस वक्त तुहां घर घ्रिस्थी च कुछ ना कुछ काम लगाया होना,
1: नहीं हां
0: बेले ना।
1: जी हां
0: अच्छा, कार्यक्रम सुना दे। हाँ दे ना।
1: जी हां जी
0: अच्छा
1: गाड़ी च है ना। हाँ
0: अच्छा
1: सब
0: गड्डी चला दे, कोई नहीं। दिखा, आ बड़ी खुशी होंदी पई घरां विच, ग्रां विच तां लोक हाँ दे कार्यक्रम सुनदे ही सौगी सौगी। अगर सह कोई गड्डियां विच भी चले उन, तां भी सह हाँ दे इस कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम है तिन्हां नसे जुड़ी रहिंदे। कने अपना जेड़ा बोलदे इक मनोरंजन भी होंदा रहिंदा सौगी। हाँ, पता लगदा भी गड्डिया विच भी कार्यक्रम सुना दे, तां हाँ भी खुशी होंदी।
1: हां जी मैं वो सुन रही थी पूरा कार्यक्रम, तो
0: जी,
1: उसमें वो चुकंदर वाली बात आई थी, तो
0: हाँ
1: फिर
0: जी, हाँ जी, बिल्कुल। कने दिखा,
1: कंदर
0: हाँ जी, आज ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट हुआ था हर जगह, था हाँ भी सोचे भी चलो थोड़ा खूनने दी वृद्धि वाली गल कीती जाए ना।
1: हां जी तो मेरे को पूछना था, अगर चुकंदर हम गूंद के वो डाल देंगे तो उसका रस का वो खत्म नहीं हो जाएगा?
0: नहीं जी, तुहां दिखा चुकंदर मिक्सी विच तुहां ग्राइंड करी के तेदा रस निकाली लिया ना, फिर आटे विच
1: हां जी
0: आटा तिसने ही गुनना तुहां।
1: ता फिर चालू वहां पकाना, ता
0: हाँ जी,
1: रस ता खराब नहीं हो जाना?
0: घर रस नहीं होंदा जी खराब, तलू सहित आटे विच ही ऐसा था, बाहर नहीं गया कुछ भी।
1: अच्छा, ठीक है
0: कने
1: फिर,
0: बाकी जानकारी दिखा,
1: धन्यवाद।
0: अजकल फोना च भी अखबारां च भी, तुहां ज्यादा जानकारी होर ले सकदे। पर अगर हाँ जी तो दस्या तो तुहां जरूर कोशिश करने हो। अगर तुम्हें लगता है इसते वाकई तिनी बिच ही रहना आटे विच, तिनी तिसते बाहर नहीं जाना ना।
1: हां जी धन्यवाद।
0: जी, कार्यक्रम च फोन किता, धन्यवाद जी। तुम्हें सुना देने एक मिठा दिया लोक गीत।
1: ओके।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा हम आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं अब पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की

0: वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव परिवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव परिवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, विशाल प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां स्लोवाक शैली में पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिसमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है। 3 अन्य लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय नौसैनिक पोत शारदा ने श्रीलंका के कोलंबो की यात्रा पूरी कर ली है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। यात्रा के दौरान श्रीलंका की नौसेना के साथ कई पेशेवर प्रशिक्षण और खेल संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज और किशोरी कुमकुम मोहन ने स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओ ये जिन और किम जे डेओ को हराया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. The news read by Lalima Aneja Dang. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron are holding delegation-level talks at historic Villa Kyrillos at Nice in France. The discussions between two sides focus on expanding the special global strategic partnership between the two countries, covering defence, technology and trade. The two leaders also interacted during a walk and talk session at Villa Kyrillos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palais des Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event, being held under the India-France Year of Innovation, brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स.
0: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India. Following the inauguration, Prime Minister Modi and President Macron visited the exhibition and interacted with startup founders, researchers and investors participating in the event. Union Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said the growth is driven by policy reforms, growing private participation and a rapidly expanding innovation ecosystem. Dr. Singh said the transformation of India's space sector reflects a larger change taking place across the country, where science and technology have moved beyond laboratories to become part of the national consciousness. He said one of the most significant achievements of recent years has been the growing connect between science and society. The Indian Embassy in Oman has said that the Indian-flagged mechanized sailing vessel Virat 1 suffered an engine failure off the coast of Oman. The vessel was carrying 14 Indians. In a social media post, the embassy said that 11 crew members have been rescued and taken on board another vessel, MV Jabal Ali 9. Efforts are underway to rescue the remaining three crew members. Rebel TMC MPs met BJP leader and Union Minister Bhupendra Yadav in the national capital today amid ongoing tussle in the Trinamool Congress. The TMC leaders include Kakoli Ghosh, Sayoni Ghosh, Mala Roy and Satabdi Roy. They are expected to meet Lok Sabha Speaker Om Birla tomorrow. Meanwhile, TMC MPs Kirti Azad and Sagarika Ghosh met the Lok Sabha Speaker at his residence and submitted a letter to him. Later, talking to media, Mr. Azad said he told the Speaker that the rebel MPs have no legitimacy and the manner in which they are acting is unconstitutional. In ICC Women's T20 World Cup, India were 8-1 in 1.2 overs against arch rivals Pakistan in a Group A match at Edgbaston in Birmingham when reports last came in. Earlier, India won the toss and opted to bat first. In the FIFA World Cup 2026, Germany will take on Curacao in the Group E clash at Houston in the United States tonight. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. In another fixture, the Netherlands will face Japan in a Group F encounter at Dallas Stadium. The match will kick off at 1:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
2: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:10 हुए हैं। अब विशेष कार्यक्रम सशक्त भारत आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
3: स्वास्थ्य के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री।
4: डिलीवरी ऑफ द ओवर ऑन टू द बॉडी लाइन डिलीवर्ड ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ गुड लेंथ अलाउज स्मृति टू पुल इट टुवर्ड्स द लॉन्ग लेग फील्डर वेयर सादिया इकबाल मूव्स टुवर्ड्स हर लेफ्ट पिक्स इट अप हर्ल्स इट बैक टू द विकेट कीपर व्हाइलस्ट ऑल दैट इज डन अ सिंगल हैज बीन टेकन टू ओवर्स डन 10-1 आर टीम इंडिया।
5: तो कुल मिलाकर इस ओवर के दौरान मात्र 3 ही रन आए और निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ से एक बढ़िया
6: जो इस पर फोकस किया गया उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर बहुत स्वागत आपका।
7: धन्यवाद।
6: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
7: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
6: जी।
7: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
6: जी।
7: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
6: जी।
7: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में 3-4 या 2 या 3 दिन का कैंप था मुंबई में
6: जी।
7: तो हमारे युवा लगभग 30-40 या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
6: जी,
7: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसे अब स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
6: जी,
7: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिलाकर के हमारे यहां सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइम लाइन। हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
6: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है, ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
7: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है, The vindication of Homi Baba's dream has happened through Prime Minister Modi. और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचें तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरंदेश व्यक्ति थे हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए
6: बिल्कुल
7: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक थ्री स्टेज प्रोग्राम दिया जो तीन स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का जैसे आम

0: जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी।
0: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे
1: जी,
0: पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233, जो एनरिच नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए जहां प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी हैं। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स हैं जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इंटू एंटरप्रेन्योरशिप, तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहा तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसे उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है, वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहाँ पर 1970 के दशक में पहुंचे, 80 के। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 verticals हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली
1: जी।
0: यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर लें और हम उससे आगे बढ़ जाएं।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं दो चार हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते

0: लेकिन पता नहीं चलता क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा मिले।
1: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रिसाइकिलिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें अभी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
0: जी।
1: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं। हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी वेन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए ये उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
0: जी।
1: और उसमें हम अलग अलग चरणों में उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज हैं उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
0: जी।
1: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने ईजाद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सभी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जाता था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई हैं, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। यहाँ पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
0: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए।
1: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
0: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग-अलग कंपनी।
1: निश्चय, अब देखिए आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले ही कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट, लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टूडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले। 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही हैं, इंडोनेशिया जा रही हैं और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक
0: जी।
1: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
0: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो?
1: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
0: जी
1: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ यह है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है, एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं। और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
0: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
1: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग हैं, AI कंप्यूटिंग, AI डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
0: जी,
1: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है तो खतरे का बायस तो ही है, लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है। तो समुद्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा वहां 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगी।
0: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
1: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
0: जी।
1: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है। भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर। तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. Has India then cracked the code on execution, developed the administrative capacity it lacked? To answer all this and more, we have with us today Ashish Dhawan. As founder and CEO of the Convergence Foundation, Ashish is someone who has spent years working at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and helping develop state capacity, and hence a perfect person for this conversation. Ashish, thank you so much for speaking.
5: Thank you for having me.
4: Ashish, I wanted to begin with your work, which is basically at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and strengthening state capacity. Based on this experience, has India finally begun to crack the code on execution, or what you often say, acquire the transnational muscle?
5: I think we have. As you pointed out, I think India is admired in the global south for the scale at which we have managed to achieve things. As you mentioned, with say something like Jan Dhan, what we've done is amazing. Or even if you look at our capital markets, when we changed the architecture to bring in SIP, no other emerging market, you know, has the scale at which and of course rolling out our, whether it's roads, rural roads, Saubhagya for electricity, Jal Jeevan. So I think in mission mode we have achieved a lot with our hard infrastructure. I do think soft infrastructure is more challenging and we need to be more patient. But I believe that there has been a step up with the use of technology, with the use of mission mode, with the focus on KPIs, with the state generally developing certain muscle, this translational muscle, that I do think that it's been a game changer in the last decade.
4: Ashish, you know, you mentioned SIPs is so true because now almost every pin code is covered by the State Bank of India Mutual Fund. So that tells you how big the footprint has become. Based on all these examples that we discussed, what is your sense about how India has grown capacity of the state or the administrative capacity?
5: Yeah, so obviously when people look at state, they tend to think of the elite services. And I think that's fine. But really what we need to look at, in my mind, is the people at mid-level and lower levels in state capacity. So if we take something like education, it has the largest base of government employees because school system is very large. We have 10.5 lakh government schools. And the reason why it's harder than, say, doing rural roads or rural electricity, at the front line, we have almost 60 lakh government school teachers. And nothing will really change in terms of outcomes unless the classroom transaction changes. So I think the hard part of this soft infrastructure is that you have to work through people. And we don't recruit that many more teachers anymore because we have achieved a fairly good pupil-teacher ratio. With our demographics now, you know, yes, we are growing a little bit in secondary school as enrollment increases, but in primary school, actually, enrollment peaked a while back. It's actually declining now as the number of births has come down over the last few years. So I think we will have to do whatever we would do with the current stock of people. The churn rate is only about 3-4%. So it's not like you can get a new breed of people. With the current set of people, how do we achieve better outcomes? That is the challenge. And I think that's a slow process. So unlike building a road, which can happen faster, I think we have to realize that this is a slow moving indicator. It'll take 10 years, 15 years to achieve the outcomes. But with a mission like Nipun Bharat, I have seen that this has already started to lead to changes on the ground in terms of teachers realizing the importance of foundational learning, teachers starting to use daily lesson plans, teachers starting to do a weekly formative assessment, teachers starting to identify the bottom half of children and see what remediation can be done to help them improve, teachers understanding the goals very clearly. I think these are big changes we have seen in the last 5 years. But even as we rolled them out in states like Uttar Pradesh, we did a great job. You found even after 5 years, there's only about 60-70% compliance because not every teacher will come on board. You know, it's a bell curve. You get the early adopters, then the others do it, then some don't. So it's hard work and you have to be patient. And so I'm very glad that government now is looking at Nipun Bharat 2.0 because government has realized that, you know, in 5 years, it's not like we're going to solve the problem. It'll need 15 years of hard work to actually make this happen at scale. So because human beings are involved at the last mile, education, health, livelihood, these are much more complicated than the hard infrastructure.
4: In fact, your foundation has worked very closely on this Nipun policy. So tell me, based on that experience, is this replicable across the country? Uttar Pradesh is the first test case for this.
5: Yes. So actually in Uttar Pradesh, when we went meet the chief minister, he immediately said Bunyadi Shiksha is important. They already had something called Kayakalp, which was to improve the school infrastructure. So they were doing a good job. But then they started something called Mission Prerna. This is pre-COVID. And Chief Minister himself agreed to certain goals, very clear goals on oral reading fluency. Children need to read 35 words per minute in class 2 and 60 words per minute in class 3. Very clear goal was communicated to all teachers. Chief Minister took this document and made him line up all the officials. And unhone kaha ki hum shapath lete hain, you know, we will achieve these goals. So he got the whole system aligned, put a very good officer for Mission Prerna, who was there for 4 years. So there was stability. And, you know, they have seen dramatic improvement. If you look at Parakh, which is government runs National Achievement Survey, or you look at even ASAR, which is a third party survey, Uttar Pradesh is the most improved state and at very large scale. So they started earlier. Then Madhya Pradesh launched Mission Ankur, Haryana launched, and then after NEP, the Honorable Prime Minister decided to make it a national mission and launched Nipun Bharat. We then started to support 11 states with this mission. And as I said, we've seen the change is gradual, but we have seen real change on the ground with Nipun Bharat and the improvement. Our foundational literacy was so bad. You know, if you look at it 6 years ago, World Bank publishes this learning poverty report in terms of percentage of children at the end of class 5 who can't read class 3 text. And basically, if you've missed the bus, you missed it permanent, because the curriculum by then assumes that you have to read. So 55%. And sub-Saharan Africa is much worse. But if you looked at countries like China, they were at 15%. Developed world is in single digits. So India has a long journey. And normally countries are improving at the rate of 0.7 percentage points per year. So if India had to follow the normal trajectory, even in a decade, we would get from 55 to 48% of children. I think because we started Nipun Bharat, we are attempting to bend the curve. It's called bending the Preston curve. And I think we can do it much faster. I believe we'll go from 55 down to 25. It may take 15 years, but it'll be much faster than any other country has done it before.
4: The final thought that based on the last 12 years, based on your own experiences, very short response as to how do you, is the cup half full or half empty?
5: I'm in the half full camp. I think that we are poised to do great things as a country, both economically and also on the development side. I can tell you that when I travel across the world, I mean, some countries already have done a much better job. They started earlier. Like China on human development has, and economically also they did better. Vietnam, I think, really prioritized human development early on, much before India did. So we may have started doing it more recently, but they have been doing it for 30, 40, 50 years. I think the communist system brought this focus on basic health, basic education very early on. So I think that we've started on the journey. As I said, the hard infrastructure part, we have the formula. On the soft infrastructure part, we are developing the formula, and we need the patience. I think with slow-moving indicators, nobody has taken an education system from poor to fair to good to great and lagged a chalang and done it even in one decade. It's a journey. Even from poor to fair is a decade, 15-year journey. Then you get to the fair level and you go to good. That's another 10, 15-year journey. Even in Singapore, when they went from good to great, was a 20-year journey. So I think in this, the problem is political cycles are shorter. So you need leaders who have the confidence to back something for a longer period of time, because you may not see immediate wins like you see when a road is constructed or when water comes to a home. You do see certain, so what we also realize, because obviously politicians want to show a win, like say with reading is a very hard task. So to improve reading at scale where every child can read with meaning will be impossible in 5 years. But we see that, look, about 30% of children couldn't even read letters. Can't we solve that problem in 5 years? Of course we can. We can do that. Can we at least show that the child can start to read basic text in front of their parent a little bit better than they were doing before? Of course we can. So I think we have to pick a ladder of metrics, I call it. The eventual goal may be hard, but then there are these things behind, you know, which are easier to achieve and you can show. And they are, it's part of the ladder of progress. So I think that's very important in order to keep the political salience high behind these issues.
4: Unfortunately, we are out of time. Thank you so much for speaking to us, Ashish.
5: My pleasure. Thank you for having me.
3: In the special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you were listening to an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer was Anil Padmanabhan, journalist. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
6: ये
7: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:45 हुए हैं। आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1765 हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ बड़ा सुधार। प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधान व उप प्रधान कल लेंगे शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं को बताया चिंताजनक। और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश भर में कल होगा मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। उन्होंने कहा कि देश में एम्स की संख्या 1 से बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा ई संजीवनी, कोविन और यूविन जैसे प्लेटफॉर्म से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल देश के इतिहास में बेमिसाल और स्वर्णिम रहा है। मंडी में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में देश में लोक कल्याण के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क दोगुनी गति से बढ़ा है और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हुई है। इसके अलावा उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों में हवाई अड्डों का निर्माण कर आम नागरिक के सफर को सुगम बनाया गया है। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के 11 जिलों में नव निर्वाचित प्रधान व उप प्रधान को कल 15 जून को शपथ दिलाई जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। कल शपथ समारोह जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया चंबा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सोलन और कृषि मंत्री चंद्र कुमार कुल्लू में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसी तरह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर, जबकि आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा हमीरपुर में शपथ दिलाएंगे। जिला स्तर पर होने वाले शपथ समारोहों के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि युवाओं को खेलों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। शिमला जिले में जुब्बल कोटखाई के मलोग में आज एक खेल प्रतियोगिता के अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का एक प्रभावी माध्यम है। क्षेत्र के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में

0: करीब 176 सड़कें पास की गई हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में हर क्षेत्र तक सड़क सुविधा पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। रोहित ठाकुर ने बताया कि टिक्कर तहसील में लोक निर्माण विभाग के तहत करीब 100 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर हैं। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला में एक महिला की हत्या होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में पहले नहीं सुनी गई थी, लेकिन अब आए दिन हो रही हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना होता है, लेकिन प्रदेश पुलिस सरकार के निर्देशों पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को परेशान करने, सत्ता समर्थित अराजक लोगों को सुरक्षा देने और भाजपा नेताओं के फोन की निगरानी करने जैसे कार्यों में व्यस्त है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जिस तरीके से पुलिस को अपना टूल बनाकर विपक्ष को परेशान करने में जुटी है, उसके खतरनाक परिणाम सामने आएंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में कल 15 जून को आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से ये मॉकड्रिल करवाई जाएगी। इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत व बचाव कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। पूर्वाभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल होंगे, जो आपदा तैयारी में मौजूद कमियों की पहचान करने और उनके समाधान के सुझाव देंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का दूसरा चरण आज से रिकांगपियो में शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आए 66 प्रतिभागियों का पारंपरिक खातक और किन्नर टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान ITBP के उप कमांडेंट वीरेंद्र सिंह और माई भारत हिमाचल प्रदेश के राज्य निदेशक ध्रुव डोगरा ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करना, स्थानीय परंपराओं को समझना और विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल प्रवास ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा व आत्मविश्वास का संचार किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रवास ने न केवल संगठन को मजबूती दी, बल्कि कांग्रेस की विफलताओं को भी जनता के समक्ष उजागर किया है। किन्नौर जिले के प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से करीब 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नर कैलाश शिवलिंग प्रमुख धार्मिक व साहसिक तीर्थ स्थलों में से एक है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 375 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यात्रा से जुड़े विभिन्न विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। किन्नर कैलाश यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग पार कर पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचते हैं। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: लाहौल स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शांशा के एक छात्र व प्रतिभाशाली खिलाड़ी ऋषिक रायांग का चयन प्रदेश की 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की एथलेटिक्स टीम में हुआ है। उन्होंने बिलासपुर के लुहणू मैदान में हुए राज्य स्तरीय ट्रायल में जेवेलियन थ्रो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: सितंबर माह में देहरादून में होने वाली नॉर्थ जोन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले भी वे अंडर 17 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की ओर से खेल चुके हैं। ऋषिक की इस उपलब्धि पर उनके अभिभावकों, प्रशिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। उनकी सफलता को लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने कहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सोलन जिले के अर्की में विशाल दंगल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मान व प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की है। अवस्थी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने और उनके शारीरिक विकास में खेल गतिविधियां अहम भूमिका निभा रही हैं। ऊना जिले में पिछले 3 वर्षों में 9,393 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने की दिशा में तत्परता से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर वृद्धि की नीति ने जिले में सकारात्मक बदलाव की नींव रखी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ बड़ा सुधार। प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधान व उपप्रधान कल लेंगे शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं को बताया चिंताजनक और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रदेश भर में कल होगा मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। देशगान सुनिए।

0: समूह स्वरों में देशगान अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी शिमला है। हमारी
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मिताली सिंह की आवाज में गाई ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे मिताली सिंह को। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं हंस राज हंस की आवाज में गाया ये गीत।

अभी आपने सुना हंसराज हंस व साथियों की आवाज़ों में गाया ये गीत। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लकी अली की आवाज़ में।

इसी गैर फिल्मी गीत के साथ हमारा आज का सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:15 होने को हैं। अब हिमबीट्स कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

संपर्क विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हिमबीट्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।

नमस्कार श्रोताओं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम हिमबीट्स लेकर हाजिर हूँ मैं उपमा ठाकुर। आज के हिमबीट्स की शुरुआत पॉजिटिव थॉट के साथ।

0: हल्दी की बात करें तो हल्दी एक ऐसा महत्वपूर्ण मसाला है जिसे गोल्डन स्पाइस और स्पाइस ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भारत की औषधीय फसल है और इसकी खेती विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में व्यापक रूप से की जाती है। ये न केवल भोजन को रंग और स्वाद प्रदान करता है बल्कि औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेदिक और आधुनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इसका विशेष महत्व है। हल्दी में पाए जाने वाला मुख्य तत्व करक्यूमिन होता है। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक गुणों से परिपूर्ण हल्दी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक साबित होती है। इसके अलावा घाव भरने, गठिया के दर्द को कम करने, मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाने में भी ये गुणकारी साबित होती है। साथियों, हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रदेश सरकार हल्दी के उत्पादन को विस्तार प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश के हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी और सोलन जिला में इसकी खेती की जाती है। वर्तमान में राज्य में लगभग 2042 हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की जा रही है और इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 24,995 मीट्रिक टन है। किसानों को हल्दी की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष से हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है।
1: अगर आज आप हल्दी उगाएंगे जो प्राकृतिक रूप से उगती है, जिसको ना बंदर खाता है ना नील गाय खाती है, कोई भी नहीं खाता, डर के मारे रहते उससे, वो 150 रुपया किलो सरकार आपसे खरीदेगी। हल्दी आपको कैश क्रॉप के रूप में, अगर किसी की एक बीघा जगह है तो 1,00,000 रुपया आपको मिलेगा, एक बीघा जगह में हल्दी उगाने का सरकार की तरफ से आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए पैसा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए।
0: इसके साथ साथ सरकार हल्दी की खपत बढ़ाने, नए बाजार विकसित करने और नए उत्पादों के अनुसंधान की दिशा में कार्य करने के साथ साथ हल्दी उत्पादकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास के क्षेत्र में भी ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि हल्दी उत्पादक अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। साथियों, यहां हम रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

साथियों, अब हिमबीट्स में हम बात करेंगे जीवन में शिक्षा के महत्व की। शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाती है और शिक्षा के बल पर बच्चे प्रगति के आकाश को छू सकते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये महत्वपूर्ण है कि उन्हें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा का ज्ञान दिया जाए। शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, दृष्टिकोण और मूल्यों को आकार देने की एक सतत प्रक्रिया है। गुरुकुल प्रणाली से लेकर आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तक शिक्षा ने समाज को नई दिशा दी।

0: और वर्तमान में वैश्वीकरण और तकनीकी शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र हो चुकी है। हिमाचल के संदर्भ में बात की जाए तो वर्तमान में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सरकार द्वारा चलाए गए अभियानों के फलस्वरूप राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रदेश सरकार शिक्षा से बढ़कर बच्चों के समग्र विकास को केंद्र में रखकर योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। सरकार ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाते हुए पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम, 150 से अधिक CBSE स्कूलों की स्थापना, राजीव गांधी आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल, विदेशी शैक्षणिक विजिट और शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का समावेशन किया है। बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए स्कूलों में क्लस्टर प्रणाली शुरू की गई है, जिससे संसाधनों का साझा इस्तेमाल सुनिश्चित कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। साथियों, हिमाचल में नौनिहालों के लिए 6,297 प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इसके साथ साथ सरकार बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके पौष्टिक आहार की जरूरतों का भी ध्यान रख रही है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। योजना के तहत नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को सप्ताह में एक बार उनके इच्छानुसार अंडा या मौसमी फल दिया जाता है। बात अपना विद्यालय योजना की करें तो अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत जिला स्तर से लेकर उपमंडल स्तर के अधिकारी स्कूलों को गोद लेते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। साथियों, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की परिकल्पना है कि बच्चों को भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों के लिए तैयार किया जाए। इस परिकल्पना को साकार करने में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल मील पत्थर साबित होंगे। इन स्कूलों में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों को गुणात्मक शिक्षा और उनकी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए बेहतर खेल अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ये स्कूल समाज के हर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने और भविष्य संवारने का परिवेश उपलब्ध करवाएंगे। सरकार के महत्वाकांक्षी डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से समाज के वंचित वर्गों के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को देश विदेश में शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए का एजुकेशन लोन प्रदान कर रही है।
1: जो आम परिवार से उठकर व्यक्ति डॉक्टर बनता है और डॉक्टर की फीस है 75,000-1,00,000 रुपया साल की, हॉस्टल की फीस होती है 60,000 रुपया। हमने कहा कि कोई भी आदमी अगर सरकारी नौकरी भी है तो भी वो इतनी फीस नहीं दे पाएगा। उनके लिए एक योजना लेकर आए हम, उसका लाभ उठाइए। 20 लाख रुपए का लोन आपको 1% ब्याज पर बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेगा। और उसमें आय की सीमा कितनी है? आय की सीमा है 12 लाख रुपया, यानी कि जिसकी 1 लाख रुपए की इनकम होती है तो उसको 12 लाख रुपए साल में हुआ, 12 लाख से नीचे उसको 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा। उसका बेटी डॉक्टर बन रही है, नर्स बन रही है, JEE का कोर्स कर रही है, ITI का कोर्स कर रही है, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ कर रही है, फिर आगे पढ़ना चाहती है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो विदेश जाने के लिए भी हमारी सरकार ने आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया।
0: साथियों, सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स चरण 2 की रिपोर्ट में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश को देश भर में 6ठा स्थान हासिल हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश 7 अंकों की छलांग लगाकर 13वें स्थान से 6ठे स्थान पर पहुँच गया है, जबकि राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश 3रे नंबर पर है। ये प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश ने प्रचेष्ठा 2 की प्रतिष्ठित श्रेणी में जगह बनाई है। साथियों, यहाँ हम रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

साथियों, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चों पर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को पोषित करने की सुखद प्रयासों में जुटी है। साथियों, हिमबीट्स के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नए अंक में साझा करेंगे आपके साथ नई जानकारी। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: beats.
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हिमबीट्स अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
6: ओह लवली, वेल डन।
7: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
8: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
9: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
10: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
9: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
10: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
11: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा जनगणना कार्य निदेशक हूं। जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें, बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता

0: है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: हम आकाशवाणी के शिमला के
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में $9 अरब से बढ़कर $45 अरब होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत

0: मैं भी राफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
7: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister

कार्यक्रम एक ही कलाकार में इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं नासिर हुसैन द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। जी हाँ श्रोताओं, इन्होंने अपनी फिल्मों में संगीत, रोमांस और भरपूर मनोरंजन पर खास ध्यान दिया।

आशा भोसले की आवाज में गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ गीत अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतों की महफिल। इसमें आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, हम हाजिर हैं गीतों की महफिल कार्यक्रम के साथ। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, दिल तुझको दिया फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आपने सुना दिल तुझको दिया फिल्म का ये गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति प्यासा सावन फिल्म से सुरेश वाडेकर लता मंगेशकर के युगल स्वरों में।

संतोष आनंद की लिखी शब्द रचना को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम था प्यासा सावन। आवाजें थी लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर की। गीतों की महफिल कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति उदित नारायण अलका याग्निक के युगल स्वरों में दाग द फायर फिल्म से।

अभी आपने सुना दागदा फाइव फिल्म का यह गीत जिसे गाया था उदित नारायण, अलका याग्निक व साथियों ने। गीतों की महफिल कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति स्ट्रीट डांसर 3 से।

कार्यक्रम गीतों की महफिल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कयामत से कयामत तक फिल्म का यह गीत अलका याग्निक उदित नारायण के युगल स्वरों में।

मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना और संगीत दिया आनंद मिलन ने, और अलका याग्निक उदित नारायण के युगल स्वरों में गाए कयामत से कयामत तक फिल्म के इसी गीत के साथ हमारा आज का गीतों की महफिल कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों की महफिल के अंतर्गत फिल्म संगीत FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 MHz पर। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब रविवार सरीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। कृपया रिले का इंतजार करें।

0: रात के इस प्रसारण में श्री जे एस श्रीराम के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर वीएसपी गायत्री सिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री जे एस श्रीराम। ही इज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय VSP Gayatri Sivani, on Mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar, and on Ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: श्री जे एस श्रीराम एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान आखेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अब ये वही संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर है और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
1: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। He is known for his expressive and dynamic style of singing. He hails from a distinguished musical family. Sriram was initiated into music by his mother, Srimati J. Chidrupa Lakshmi. Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent Vidwan Akella Mallikarjuna Sharma. He is a MA Music Gold Medalist from Sri Suravaram Prataparedi Telugu University, Hyderabad, where he is currently pursuing his PhD in music. Equally adept at Carnatic vocal concerts and Nama Sankirtanas, he performs at major festivals in India and abroad. As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
0: श्री जे श्रीराम अपने गायन का आरंभ वालाजी पेटा वेंकटरमना भागवतर की एक कृति से कर रहे हैं जो राग ललिता तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे श्रीराम begins his vocal recital with a composition of वालाजी पेटा वेंकटरमना भागवतर in the राग ललिता set to आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: श्री जी श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावरणम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे एस श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

ये था तन्या वर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पेरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।

0: That was Taniya Vartanam played on Mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on Ghatam by Shri Yam Chandrakant.
1: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है. आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसपी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत. ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ.
0: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे श्री राम इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. ही वॉज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय वीएसपी गायत्री शिवानी, on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है और पहले हिंदी में समाचार व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारा ये प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। अपने कल प्रातः के प्रसारण के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।